0: 9.07 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन। भोजन ही दवा है पर चैतन्य गुरुजी से
1: के बारे में थोड़ा चर्चा करें। हकीकत में हम खाना इसीलिए खाना है जीने के लिए, लेकिन आज हमारा व्यवहार, हमारा जिंदगी लाइफस्टाइल जो खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खाना चाहिए लेकिन उसका हम उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बहुत रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि खाना को दवा में कैसा बदले। पहला, जो एक्सेस कैलोरीज है, जो हमारा जो खाना हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, ये ग्लूकोज में बदलते हैं और विटामिंस मिनरल्स के साथ में ब्लड ग्लूकोज ऑक्सीजन से टकराता है तब एनर्जी में बदलता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट का खाना, वसा का खाना ज़्यादा खाते हैं तो हमारे अंदर में जो कंजम्पशन है कैलोरीज की, उससे ज़्यादा अगर हम खाते हैं तो मोटापे में बदलता है। तो नंबर वन, कौन सा चीज़ में कितना कैलोरीज है और उतना ही जितना एक दिन में मेरा कैलोरीज का कंजम्पशन कितना है वो देख करके हमको करना चाहिए। अब बात रहा विटामिंस की, मिनरल्स की, एंजाइम्स की। ये विटामिंस, मिनरल्स, एंजाइम्स जब हम सब्जी को पकाते हैं तो वो सब खत्म हो जाते हैं। मिनरल्स भरपूर हमको सब्जियों से मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर का छिलका उतार देते हैं और जो अंदर का चीज़ों को हम तलते हैं या नहीं तो पानी में डाल के, कढ़ाई में डाल के उबालते हैं। जब ऐसा उबालते हैं तो विटामिंस, मिनरल्स सब खत्म हो जाता है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि कच्चा सब्जियां और कुछ सब्जियां, जैसा यहाँ पर मशहूर है जो वंगा बोलते हैं, ऐसा चीज़ें छिलके समेत खाना बहुत ही आवश्यक है और इनके साथ में अंकुरित खाएं सुबह नाश्ते में। इस तरह कुछ वेजिटेबल सलाद और फ्रूट सलाद, सुबह कोई भी पका हुआ खाना ना खाते हुए 4-5 बादाम रात को भिगा दें और 2 अंजीर रात को भिगा दें। इस तरह एक परिपूर्ण न्यूट्रिशन फूड ब्रेकफास्ट ये हो सकता है। ऐसे ही दोपहर को हम 1 या 2 रोटी खाएं और बाकी जगह पर इस तरह फ्रूट सलाद, वेजिटेबल सलाड्स खाएं। और शाम को चाय के जगह पर अगर हम सुबह मुनक्का भिगा करके और उनको खाएंगे तो खास करके औरतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। और ऐसे ही रात को भी अगर हम पका हुआ खाना ना लेते हुए, अगर हम कच्चा खाना, अगर जिसको हम अमृतार कहते हैं, अगर इस तरह अगर हम खाएंगे तो हमारा खास करके रात को पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसा पालक है, बथुआ है, मेथी है, ऐसा चीज़ों को खाएंगे क्योंकि उसके अंदर में भरपूर फाइबर कंटेंट्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन जैसा दूर हो जाता है। और ख़ास करके उनके अंदर में जो हरा भरा चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इस तरह सुबह, दोपहर, शाम, ऐसा 3-4 बार अगर हम बिना पका हुआ एक अच्छा सब्जियां और फल, कुछ फल छिलके समेत, कुछ फल छिलके उतार कर, जैसा सेब जैसा, अमरूद जैसा चीज़ों को हम छिलके समेत खाने, पपीता जैसा, केला जैसा उनको उतार कर। केला को हम सुबह और दोपहर को खाना चाहिए, रात को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस तरह अगर हम अपना खाने के प्रति ध्यान रखेंगे तो हमारा जो शरीर के अंदर में तत्वों को बदलता है, तासीर बदलता है, बहुत कुछ हमारा शरीर के अंदर में फायदा हो सकता है।
0: आप सुन रहे थे चिंतन, भोजन ही दवा है पर चैतन्य गुरुजी से। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

जी हाँ श्रोताओं, ये है आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीहारा वास्ते। जानकारी का विषय रहेगा मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मानस गान भाग संख्या 337। सुप्रभात कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:30। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे मानवीय मूल्य, बालिका शिक्षा, विद्या दान, श्रेष्ठ दान। सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार होंगे पेमा राम। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कुछ युगल गीत कार्यक्रम फिल्म संगीत में। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के फनकार।

सुबह 11 बजे आप सुनेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह का आगामी निकाय चुनावों की तैयारी पर सजीव कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दिन के 12:30 पर आप सुनेंगे चंद गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत में। खेत खलिहान कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन के 12:50 पर। जानकारी का विषय रहेगा बेल वाली सब्जियों की देखभाल। दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र, मोबाइल पर लंबी गपशप किस हद तक, किचन गार्डन की देखभाल और क्विक चाट आइडियाज। दिन के 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे गीता का जीवन संदेश, एआई और युवा, अपनी प्रतिभा को पहचाने, बदलते समय का परिचय और आज का इतिहास। सराइकी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बरसात के मौसम में पशुधन की देखभाल, खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण, वर्षा जल का भंडारण, वृक्ष लगाएं पुण्य कमाएं और मौसम और बाजार भाव की जानकारी। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चंद गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत में। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक कटे रहते हैं। ऐसे में वहां समय पर जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से निवासियों को 1 से 30 सितंबर तक घर घर जाकर जाने वाली जनसंख्या गणना से पहले डिजिटल रूप से अपनी जानकारी देने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय का परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करते हुए ये बात कही। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्योई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बाय मिलने के बाद पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। MR अर्जुन और हरिहरन अमसारुक्कुन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही ये समाचार

0: And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेतीहरा वास्ते। जानकारी का विषय है मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतिहारा वास्ते। जानकारी का विषय था मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये लोक भजन भगत धर्मपाल भारती की आवाज में।

मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये लोक भजन भगत धर्मपाल भारती की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लोक भजन भगत धर्मपाल भारती की आवाज़ में। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या 337।

वानर और आसुरी सेनाओं के युद्ध का अंत होता नहीं दिखता। सारा प्रांतर शवों से पट गया है। रक्त और मज्जा की जैसे नदियां बह चली हैं। इनमें भूत पिशाच स्नान कर रहे हैं। चील और कौवे कटे अंग लेकर उड़ते और आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। अजीब विभत्स दृश्य उपस्थित है। लेकिन रावण अपनी सेना का उत्तरोत्तर संगार होता देख माया रचने की सोचता है। इधर श्री राम को पैदल देखकर इंद्र अपने सारथी मातली के साथ अपना रथ भेज देते हैं। श्री राम जब रथारूढ़ होते हैं तो वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। उधर रावण ने अपना माया जाल फैलाया। स्वयं राम को छोड़कर वानर भालू सेना को जगह जगह कई राम और लक्ष्मण दिखाई देने लगे। ये दृश्य देख लक्ष्मण भी मूरत की तरह ठगे से खड़े रह गए। किंतु श्री राम से इस दृश्य का भेद और अपनी सेना का असमंजस छिपा न रहा। वे बोले, हे वीरों, युद्ध करते करते तुम लोग थक गए हो, अतः तुम्हें विश्राम चाहिए। अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस कान, भाग संख्या 337, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त गुलशन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह का समय

उम्मीदों और नई शुरुआत का समय होता है। बीती बातों को पीछे छोड़कर आज हम कुछ अच्छा करने का संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों, किसी भी समाज की तरक्की में शिक्षा की बड़ी भूमिका होती है, और जब बात बेटियों की शिक्षा की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। एक शिक्षित बेटी अपने अधिकारों को समझती है, अपने फैसले लेने का आत्मविश्वास रखती है और आने वाली पीढ़ी को भी बेहतर दिशा देती है। इसलिए बेटियों को सिर्फ सपने देखने की आज़ादी नहीं, बल्कि उन सपनों को पूरा करने का अवसर भी मिलना चाहिए। कहते हैं, एक बेटी पढ़ती है तो सिर्फ एक जीवन नहीं, पूरी एक पीढ़ी शिक्षित होती है। आइए बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करें और उन्हें आगे बढ़ने का पूरा अवसर दें।

0: ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म घर से। संगीत था खयाम का। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: दोस्तों, शिक्षा हमें ज्ञान देती है, लेकिन मानवीय मूल्य हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। दूसरों के सुख दुख को समझना, ज़रूरतमंद की मदद करना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना और हर इंसान के साथ सम्मान से पेश आना, यही मानवीय मूल्य हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा इंसान होना है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुन लेना या किसी ज़रूरतमंद का हाथ थाम लेना, ये छोटे छोटे काम ही मानवता को मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, इंसान की पहचान उसके पद से नहीं, उसके व्यवहार से होती है।

ये गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म अमराज से। संगीत था रवि का, गीत के बोल थे साहिर लुधियानवी के। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे दान की जिसे हमारे समाज में श्रेष्ठ दान कहा गया है, विद्यादान। धन का दान किसी की एक ज़रूरत पूरी कर सकता है, भोजन का दान किसी की एक दिन की भूख मिटा सकता है, लेकिन शिक्षा और ज्ञान किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना या अपने अनुभव और ज्ञान को किसी दूसरे तक पहुंचाना, ये सभी विद्यादान के रूप हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ज्ञान ऐसी संपत्ति है जिसे जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। इसलिए अगर हमारे पास कोई हुनर, कोई अनुभव या कोई ज्ञान है तो उसे अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, किसी और

को भी वो ज्ञान वो हुनर सिखाना चाहिए। ज्ञान का दीप जलाइए और किसी दूसरे के जीवन में भी रोशनी लाइए।

ये गीत आप सुन रहे थे वाणी जयराम और साथियों की आवाज़ में फिल्म गुड्डी से। संगीत था वसंत देसाई का, गीत के बोल थे गुलजार के। दोस्तों, आज के सुप्रभात कार्यक्रम में हमने बातें की

बेटियों की शिक्षा, मानवीय मूल्यों और विद्यादान की, इन तीनों बातों में एक खूबसूरत संदेश छिपा है। शिक्षित बनिए, संवेदनशील बनिए और अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए। आज की सुबह एक छोटा सा संकल्प लें, किसी बेटी की पढ़ाई में बाधा नहीं बनने देंगे, जरूरतमंद की मदद करेंगे और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटेंगे, क्योंकि एक छोटी सी कोशिश भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।

आपका दिन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो और आपकी हर कोशिश किसी न किसी के जीवन में रोशनी लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ अपने दोस्त गुलशन को इस कार्यक्रम से दें अनुमति। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार प्रभात।
1: लगवा ले, कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं?

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
2: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को

0: फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
2: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-23-31-04-81 या 23-71-11-7 या 23-71-71-06 और 23-31-44-44। व्हाट्सएप नंबर 9289-4044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
2: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जाँच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आज़ादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Self-enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors.

0: यूकी के खिलाफ खेलेंगे। मर्दों के डबल्स के जुमरे में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी पहले ही एक बाय हासिल करने के बाद दूसरे राउंड में पहुंच गई है। मर्दों के क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के खिलाफ गाले बैन अलाकवामी स्टेडियम में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपनी पहली इनिंग का दोबारा आगाज करेगा। भारत ने कल के खेल के अख्तितम पर 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बनाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव अभी क्रीज पर ही हैं। इससे कबल देवदत्त पुडिकल ने शानदार सेंचुरी बनाते हुए 167 रन का स्कोर किया, जबकि केएल राहुल ने 82 और ध्रुव जुवेल ने 51 रन का शानदार स्कोर किया। मर्दों की हॉकी में आज नीदरलैंड्स में वाग्नेर हॉकी स्टेडियम में भारत की टीम सेकेंड पूल के डी के अपने मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। इसका मकसद FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे गुमराह कुन लेबलिंग और सारिफीन के हुकूक से मुतालिक बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामईन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं। ये नंबर्स हैं 011-233-10481, 011-2371-7117, 011-2371-7106। अमले अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में नेशनल अनुभव अवार्ड 2026 अता करेंगे। अमले अवामी शिकायत और पेंशन की वजारत ने कहा है कि अवार्ड्स की तकसीम से मुतालिक तकरीब में पेंशन मित्र से मुतालिक किताबचा और मुल्क की सतह पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC मुहिम 5 के लिए रहनुमा खतूत भी जारी किए जाएंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया कौने। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने लाल किले की फसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए वजीर आजम के इस बयान को खसूसियत के साथ नुमाया किया है कि नौजवानों को मुफ्त कोचिंग और मसनूई जहानत AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के शिनाख्तशुदा बर्फानी इलाकों में 2027 की मर्दुम शुमारी के लिए खुद इंदराज का अमल आज से शुरू हो रहा है। इम्तहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA 3 मजामीन इंग्लिश, कॉमर्स और समाजी उलूम के पर्चों में गलतियों की शिकायत के बाद इन तीनों मजामीन के लिए UGC NET इम्तहाना दोबारा मुनाकिद कराएगी। झारखंड में एहतजाज करने वाले तलबा आज रांची में रियासती सरकार के साथ बातचीत का ताज़ा दौर शुरू करेंगे। महकमे मौसमियात ने ओडिशा गंगोत्री मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में कदीम बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार तरंग। समाचार तरंग हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
3: आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग।

मैं हूं आपकी प्रस्तोता सलेहा। आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो विकास की गति, जन सुविधाओं और तकनीकी दक्षता से सीधे जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीबी जी राम जी की। लेकिन किसी भी योजना की सफलता केवल उसके निर्माण तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी प्रभावी, उसका जो क्रियान्वयन है, उसकी तकनीकी गुणवत्ता है, निगरानी है और आम लोगों तक सीधे सीधे उसकी पहुंच, इन सभी पहलुओं को सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आज इन्हीं पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ हैं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त

0: मुख्य अभियंता श्री अरविंद सक्सेना जी। सर नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।
0: आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और इस कार्यक्रम को समय देने के लिए, यहाँ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को हम ये चाहेंगे कि आप बहुत ही आसान से शब्दों में बताएं कि ये वीबीजी राम जी क्या है, और अगर एक आम आदमी यानी गांव के आदमी के नजरिए से देखें तो इस योजना से उसे सीधे तौर पर क्या फायदा मिलने वाला है।
1: जैसा कि योजना के नाम से पता लग रहा है, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो हम यहाँ रोजगार के साथ साथ विकसित भारत में ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका की बात करते हैं। यानी हमारे जो रूरल ग्रामीण परिवार में जो लोग रह रहे हैं, जितने भी परिवार रह रहे हैं, उनके हम रोजगार और उसकी आजीविका के लिए इस योजना से फ़ायदा ले सकते हैं, उनसे लाभ ले सकते हैं। अगर आप देखें तो विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका योजना जो है, इसमें 125 दिन के लिए तो एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी है। अगर कोई भी अकुशल श्रमिक जो ग्राम में रहता है, गांव में रहने वाला है, तो उसको 125 दिन रोजगार मिल सकता है। साथ ही अब ऐसी गतिविधियां इसमें जोड़ी गई हैं कि वो उनकी आजीविका के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जिससे उनकी आजीविका भी बढ़ेगी।
0: और सर कितने तरह के काम जो है इसमें शामिल किए गए हैं?
1: आपने ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया। योजना में अब गांव के विकास के लिए जितनी भी आवश्यकताएं, लगभग उन सब को शामिल कर लिया गया है। यानी हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर किसी गांव में दिक्कत है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आप कहें कि भवन निर्माण जो है, स्कूल के कमरे, स्कूल की बाउंड्रीज, फिर अतिरिक्त कमरा अगर ज़रूरत है स्कूल में तो वो, लाइब्रेरीज, फिर आप देखें पंचायत घर बन सकता है, स्वास्थ्य के लिए अगर कोई हॉस्पिटल बनना है तो वो इसमें बन सकता है, तो जितने भी रूरल हार्ट्स बन सकते हैं। तो आप देखें कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चीज़ें हुई हैं जो इस योजना में अब अनुमत हो गई हैं। आजीविका के लिए भी इसमें जो हमारे स्वयं सहायता समूह गाँव में बने हैं, हमारी ग्रामीण महिलाएँ मिल के ग्रुप बनाती हैं, तो उनके रूरल, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि वो कहाँ बैठेंगे, तो उनके लिए शेड बन सकता है, उनकी जो फेडरेशन बनाया है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, जिससे वो अपने उत्पादों को वहाँ बैठ के बात कर सके और उनको डिस्प्ले भी कर सके। तो इस तरीके की अब चीज़ें इसमें जुड़ गई हैं, जिससे महिलाएँ अपने प्रोडक्ट पर बात कर सकती हैं, बैठ के विचार विमर्श कर सकती हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं जिससे उनको आजीविका संवर्धन भी होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखें कि केवल आजीविका ही नहीं, हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गांव में अगर आप देखें तो वाटर स्केरिसिटी रहती है, तो जल संरक्षण के जो काम है, जल संरक्षण संग्रहण, इसके अलावा जो जल जीवन मिशन चल रहा है, बेसिकली अब जल जीवन मिशन को जब गांव के लिए लाया गया तो हर घर में नल की बात हो रही है, हर घर जल नल। तो जब नल हर घर के लिए जाएगा तो आगे उसको मेंटेनेंस कौन करेगा? तो विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी योजना में जल जेजेएम के जो काम है उनको भी अनुमत किया गया है कि जेजेएम के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के जो वर्क हैं वो इसमें कराए जा सकते।
0: सर अब बतौर इंजीनियर होने के नाते हम ये जानना चाहेंगे कि तकनीक को इस तरीके से कैसे जोड़ा गया है कि योजना पारदर्शी रूप में क्रियान्वित हो सके।
1: जी, इसमें ये बहुत अच्छा वो किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो कि विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो मेन ऑब्जेक्ट जो इस स्कीम का है वो है कि विकसित भारत 2047 तक हम अपने रूरल एरिया को, ग्रामीण एरिया को किस तरीके से करेंगे। तो इसमें प्लान बनाने के लिए जीआईएस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। हम अपने गांव की बाउंड्री को आइडेंटिफाइड करके उस गांव में कहां कहां किस लोकेशन पर क्या एक्टिविटी हो सकती है उसकी पहले ही योजना बनाएंगे, और वो योजना एक संतृप्त प्लान, सैचुरेटेड प्लान बनेंगे कि उस गांव की वास्तविक नीड्स क्या हैं, गैप्स आइडेंटिफाइड होके टोटल नीड्स उसमें निकल के आएंगी, और फिर विभिन्न योजनाओं से जितनी भी रूरल एरिया में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स चल रही हैं उनमें जो फंड अवेलेबल है उसके साथ कन्वर्जेंस करके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। तो स्कोप बढ़ गया है इसका। फिर जब हम वर्क का एग्जीक्यूशन करेंगे तो सारा सिस्टम ऑन बोर्ड होके कंप्यूटर से होगा, यानी
0: उसकी निगरानी

0: भी ऑनलाइन रखी,
1: निगरानी ऑनलाइन हो जाएगी। आप देखें कि जो वर्कर्स काम करेंगे उनकी अटेंडेंस भी फेशियल ऑथेंटिकेशन से होना शुरू हुआ है।
0: अक्सर ऐसी पहले शिकायतें नरेगा के समय आती रही है
1: जी,
0: रजिस्टर को लेकर। जी
1: बिल्कुल, इसी तरीके से आधार ऑथेंटिकेशन की बात हुई, पेमेंट्स पहले भी होते थे, अभी भी हम पेमेंट्स ऑनलाइन कर रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से ही कर रहे हैं। लेकिन जो नई चीज़ आई फेशियल ऑथेंटिकेशन हुआ, फिर टेक्नोलॉजी का प्लानिंग का यूज हुआ, जितने भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो ऑनलाइन ही बनेंगे सारे के सारे, उनके एस्टिमेशन और वो सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी। इसी तरीके से जो मेजरमेंट्स होंगे वो भी ऑनलाइन हो जाएंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी पे बहुत बड़ा कदम है कि हम स्कीम के स्टार्ट से लेके उसका जो फाइनल प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तब तक की सारी एक्टिविटी आप देखेंगी वो ऑनलाइन होंगी।
0: राजस्थान ऐसा कहा जा रहा है कि देश में श्रमिक नियोजन में योजना के तहत प्रथम स्थान पर है। तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को भी ये बताएं कि कितने श्रमिक नियोजित हुए हैं और इसी अवधि में पिछले साल क्या उनका संख्या थी, क्या तादाद थी।
1: लगभग मोर देन 9 लाख से अधिक परिवार जो हैं वो इस समय श्रमिक कार्यरत हैं राजस्थान में, और इस अवधि में पिछले साल 8 लाख समथिंग कुछ लोग काम करते थे, यानी हमारा जो प्रतिशत है वो बड़ा है। इसका बेसिक जो कारण है अगर हम देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस योजना को लॉन्च किया तो जनप्रतिनिधियों के साथ इसको लॉन्च किया गया था, तो गांव में जितना हम लोग इसको प्रचारित करेंगे, लोगों को बताएंगे कि योजना के बेनिफिट्स क्या हैं, उसको उनको क्या लाभ होने वाला है, तो श्रमिक वहाँ काम पर आते हैं। और इस समय चूँकि प्लांटेशन एक्टिविटी हमारे राजस्थान में हरियालो राजस्थान के तहत हो रही है, इस साल मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है राजस्थान में 10 करोड़ का, उस 10 करोड़ में से लगभग 3 करोड़ 61 लाख ग्रामीण विकास पंचायती राज को भी प्लांटेशन करना है, तो हमारी ये एक्टिविटी इस समय पूरी तरीके से चल रही है। गांव-गांव में जहां चारागाह विकास है उनमें प्लांटेशन का काम हो रहा है, स्कूल परिसर या जितने भी सामुदायिक परिसर हैं उनमें प्लांटेशन की गतिविधि हो रही है, नर्सरीज हम लोगों ने डेवलप की है उसमें काम चल रहा है। तो इसलिए ये श्रमिक चूंकि इस समय एक्टिविटी ऐसी है जो वर्षा के टाइम में करना जरूरी है, तो हमारे लोग भी गांव वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं और वो काम मांग रहे हैं।
0: इस योजना में 60 दिन का वो जो बुवाई के समय है कि श्रमिकों की उपलब्धता बेहतर हो, तो एक रेस्ट पीरियड भी दिया गया है जब ब्रेक रहेगा।
1: जी हाँ, ये भी इसलिए दिया गया है कि गाँव में जब फसल कटाई और बुवाई का काम होता है तो उस समय गाँव में श्रमिक नहीं मिल पाते, तो सरकार ने ये प्रावधान इस अधिनियम में ही किया है कि हम 60 दिन का एक पीरियड रखेंगे जिससे कि उस अवधि में लोगों को कृषि के लिए काम करने के लिए लोग उपलब्ध हो सकेंगे।
0: सर, कोई भी योजना जब आती है नई तो जाहिर सी बात है उसके साथ ही बहुत सारी चुनौतियां भी आ जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या क्या खास चुनौतियां हैं, और अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें आपको क्या लगता है इस योजना को लागू करते समय किन किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है।
1: राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, जैसा कि आपने कहा कि ज्योग्राफिकल एरिया काफ़ी अलग है, राजस्थान में 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है मैम, तो हर एग्रोक्लाइमेटिक जोन की स्थितियाँ अलग अलग हैं। तो बेसिक अगर किसी योजना को इम्प्लीमेंट्स करना है तो मेरा मानना है कि हम प्लानिंग जितनी अच्छी करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा होगा। तो काम यह है कि हमें प्लानिंग सोच समझ के करनी चाहिए, ग्रामीणों को उस प्लानिंग में योजना बनाने में कि उसके गांव की आवश्यकताएं क्या हैं और वो कैसे कहां इम्प्लीमेंट होंगी, उनको आइडेंटिफिकेशन पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। भले ही कोई भी हो, अगर वो अकुशल श्रमिक नहीं भी है तो भी हमें ये सामाजिक हमारी जिम्मेवारी बनती है गाँव में कि हम योजना ऐसी बनाएं जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे समुदाय के लिए उपयोगी हो। अगर हम योजना आइडेंटिफाइड कर लेंगे तो फिर उस योजना को इम्प्लीमेंट कराने का काम इस योजना के तहत होगा, फंड्स की आवश्यकताएं कहाँ से होंगी वो सब पूरी होंगी। तो ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, ये चैलेंज है हमारे ग्रामीणों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी, कि हम प्लान योजना कितनी अच्छी बनाते हैं और फिर राशि की उपलब्धता किस किस स्कीम से कैसे कैसे हो पाएगी ये हमें देखना होगा।
0: जी हाँ, लेकिन सर हम बात कर रहे थे अभी कि स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही काम तय किए जाएंगे, तो सर इसमें क्या ग्राम पंचायतों या स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया जाएगा।
1: बिल्कुल मैम, योजना बनने के बाद ग्राम सभाओं जो होंगी, ग्राम सभा की बैठकें होंगी, उसमें उन योजनाओं को बताया जाएगा और उनके अनुमोदन के बाद ही वो

0: योजनाएं पारित होंगी तब प्लान अप्रूव्ड होंगे।
1: सामाजिक परिपेक्ष की बात करें तो देखिए गांव में आज भी युवाओं के समक्ष पलायन की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्हें लगता है जहां बेहतर काम की अपॉर्चुनिटीज हैं वहां जाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि अगर लोगों को स्थानीय स्तर पर ही काम मिलेगा तो क्या इससे पलायन भी रुक सकेगा?
0: बिल्कुल मैम, अगर आप देखें तो केवल अकुशल श्रमिक ही नहीं, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक भी अब इस योजना में श्रम भाग के तहत आएगा। यानी जो विकसित भारत ग्रामीण आजीविका रोजगार गारंटी योजना है, इस योजना में श्रम और सामग्री का जो अनुपात है, श्रम 60% और 40% सामग्री। पहले जो योजना हुआ करती थी महात्मा गांधी नरेगा योजना, उसमें 40% केवल मेटेरियल था और उस 40% में मेटेरियल के साथ साथ कुशल कारीगर और अर्धकुशल भी शामिल थे, जबकि इस योजना में 60% जो अकुशल श्रमिक है, अकुशल श्रमिक के साथ जितना भी मैनुअल स्किल और सेमी स्किल्ड लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। तो अच्छे ड्यूरेबल असेट बनाने के लिए हमें मेटेरियल कंपोनेंट में ज़्यादा पैसा मिल रहा है
1: और प्रशासनिक खर्च के लिए भी अलग से प्रावधान किया
0: गया। बिल्कुल, प्रशासनिक खर्च भी जो 6% था वो 9% तक बढ़ा दिया गया है। तो जो गांव के युवा हैं उन युवा को, जो उनका अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, जैसे JJM की जब हम बात करेंगे, JJM के जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के वर्क होंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फिटर प्लम्बर इनकी आवश्यकता होगी, तो वो उस युवा को वहाँ काम मिलेगा।
1: सर, हमारे ग्रामीण श्रोताओं को खास तौर पर आप इस कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही कहूँगा कि हमें गांव के विकसित करने के लिए अपने गांव की जो आवश्यकता है, एक तो उसमें हम पार्टिसिपेट करें, हम उसमें अपनी योजना बनाने में भूमिका दें और हम सजग रहें, सतर्क रहें, योजना को उसकी पारदर्शिता, उसके क्या सामाजिक प्रभाव आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट से, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उन सब चीज़ों पर हम निगरानी रखें और जहाँ भी हमें आवश्यकता है हमें बताएं, जिससे हम भी अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में उनके जो आउटकम्स हैं उस लेवल तक ले जाएं जिसके परिणाम हमें वांछनीय हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी। VBG राम जी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बहुत ही सरलता के साथ, सहजता के साथ ये तमाम जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार तरंग कार्यक्रम के जरिए आपने जाना होगा VBG राम जी को बेहतर तरीके से और निश्चित ही ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही होगी। इसी उम्मीद के साथ अब दीजिए मुझे अनुमति आपको बता दें, कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग सुदर्शन नाहर, संपादन माधुरी वशिष्ठ, संयोजन डॉ. जितेंद्र द्विवेदी, प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।

0: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब से कुछ ही देर में आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में नगरीय निकायों के वार्डों की आरक्षण लॉटरी आज निकाली जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण लॉटरी की तिथि में बदलाव किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बारा और झालावाड़ जिले को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। देश भर के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों और प्रधान आयकर महानिदेशकों का दो दिवसीय सम्मेलन आज से जयपुर में। और एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण लॉटरी की नई तारीखें तय कर

0: दी गई हैं। जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी 17 सितंबर को, जबकि सरपंच और वार्ड पंच के लिए 18 सितंबर को निकाली जाएगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे पहले ये लॉटरी 17 और 18 अगस्त को प्रस्तावित थी। विभाग के अनुसार राज्य सरकार ने 15 नवम्बर तक नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का लक्ष्य तय किया है। इधर राज्य के नगरीय निकायों के वार्डों के आरक्षण के लिए आज लॉटरी निकाली जाएगी। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों का आरक्षण जिला कलेक्टर स्तर पर किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और पंचायती राज मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोनों नेता 12 कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस दौरान 12 और झालावाड़ जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को आवास की सौगात दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री का बाद में कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। अधिक ब्यौरा हमारे 12 संवाददाता से।
1: कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों का शिलान्यास एवं लाभार्थियों को चाबी वितरण, 2400 करोड़ रुपए के ग्रामीण विकास कार्यों को पोर्टल पर शामिल करना, अमृत पोषण वाटिका, अमृत ग्रामीण हाट बाजार, ग्रामीण पुस्तकालय एवं संजीवनी पार्क का शुभारंभ, स्वयं सहायता समूह को 10 करोड़ रुपए के क्रेडिट लिंकेज चेक वितरण, लखपति दीदी योजना 8 करोड़ रुपए एवं सखी योजना के तहत स्कूटी वितरण तथा ग्राम श्री स्वराज सखी मार्ट 12 का लोकार्पण भी करेंगे तथा 54 करोड़ रुपए की लागत से बने 7 मंजिला जिला अस्पताल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे आज कोटा के बोरेखेड़ा स्थित कोरल पार्क में सुरक्षा संवाद महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर में सांगोद की कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री बिरला वहां सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी आज किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 82,55,00,000 रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में 72,58,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले 100 बिस्तरों के नए भवन का शिलान्यास शामिल है। भवन में ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, मातृत्व और प्रसूति सेवाओं तथा बच्चों के उपचार की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा अस्पताल में 125,000,000 रुपए की लागत से बनी इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण किया जाएगा। अराई में 8,32,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का शिलान्यास भी किया जाएगा। रेलवे नेटवर्क में करीब 20,000 स्थानों पर टैंक टू टैप जल शोधन और निगरानी प्रणाली शुरू की जाएगी। ये व्यवस्था वाटर कूलर सहित विभिन्न स्थानों पर यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लागू की जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट में पेयजल की गुणवत्ता से जुड़ी कमियां सामने आने के बाद रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड स्तर पर इसकी समीक्षा की गई। इसके तहत पुरानी और अनुपयुक्त पानी की टंकियां बदली जाएंगी। जल स्रोत और आउटलेट दोनों जगह नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की जाँच की जाएगी। साथ ही टंकियों की समयबद्ध सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने के अलावा जल गुणवत्ता की केंद्रीकृत निगरानी व्यवस्था विकसित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। जयपुर में देशभर के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों और प्रधान आयकर महानिदेशकों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू होगा। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल करेंगे। सम्मेलन में सीबीडीटी के अन्य सदस्यों के साथ देशभर के वरिष्ठ आयकर अधिकारी शामिल होंगे। इसमें आयकर विभाग से जुड़े वर्तमान और भविष्य के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही विभाग के कामकाज को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव और कार्य योजना तैयार की जाएगी।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों में पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। समाज शास्त्र विषय का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा 22 से 30 जून के बीच 87 विषयों के लिए आयोजित की थी। ये परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता और PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी। एनटीए ने इन त्रुटियों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने निष्पक्ष और त्रुटि रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा कराने की सिफारिश की थी। जयपुर में लोक मंथन 2026 का आयोजन 4 से 6 दिसंबर तक किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने रविवार कल जवाहर कला केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में लोक मंथन 2026 के प्रतिभागी पंजीयन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि लोक मंथन का 5वां राष्ट्रीय संस्करण जयपुर में होगा। इस 3 दिवसीय आयोजन की मुख्य थीम हम भारत के लोग रखी गई है।
1: ये हम सबका सौभाग्य है, राजस्थान का भी सौभाग्य है कि इस बार का कार्यक्रम राजस्थान जयपुर में हो रहा है। रजिस्ट्रेशन शुरू है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रजिस्टर करें और कार्यक्रम में ज़रूर आएं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। मैं पहले गई हूँ भाग्यनगर में, जाने का मुझे भी अवसर मिला। मैंने देखा जो स्केल है इस कार्यक्रम का वो बहुत बड़ा है, और इसमें चाहे कल्चर की बात करें, इतिहास की बात करें, थिंक टैंक की बात करें, स्पीकर्स की बात करें, हर प्रकार से आपको जब आप इस कार्यक्रम में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ आप इस कार्यक्रम से सीखेंगे।
0: सावन के तीसरे सोमवार पर आज प्रदेश भर के शिव मंदिरों में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। श्रद्धालु भगवान शिव का जल, दूध, दही और पंचामृत से अभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में सहस्रघट और रुद्राभिषेक के आयोजन हो रहे हैं। पाली के सोमनाथ मंदिर में विशेष झांकी सजाई गई है, जबकि परशुराम महादेव मंदिर में मेला भरा है। बाड़मेर के विभिन्न शिवालयों में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में नगरीय निकायों के वार्डों की आरक्षण लॉटरी आज निकाली जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण लॉटरी की तिथि में बदलाव किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बारा और झालावाड़ जिलों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। देश भर के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों और प्रधान आयकर महानिदेशकों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से जयपुर में। और एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं पेमा राम।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुछ डुएट सॉन्ग्स यानी युगल गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में, फिल्म श्रीमान आशिक से। संगीत था नदीम श्रवण का, गीत के बोल थे नूर कास्कर के।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम था प्यार झुकता नहीं। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत के बोल थे SH बिहारी के।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे कुछ युगल गीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को गुलशन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबकी खिदमत में लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम आज के फनकार। आज हम आपको सुनवाएंगे AR रहमान के संगीतबद्ध कुछ प्यारे प्यारे मीठे मीठे नए और पुराने गाने। बने रहें अपने दोस्त गुलशन के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गजनी फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें हैं जावेद अली और सोनू निगम की, संगीत AR रहमान का है और गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने।

0: कार्यक्रम का अगला गीत इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है। स्मार्ट

0: लोन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

ये गीत आप सुन रहे थे चित्रा की आवाज़ में, फिल्म बॉम्बे से। संगीत था ए आर रहमान का, गीत के बोल थे महबूब के।

0: स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

0: ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म पुकार से। संगीत था ए.आर. रहमान का, गीत के बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के। आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ए.आर. रहमान के संगीतबद्ध कुछ प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

प्रसून जोशी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दिल्ली सिक्स। आवाज और संगीत था ए आर रहमान का।

ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज़ में। संगीत AR रहमान का था, गीत के बोल गुलजार के, और फिल्म का नाम दिल से।

रंग दे बसंती। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मधुश्री और नरेश अय्यर को। संगीत था ए.आर. रहमान का, गीत के बोल थे प्रसून जोशी के। श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं आज के फनकार कार्यक्रम में ए.आर. रहमान के संगीतबद्ध कुछ प्यारे प्यारे गीत।

मैं वापस आऊँगा। इस फिल्म में आप सुन रहे थे दीपाली सहाय को। संगीत था AR रहमान का, गीत के बोल थे इरशाद कामिल के। कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं अमर सिंह चमकीला फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह का आगामी निकाय चुनावों की तैयारी पर सजीव कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

रुकावट के लिए खेद है, किसी कारणवश जयपुर से कार्यक्रम नहीं आया। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 11:07 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

आशा भोसले के साथ किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था आनंद आश्रम। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म खुशबू का ये नगमा। आवाज़ आशा भोसले की है, गीत गुलशन का है, गुलजार का है और संगीत आर डी बर्मन का।

लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना। गीत के बोल शैलेंद्र के थे, धुन शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम था दिल तेरा दीवाना। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है अप्रैल फूल, गीत के बोल हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म आई मिलन की बेला का ये नगमा। आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर को अभी आपने सुना। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है मन मंदिर।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आइए सुनते हैं फिल्म पराया धन में। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार आर डी बर्मन।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत को अब यहीं विराम देते हैं। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

आज दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुगम संगीत में कुछ गज़लों का आनंद आप लेंगे 12:30 पर। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलियान 12:50 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा दिन में 1 बजे का। 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत, प्रस्तुत करता होंगी किरण कुमारी। दोपहर 2 बजे का समय रहेगा समाचार का। फिल्म संगीत में कुछ फिल्मी नगमे आप सुनेंगे 2:30 पर। और 3 बजे का समय रहेगा उर्दू सर्विस का।

शाम 5 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम युववाणी का। कार्यक्रम विवरण आप सुन सकते हैं शाम को 6 बजे। 6:05 पर आप सुनेंगे सिराई की। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 6:30 का। जिले की चिट्ठी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:40 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में समाचार। 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम चौपाल का। और संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात 8 बजे।

8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर, समाचार संध्या का समय रहेगा 8:45 का, सुगम संगीत में कुछ गजलों का आनंद आप लेंगे 9:15 पर, 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम, खेल जगत आप सुनेंगे रात 10:00 जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे, 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और हिंदी में समाचार का समय रहेगा रात्रि 11:00 का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि छाबड़ा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है और संगीत आर डी बर्मन का।

आइए अब सुनते हैं फिल्म कारवां का ये नगमा। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार मजरू है और संगीतकार आर डी बर्मन।

इन्हीं आवाज़ों में आइए सुनते हैं एक और नगमा। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आइए अब सुनते हैं फिल्म शर्मिली का ये नगमा। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, गीत नीरज का है और संगीत SD बर्मन का।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:50 हुए हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलियान। जानकारी का विषय है बेल वाली सब्जियों की देखभाल।
1: खेत खलियान सुन लिए सगले किसान भैया ने, सुनील भाई की ओर से मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों, आज बात करा खेत खलियान में आपा, जिसकी बेल वाली अपने सब्जियां जियां कद्दू है, लौकी है, करेलो, खीरो, तोरू है, तरबूज है, अंगे आपा देखभाल किया करा, ताकि आपा ने किए ज़्यादा में ज़्यादा पैदावार मिल सके और बढ़िया सब्जी आपा ने मिल सके। तो इन शहरों आपा ने किए जकी बढ़ती हुई बेला है, अने जकी सही पोषण देना बहुत जरूरी है। सागे अपना न किए सारो भी देना पड़े, ताकि ये नीचे किए फल खराब न हुए, और सागे कीटाशु रोगाशु अंगी सुरक्षा करने भी बहुत जरूरी है।

0: तो इनकी रोकथाम करनी बहुत ही जरूरी है। और जका संक्रामक जका पौधा है बाने उखाड़ गए और खेतों दूर ले जाके अपना बाना नष्ट कर देना चाहिए या भूमि में दबा देना चाहिए या आग लगा देनी चाहिए ताकि जका बिंगा तत्व है पूरी तरह नष्ट हो जाए। और जका कीट व्याधियाँ की बात करें तो अंगंदर फल मक्खी है, लाल भृंग है, ये कीट लगे फल मक्खी की है जकी गुद्दो हुआ फल गो बिंग अंदर अंडा देवे और बिंग जका इंगा लारवा निकल गए बी गुद्दे ने खा के नुकसान पहुँचावे। इस अपना जका फल है बेकाना पड़ जाए और अपने बाजार भाव में गिरावट आ जाए। तो इंग नियंत्रण सारू अपने मेलाथियन 50 cc है या डाइमेथोएट 30 cc ताकत की जकी दवाई आवे 125 ml दवाई एक बीघे के हिसाब से ले गया अपन छिड़काव करना चाहिए। और जो फायदों न हुए तो 10-15 दिन गए आंतरो राग गए फिर इनको छिड़काव करना चाहिए। लाल भृंगी बात करा तो इंगा जका प्रोड है किसान भाइयों ये पीले रंगा और चमकीला है, सुंडी जकींगी है बा जमीन में रह गए की है, पौधन की जड़ है बठू पौधन काट दिए जिसू पूरे पौधों की है खत्म हो जाए। तो इंगे नियंत्रण सारू कार्बोरिल 5 सैकड़ा मुझ को दूड़ो आवे चूर्ण आवे वो 5 सेर दूड़ो एक बीघे के हिसाब से ले गया अपन ने बुरकाव करना चाहिए। आंगे अलावा खेत में जिया फेरोमेन ट्रैप है या आंगों भी इस्तेमाल करना चाहिए, नीम आधारित कीटनाशक है आंगों आप उपयोग कर सका और जका रस चूसक कीड़ा है आंशू बचा सका। आंगे अलावा जिया परागण है या फल जड़न की समस्या है आंगे बारे में अपन ने ध्यान रखना चाहिए। बेल वाली जकी सब्जियां है में नर और मादा फूल अलग अलग हुए तो कई बार की है फूल तो बहुत आवे पर फल कौन बने और फल किए सड़गे नीचे गिर जाए। तो इन सारू अपन किए जिया मधुमक्खियाँ हुए एक ही है परागण की सहायक हुए तो आना ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करना चाहिए। आपका जो खेत है बगीचा है मंग आस पास जिया आप गेंदे का फूल लगा सका सूरजमुखी है अन्न लगा सका तो वहाँ पर किए मधुमक्खी आगे बैठेगी तो किए जकी बेल वाली अपनी सब्जी है वहाँ पर भी बैठेगी और आशू किए बढ़िया परागण होगा और बढ़िया अपन फसल प्राप्त होगी। इन सारू अपन की किसान भाई जका रासायनिक कीटनाशक है अंग कम उपयोग करना चाहिए क्योंकि जकी मधुमक्खी की एक मित्र कीट है जे आप ज़्यादा रसायनों को प्रयोग करांगा तो जकी मधुमक्खियाँ बेकि मरण लग जाएगी तो आप नुकसान होएगा। और बात की बात करें तो जिया मल्चिंग है आप भी अपन जरूर अपना चाहिए इसू कि अपना जका जमीन है इंगा आसपास नमी बनी रहेगी सागे की है जका और कचरो है जिया खरपतवार है बेकोन पन पैगा तो वो भी अपन ने बहुत ही फायदा है और टेमो टेम निराई गुड़ाई को काम भी किसान भाइयों ने करना चाहिए। तो इन तरीके का जे किसान भाई आपकी जकी बेल वाली सब्जियां हैं वह में काम धंधा करेगा वह ध्यान में रखेगा और हम बातों ने अपनावेगा तो किया ज़्यादा से ज़्यादा आप गए फसल उत्पादन ले सकेगा। तो आज खातर इतो ही तेरे सुनील भाई ने दिवा गया राम राम सा राम राम।
1: किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राज्य के नगरीय निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी आज निकाली जा रही है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों का आरक्षण जिला कलेक्टर स्तर पर किया जा रहा है। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए जिला कलेक्टर संदेश नायक के नेतृत्व में लॉटरी निकाली गई। इस अवसर पर निगम आयुक्त ओम कासेरा भी मौजूद रहे। अन्य जिलों में भी कलेक्टर की अगुवाई में लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है। इस बीच पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण लॉटरी 17 और 18 सितंबर को निकालना तय किया गया है। जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 17 सितंबर को, जबकि सरपंच और

0: और वार्ड पंच के लिए 18 सितंबर को लॉटरी निकाली जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर तक नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जल्दी ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। नीति तय करने में विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक विकसित भारत की रूपरेखा तय करेंगे। बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग क्षेत्र के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि और पंचायती राज मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बारां जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोनों नेता बारां कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस दौरान बारां और झालावाड़ जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 2,400 करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास कार्यों को पोर्टल पर शामिल करना, अमृत पोषण वाटिका, अमृत ग्रामीण हाट बाजार, ग्रामीण पुस्तकालय और अमृत संजीवनी पार्क का शुभारंभ शामिल है। श्री चौहान 54 करोड़ रुपए की लागत से बनी 7 मंजिला जिला अस्पताल के भवन का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री का बाद में कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के 5 दिन के दौरे पर है। श्री बिरला कोटा के बोरखेड़ा स्थित कोरल पार्क में सुरक्षा संवाद महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसके बाद वे सांगोद की कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री बिरला वहां सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। द्वितीय जोधपुर चैलेंज कप बास्केटबॉल प्रतियोगिता जोधपुर में 8 से 12 सितंबर तक आयोजित होगी। उम्मेद स्टेडियम में होने वाली प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग की राष्ट्रीय स्तर की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों और विजेता टीमों के लिए करीब 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। आयोजन का उद्देश्य जोधपुर और राजस्थान की उभरती बास्केटबॉल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने और सीखने का अवसर देना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री तथा जोधपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व और टीम भावना विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता में कमी आई है। हालांकि कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। इनमें चित्तौड़गढ़, करौली, दौसा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और अलवर शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान में मॉनसून की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 19 से 21 अगस्त के बीच बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बताई गई है। नागौर पुलिस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में 100 से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्य गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने भीलवाड़ा के जहाजपुर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह पिछले 5 वर्षों से सक्रिय था और 10 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और जेवरात चोरी कर चुका है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

तीसरे सोमवार और नाग पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सखियों, सावन का महीना केवल बारिश और फुहारों की ऋतु नहीं बल्कि प्रकृति, प्रेम और अध्यात्म का अनूठा संगम है। इस पावन मास में आसमान की चादर तले धरती हरी हो जाती है, शिव आराधना गूंजती है और हर दिल में एक नया उल्लास भर जाता है। इस महीने में प्रकृति जैसे हरी चादर ओढ़ लेती है। सावन की रिमझिम बारिश और हरियाली दिल को छू लेती है। इसी बीच तीज और रक्षाबंधन का त्यौहार महिलाओं की खुशी का कारण है। सूखी और तपी हुई धरती पर जब सावन की पहली बूंदी पड़ती है तो मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। पेड़ पौधे नई पत्तियों से सज जाते हैं और खेतों में लहलहाती फसलें प्रकृति के पुनर्जीवन की कहानी कहती है। सखियों, यह पूरा महीना जगत के संरक्षक भगवान शिव को समर्पित है। सावन के सोमवार को भक्त उपवास रखकर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल अर्पित करते हैं। इसी महीने की तीज से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। पेड़ों के डालों पर पड़े झूलों की पींगे और महिलाओं के पारंपरिक गीत सावन के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। सखियों, बातें और भी करेंगे, लीजिए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: सखियों, मित्रता वो रिश्ता है जो दिलों से जुड़ता है, खून से नहीं। सच्चा मित्र कभी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होता, उसका प्यार और अपनापन निष्काम होता है। वैसे ही पड़ोसी किसी सच्चे मित्र से कम नहीं होते। पड़ोसी वह परिवार होता है जो हमारे सबसे पास रहता है, कभी कभी रिश्तेदारों से भी ज़्यादा पास। सखियों, मुश्किल वक्त में एक अच्छा पड़ोसी सबसे पहले मदद को आता है। समाज में एक दूसरे का ध्यान रखने वाले पड़ोसी शांति और सहयोग का वातावरण बनाते हैं। कहा भी गया है कि पड़ोसी सुखी तो आधा संसार सुखी। सच्चा पड़ोसी वह है जो दरवाजे की घंटी बजने से पहले जान जाए कि हमारी ज़रूरत है किसी को। सखियों, पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र इसीलिए होते हैं कि वे संकट और आपात की स्थिति में दूर के रिश्तेदारों से पहले हमारी मदद के लिए पहुँचते हैं। सुख और दुख के हर पल में साथ रहकर वे परिवार जैसा विश्वास और सुरक्षा का एहसास कराते हैं। अचानक तबीयत खराब होने या किसी संकट के समय पड़ोसी सबसे पहले सहायता करते हैं। घर की देखरेख और आपातकाल में

पड़ोसी आपसी विश्वास से जीवन को आसान बनाते हैं। सखियों, हम लोग हर बार त्यौहार मनाने रिश्तेदारों के पास नहीं जा सकते, हम अपने त्यौहार पड़ोसियों से ही मिलकर मनाते हैं और अन्य कोई फंक्शन में भी परिवार से पहले पड़ोसी ही हमारे साथ होते हैं। लीजिए सुनते हैं एक और गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो कर

0: तुम्हें एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: सखियों, हम सब जानते हैं कि आजकल बहुत सी महिलाएं अपना ज़्यादा समय फ़ोन पर बात करके सोशल मीडिया या रील्स देखने में बिताती हैं। इसके पीछे भी कई कारण हैं, जैसे अकेलापन दूर करना या दोस्तों परिवार से जुड़ना या यूं ही बातें करके टाइम पास करना। सखियों, कई बार अकेले रहना या काम के बाद तन्हाई महसूस होने पर फ़ोन एक सहारा बन जाता है। सोशल मीडिया हमारे लिए एक मनोरंजन का साधन भी है। फ़ोन पर लंबी बातें करना भी एक आदत सी बन जाती है। कई बार तो दिन भर की थकान या परेशानी बताकर अपने तनाव को कम किया जाता है। सखियों, जो महिलाएं कामकाजी हैं, नौकरी करती हैं, उन्हें तो ज़्यादा फ़ोन पर बातें करने का समय नहीं मिल पाता, लेकिन जो फ्री है वह अक्सर अपनी सहेलियों से लंबी गपशप करती हैं। लीजिए, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: सखियों, अगर देखा जाए तो मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। पहले लोग ज़रूरी काम आने पर मीलों दूर यात्रा करके जाया करते थे, ज़रूरी बात आपस में मिलकर ही की जाती थी, लेकिन अब सारे काम मोबाइल ने आसान बना दिए। हमें जब भी अपनों की याद आती है, हम फ़ोन करके हालचाल पूछ लेते हैं, अपनों को वीडियो कॉल करके उन्हें देख भी लेते हैं, अपने मन की खुलकर बातें करते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि मोबाइल से सबका जीवन सीमित सा हो गया है। हम लोग ज़्यादा समय मोबाइल पर बिताते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी कई बार आपस में बातचीत ही नहीं होती। मोबाइल के फायदे हैं पर नुकसान भी है। मोबाइल के जरिए इधर की बातें उधर हो जाती है, जो कि मन मुटाव का कारण बनती है। सखियों, आजकल फ़ोन के जरिए छोटी छोटी बातों पर बहस मन मुटाव का कारण बन जाती है, रिश्तों में उलझन पैदा हो जाती है, यहाँ की बात तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। यही कारण है कि आजकल अपनापन कम है हर रिश्ते में। सखियों, जब मोबाइल नहीं था तब ज़्यादा समय परिवार और बच्चों को दिया जाता था, लेकिन अब पारिवारिक तनाव का कारण कहीं ना कहीं फ़ोन ही है। लीजिए सुनते हैं एक और।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: भैया सामान खरीद समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजिशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
6: सखियों महिलाओं के लिए सावन का मतलब सुहावने मौसम में अपने रिचुअल्स के साथ जुड़ना भी है। ये उत्सव हमें अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने का अवसर भी देते हैं। इनमें महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं से मिलती है और नए संपर्क बनते हैं। लीजिए सुनते हैं एक और गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: भैया सामान खरीद समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजिशन में देरी होने पर ब्याज और

0: मुझे भी दिलवाएगा, समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: सखियों, रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें महंगी से महंगी होती जा रही है। इसके अलावा जैविक रूप से उगाए गए उत्पादों की मांग में भारी वृद्धि के कारण उनकी कीमतें भी आसमान छू रही है। ऐसे समय में रसोई में बागवानी करना बेहद ही लोकप्रिय हो गया है और इसके पीछे कारण भी है। रसोई में बागवानी करना न केवल सुविधाजनक और स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि किफ़ायती भी है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाली कहावत यहाँ बिल्कुल स्टिक बैठती है, क्योंकि मेहनत करने के बाद हमें उसका फल जरूर मिलता है। सखियों, किचन गार्डन हमारे घरों का एक अलग हिस्सा हो सकते हैं, जिन्हें घर पर जैविक रूप से उत्पादित सब्जियां और अन्य स्वयं उगाए गए खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाया जाता है। सखियों, हमें हमारे किचन गार्डन की देखभाल कैसे करनी है? बारिश के मौसम में किचन गार्डन की सबसे पहली ज़रूरत बेहतरीन जल निकासी है। गमलों या क्यारियों में पानी जमा होने से पौधों की जड़ें सड़ सकती है। लगातार बारिश के कारण गमलों की मिट्टी जम जाती है, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसीलिए बारिश रुकने पर समय समय पर मिट्टी की हल्की गुड़ाई जरूर करें। गुड़ाई करने से हवा का प्रवाह बेहतर होता है और जड़ें मजबूत होती है, लेकिन ध्यान से जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। नमी के कारण मानसून में फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। पौधों की पत्तियों पर सफ़ेद या काले धब्बे दिखने पर तुरंत नीम के तेल का छिड़काव करें। लीजिए सुनते हैं अगला गीत।

सखियों, हम बात कर रहे थे किचन गार्डन की देखभाल की। बारिश के पानी के साथ मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं, जिससे पौधों का विकास रुक सकता है। इस मौसम में रासायनिक खादों के बजाय जैविक खाद, जैसे कि वर्मी पोस्ट, गोबर की खाद या नीम खली का प्रयोग करें। ध्यान रहे कि खाद हमेशा बारिश थमने के बाद ही मिट्टी की गुड़ाई करके ही डालें। मानसून में आसमान में अक्सर बादल छाए रहते हैं, जिससे पौधों को पर्याप्त धूप नहीं मिलती। पौधों को धूप वाले स्थान पर शिफ्ट करें। इस मौसम में तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण टमाटर, मिर्च, बैंगन और बेल वाली सब्जियां टूटकर गिर सकती है। इनसे बचाव के लिए पौधों को लकड़ी या बांस की डंडियों का सहारा दें। बेलों को किसी रस्सी या मचान की मदद से ऊपर की ओर चढ़ाएं, ताकि फल जमीन की नमी के संपर्क में आकर सड़ने न पाए। सखियों, किचन गार्डन को हरा भरा रखने के लिए सही पौधों का चुनाव बेहद ही जरूरी है। इस मौसम में भिंडी, ग्वार फली, खीरा, करेला, लौकी, मिर्च और बैंगन जैसी सब्जियां आसानी से उग सकती हैं। सही देखरेख से हमारा किचन गार्डन ताजी और सेहतमंद सब्जियों से भरा रहेगा। सखियों, अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: Round of the men's doubles category in New Delhi, the duo were leading 6-4 in the second game when their opponents Scott Gildea and Paul Reynolds of Ireland retired hurt. Earlier, Arjun and Amsa Karunan had won the first game 21-16. Talking to media after the match, the Indian duo said the support and cheers from the home crowd helped boost their confidence. They also noted that winning the early points in the first game helped them gain control of the match. Later in the day, former world champion and 9th seed PV Sindhu will be up against Sophia Noble of Ireland in the women's singles. Meanwhile, the women's doubles duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will face Paula Lopez and Lucia Rodriguez of Spain in the first round. In the evening, Indian debutant Ayush Sethi will face world number one and defending champion Shi Yuqi of China in the men's singles category. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 183 for 5 in their first innings against India on day 3 of the opening test of the series at the Gaal International Stadium when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government to constitute high-level committee to review banking reforms and future course of public sector banks towards Vikasit Bharat. India reaffirms people-centric, humanity-first approach to BRICS collaboration during its chairship. 7 women died in stampede at Ashok Dham Temple in Bihar. 5 people killed in a fire incident in Birbhum, West Bengal. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall in Gangetic, West Bengal and Odisha today. In men's cricket, Sri Lanka were 184 for 5 in their first innings against India on day 3 of opening test at Gaal. And BWF Badminton World Championships begin in New Delhi. India's M.R. Arjun, Hariharan, Amsa Karunan advance to second round of men's doubles category. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 3rd दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन अमसा करुनन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि ये समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
2: On the basis of a well-researched
3: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
2: And in that, the role of banks.
1: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्व

0: महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
1: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने चार प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के तीन आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
2: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
3: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
2: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4,4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत यह प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
4: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है,

0: नैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा ये कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
2: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शेषिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरफेन में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय

0: के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बेमिसाल का ये नगमा अभी आपने सुना। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार आर डी बर्मन। इसी आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म बाबू का ये नगमा। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म स्वामी का ये नगमा भी आपने सुना। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म सितारा का ये नगमा। आवाज़ें लता मंगेशकर और भूपिंदर की है, गीत गुलजार का है और संगीत आर डी बर्मन का।

लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं उर्दू सर्विस।

इन अदर वर्ड्स, ये आकाशवाणी है। सहपहर के 3 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की मजलिस के का आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामेईन का खैर मकदम है। हमारी नशियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नज़र डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। दिन में 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत चंद फिल्मी नगमे। सपहर 3:30 कहकशा प्रोग्राम के तहत आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म अंदाज की कहानी और उसके नगमे। इस प्रोग्राम को तरतीब दिया जनाब मसूद अल्तमश ने। शाम 4 बजे आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे फिल्मी मौसीकी से।

फिल्मी नाखूनों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। चार बजकर 50 मिनट पर खबरें नशर की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन, ये थे एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फेडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: रजी अहमद से खबरें सुनिए। भारत ने अपनी सदारत के दौरान ब्रिक्स तआवुन के लिए अवाम पर मरकूज और इंसानियत को मुकदम रखने वाले नुक्ते नज़र का अदा किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हुकूमत बैंकिंग असलाहत और विकसित भारत की खातिर सरकारी सेक्टर के बैंकों के मुस्तकबिल के लाहे अमल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देगी। बिहार में अशोक धाम मंदिर में भगदड़ के वाक़े में 7 खवातीन की मौत हो गई, जबकि मगरबी बंगाल के बीरभूम में आग लगने के वाक़े में 5 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन से कहा है कि वो जनूबी कोरिया के साथ आइंदा मुश्तरका फौजी मशकें कम कर दे। और इंडोनेशिया में 5.9 शिदत का जलजला आया है। और BWF बैडमिंटन आलमी चैम्पियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत के MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। खबरें तफसील से। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली की वजारत के सेक्रेटरी तन्मय कुमार ने कहा है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में ब्रिक्स इत्तेहाद इक़्तिसादी मुज़ाकरात से आगे बढ़कर माहौलियात को दरपेश बड़े चैलेंजों से मुतालिक नज़रिया अपनाने के लिए एक बाअसर प्लेटफॉर्म बन गया है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में आबो हवा की तब्दीली और पायदार तरक्की से मुतालिक माहौलियात के वर्किंग ग्रुप और राबता ग्रुप के सीनियर अफसरों की मीटिंग की सराहना करते हुए कही। मीटिंग के दौरान उन्होंने बताया कि ब्रिक्स 2026 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस विजन से रहनुमाई हासिल हुई है कि आलमी इश्तराक को इंसानों की फलाह व बहबूद पर मबनी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की सदारत के दौरान आबो हवा की तब्दीली और पायदार तरक्की से मुतालिक माहौलियात के वर्किंग ग्रुप और राबता ग्रुप ने एक साथ मिलकर 4 तरजीही शोबों के इश्तराक में इजाफा किया है। ये शोबे हैं पायदार तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग दिया जाना, शजरकारी, जंगल की आग और आफात से निमटना और सर्कुलर मईशत। इस मीटिंग में ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, इस्लामी जमहूरी ईरान, रूसी वफाक, जमहूरी जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमारात समेत ब्रिक्स के रुकन ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। हुकूमत विकसित भारत के हुसूल में बैंकारी से मुतालिक एक आला इख्तियाराती कमेटी जल्द ही तश्कील देगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यह बात आज नई दिल्ली में सरकारी सेक्टर के बैंकों

के दो रोज़ा कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करने के बाद कही। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि मस्कुरा कमेटी मसाइल और सिफारिशात पर गौर करके बैंकारी इस्लाहात के बारे में मुस्तक़बिल के लाहे अमल का फ़ैसला करेगी। मोहतरमा सीतारमन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि बातचीत के नतीजे कमेटी के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, क्योंकि वो बैंकों के मुस्तक़बिल के रोल से मुतालिक अपनी सिफारिशात वज़ा करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक मुस्तहकम हालत में हैं, क्योंकि गैर मुनाफा बख्श और फंसे हुए असासे अब तक की सबसे निचली सतह पर हैं। वज़ीर मौसूफ ने इस यकीन का इजहार किया कि आला अख्तियाराती कमेटी की जानिब से सिफारिशात पेश किए जाने के बाद हुकूमत और बैंकारी का शुबा भारत की इक्तसादी तरक्की में तेज़ी लाने के लिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के लखीसराय ज़िले में सावन के पवित्र महीने के तीसरे पीर को आज अशोक धाम मंदिर में भगदड़ के एक वाक़े में 7 खातून अकीदमंदों की मौत हो गई और 10 से ज़्यादा शदीद तौर से ज़ख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब अकीदमंदों की एक बड़ी तादाद जल अभिषेक के लिए जमा हुई थी। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि भगदड़ का यह वाक़िया आज सुबह अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर पेश आया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक भगदड़ इस अफवाह के बाद हुई कि गिरे हुए बिजली के खंभे से करंट आ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखीसराय में भगदड़ के सबब होने वाले जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। जनाब मोदी ने यकीन दिलाया कि मकामी इंतज़ामिया मुतासर लोगों की मदद कर रही है। बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने महलुकीन के करीबी रिश्तेदारों को 4-4 लाख रुपये की नकद इमदाद देने का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल के बीरभूम ज़िले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के करीब एक होटल में आज सुबह सवेरे आग लगने से कम 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई दीगर ज़ख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक आग सबसे पहले होटल के इस्तकबालिये में लगी और तेज़ी से 4 मंजिला इमारत में फैल गई। आग लगने के वक्त ज़्यादातर मेहमान सो रहे थे। आइंदा मरदमशुमारी की खातिर आबादी के इंदराज की तैयारी के हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर के बर्फानी इलाकों में डिजिटल वसीले से ज़ाती तफसीलात से मुतालिक फार्म भरने का अमल आज से शुरू हो गया है और ये इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगा। ज़ाती मालूमात से मुतालिक फार्म भरने की सहूलत जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों में वाक़ 1115 गाँव और 3 म्यूनसिपल्टियों के बाशिंदों के लिए दस्तयाब होगी। इन इलाकों के अफराद डिजिटल वसीले से खुद से ज़ाती मालूमात से मुतालिक फार्म भरकर अपनी तफसीलात दर्ज करा सकेंगे। इन इलाकों में वाक़ म्यूनसिपल्टियों में उड़ी, गुलमर्ग और किश्तवाड़ शामिल हैं। इस अमल के दौरान तकरीबन 40 सवालात पूछे जाएंगे, जिनमें लोगों की मुकम्मल मालूमात, बच्चों की तादाद, पेशा और दीगर उमूर शामिल हैं। इस फॉर्म में ज़ात से मुतालिक मालूमात भी शामिल की गई है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के लिए तकरीबन 40 ज़ुमरों को नोटिफाई करके शाया किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर दिफा को हिदायत दी है कि वो जुनूबी कोरिया के साथ आइंदा फौजी मशकों में नुमाया हद तक कमी करें। उन्होंने कहा कि इन फौजी मशकों के खराजात बहुत ज़्यादा हैं और इनसे शुमाली कोरिया को दुश्मनी भरा पैगाम मिलता है। कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि आज शुरू होने वाली 11 रोज़ा मशक को मुकम्मल तौर पर मनसूख करने में बहुत देर हो चुकी है। जनूबी कोरिया की वज़ारत दिफा ने इस बात की तस्दीक की है कि मौसम गर्मा की बाकायदा मशकें मनसूबे के मुताबिक होंगी, जिनमें जनूबी कोरिया के 18,000 फौजी शिरकत करेंगे। शुमाली कोरिया इस ट्रेनिंग को जंग रिहर्सल करार देकर इसकी मजम्मत करता रहा है, जिसमें ड्रोन्स को मार गिराने, साइबर हमलों को रोकने और GPS निज़ाम में होने वाली रखनांदाजी से निमटने जैसे मौजूदा सिक्योरिटी खतरात पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है। भारतीय फ़ौज का दस्ता आज थाईलैंड के लिए रवाना हो गया है, जहां वो भारत और थाईलैंड के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मश्क मैत्री के 15वीं एडिशन में हिस्सा ले

नाइट इन लंदन फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी का लिखा हुआ नगमा था, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। और जब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में बहारों की मंजिल फिल्म का नगमा, नगमा निगार मजरू, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

और ये है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण का लिखा नगमा, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म है इंतकाम।

इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। कहकशां प्रोग्राम के तहत लीजिए जब सुनिए फिल्म अंदाज़ की कहानी और उसके नगमे।

लीना घोड़े की सवारी के लिए तैयार हो रही है। वो अपने बाप के कमरे में जाकर उनको साथ ले जाने के लिए जगाती है, मगर वो देर तक सोने का बहाना करके रह जाते हैं और नीना अकेली ही घोड़ा सवारी के लिए चली जाती है। घोड़ी बेकाबू हो जाती है, तभी दिलीप अपने घोड़े पर ताकुब करता है। घोड़ी नीना को गिरा देती है और दिलीप इसको बचाकर अस्पताल पहुंचा देता है। बाप को खबर होती है तो वो दौड़े चले आते हैं और बेटी को सही सलामत पाकर बहुत खुश होते हैं। अगले रोज सुबह को नीना नींद से बेदार होती है तो दिलीप गुलदस्ता लेकर उसके घर पहुंच जाता है।

दिलीप जाने लगता है तो नीना से पूछता है कि अब कब मुलाकात होगी। नीना कहती है कि जल्द ही कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी। तभी नीना की सहेली दंदनाती हुई आती है और दिलीप से टकरा जाती है। नीना अपनी सहेली शीला का तारुफ दिलीप से कराती है। दिलीप शीला और नीना के साथ बैडमिंटन खेलता है तो शीला इसकी बहुत तारीफ करती है और पियानो सुनाने की फरमाइश करती है। तब दिलीप कहता है कि अगर नीना गाना गाए तो वो पियानो बजा देगा। नीना मान जाती है। दिलीप पियानो बजाता है तो नीना और शीला दोनों गाना गाती हैं।

तभी मुलाजमा आकर कहती है कि नीना को साहब बुला रही हैं। वो शीला से कहती है कि उन्हें जाने न देना। नीना अपने बाप के पास जाती है तो वो इसको जन्मदिन की पार्टी के मेहमानों की लिस्ट देते हैं, इसमें दिलीप का नाम नहीं होता। तो नीना बाप से जिद करती है, बाप इसको जमाने की ऊंच नींच समझाते हैं। नीना कहती है कि दिलीप ने मेरी जान बचाई है, इस बात का तो ख्याल रखा जाए। बाप कहते हैं कि हम न होंगे तब हमारी बातें याद आएंगी। जन्मदिन की पार्टी में नीना सबसे मिलती है, सब दुआएं देते हैं। दिलीप देर से आता है। नीना कहती है कि शीला आज नाच पेश करेगी और आप इस पर गाना गाएंगे। दिलीप राजी हो जाता है। शीला बेख्तियार नाचना शुरू करती है और दिलीप पियानो पर गाना गाता है।

अगले दिन लीना के बाप अपनी बेटी पर नाराज होते हैं क्योंकि वो बहुत आज़ादी पसंद है। वो कहते हैं कि उन्हें दिलीप से लीना का ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं। लीना कहती है कि आपकी बेटी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। एक दिन पार्टी में दिलीप के साथ शीला डांस करने लगती है और दिलीप से बहुत मुतासिर होती है। वो कहती है कि लीना के दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तभी लीना का फोन आता है। वो दिलीप से कहती है कि मेरे डैडी को हार्ट अटैक हो गया है। दिलीप लीना को घर पहुंचाता है। लीना घर पहुंचती है तो बाप का इंतकाल हो चुका है। लीना बदहवास हो जाती है। दिलीप इसको संभालने की बहुत कोशिश करता है। एक दिन लीना कंपनी के तमाम अहदेदारों की मीटिंग बुलाकर डैडी के नाम से एक बड़ा अस्पताल बनाने की बात करती है। दिलीप भी मीटिंग में मौजूद है।

दिलीप इसकी तारीफ करता है। नीना कहती है कि ये तो पूछिए कि किसके आने की खुशी इस घर को रोशन कर रही है। दिलीप गलतफहमी से अपने आप को समझ लेता है। एयरपोर्ट पर राजन जहाज से उतरता है तो नीना गुलपोशी करके इसका इस्तकबाल करती है। दिलीप का तारुफ पहले ही राजन से हो चुका है, मुलाकात आज होती है। राजन कहता है कि आपकी इतनी तारीफ सुनी कि मुझे लंदन से जल्दी आना पड़ा। राजन नीना को इसके वालिद की तस्वीर के सामने खड़े होकर तसल्ली देता है और दिलीप से पियानो बजाने की फरमाइश करता है। नीना के कहने पर दिलीप गाना गाता है।

राजन और नीना खूब बातें करते हैं। तभी राजन के एक मिलने वाले प्रोफेसर आ जाते हैं और बेतुकी बातें करते हैं। अगले दिन पार्टी में राजन और नीना डांस करते हैं। राजन कहता है कि वो इतने प्यार से नीना के लिए लंदन से आया है और वो दिलीप को ही देखे जा रही है। राजन और नीना घर पहुंचते हैं। नीना दिलीप को मालूम करती है। दिलीप कहलवाता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो खाना नहीं खाएगा। नीना दिलीप के कमरे में जाकर तबीयत के बारे में पूछती है। वहीं नीना राजन के बारे में अपने रिश्ते की बात दिलीप को बता देती है। राजन और नीना की शादी होती है। पार्टी में शीला डांस करने के लिए शर्त लगाती है कि दिलीप पियानो बजाएंगे तो वो डांस करेगी। नीना दिलीप से फरमाइश करती है। दिलीप कहीं बाहर जाने की बात करता है तो नीना रोकने की कोशिश करती है। दिलीप अपने दिल की बात नीना को बता देता है और चले जाने को कहता है। शीला नाच शुरू करती है तो दिलीप पियानो बजाने लगता है और गाना गाता है।

नीना उठकर अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन राजन पियानो बजाता है और नीना से छेड़छाड़ करता है। तभी जोर की हवा चलती है और बादल गड़गड़ाने लगते हैं जैसे तूफान आ जाता है। नीना के कानों में दिलीप की आवाज़ गूंजने लगती है। वो उदास होकर बैठ जाती है तो राजन उठाकर इसको सीने से लगा लेता है। सुबह को राजन और नीना नाश्ते पर होते हैं तो राजन नीना की चिट्ठियाँ देख रहा होता है। इनमें एक चिट्ठी शीला की होती है जो नीना राजन को पढ़ने को देती है। इस चिट्ठी में शीला ने दिलीप से अपनी मोहब्बत का इकरार किया है। राजन कहता है कि इन दोनों की शादी हो सकती है। दिलीप ख्यालों में नीना से अपनी मोहब्बत जताता है मगर नीना चीख कर कहती है कि राजन ही इसका भगवान है। सुबह को राजन और नीना गोल्फ खेलते हैं। राजन कहता है कि तुम यहाँ बहुत डरने लगी हो, क्यों ना इस जगह को छोड़कर शहर चला जाए। राजन दिलीप और शीला की शादी की बात करता है। नीना कहती है कि वो शीला से प्यार नहीं करता। राजन पूछता है कि तो फिर किस से मोहब्बत करता है। नीना नाराज़ होकर चली जाती है। रात को राजन बीन बजा रहा होता है तभी कमरे में सांप आ जाता है। बीन की आवाज़ सुनकर नीना वहां जाती है और सांप को हटा देती है। राजन डर के मारे नीना से लिपट जाता है। राजन और नीना गाना गाते

अस्पताल में शीला राजन को बताती है कि वो बाप बन गया है। राजन नीना के पास जाता है और बेटी की पैदाइश पर इसको मुबारकबाद देता है। वो नीना से एक बार फिर अपना बहुत प्यार जताता है। तभी शीला कमरे में आ जाती है और दोनों को छेड़ती है। दिलीप दफ्तर में बैठा नीना को खत में अपने दिल का हाल लिख रहा है। वो लिखता है कि तुम्हारी बेटी की पहली सालगिरह पर भेंट में कारोबार का वो आधा हिस्सा जो तुमने मुझे दिया था दे रहा हूँ। सालगिरह पर नीना

दिलीप पार्टी में पहुंच जाता है। शीला दिलीप को देखकर बहुत खुश होती है। तभी लाइट चली जाती है। नीना दिलीप से फिर कहती है कि तुम शीला से शादी कर लो, मैं बहुत

दुखी हूँ, तुम क्यों मेरे रास्ते में कांटे बिछाते जा रही हो? मगर ये बात अंधेरे में राजन से होती है। लाइट आने पर पता चलता है दिलीप तो अलग खड़ा है। नीना रात को बेचैन टहलती है और राजन बिस्तर पर करवटें बदल रहा होता है। सुबह को राजन बगैर बताए हुए बाहर जाने लगता है तो नीना रोक लेती है और राजन के कॉलर में फूल लगाती है। तभी उसकी बेटी आ जाती है, वो बेटी को गोद में लेकर बातें करता है। राजन जब बाहर जाने लगता है तो नीना इसे रोक कर पूछती है कि क्या वाकई तुम्हें फूलों में पहली जैसी खुशबू महसूस नहीं होती? राजन कहता है कि शाम को शीला की पार्टी में दिलीप के साथ चली जाना। तभी दिलीप वहाँ आ जाता है और राजन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। राजन मजाक में बात उड़ाता है। दिलीप बताता है कि वो आज यहाँ से जा रहा है और ये गलतफहमी दूर करना चाहता है। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है वो फूल किसी के ऊपर नहीं चढ़ाता। राजन दिलीप से गुस्सा होकर ऊपर कमरे में चला जाता है। नीना गाना गाती है।

राजन तैयार होकर नीचे आता है तो दिलीप वहीं नीचे खड़ा हुआ मिलता है। दोनों में खूब बहस होती है। राजन गुस्से में दिलीप के रैकेट मारता है और चला जाता है। नीना डॉक्टर से कहती है कि इसे किसी भी तरह बचा लो और अब यही मेरी जिंदगी है। थोड़ी देर में दिलीप को होश आता है। वो राजन को ढूंढता है और फिर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर बताता है कि दिलीप को यहाँ से हटा दिया जाए क्योंकि इसका यहाँ रहना खतरनाक है। अगले दिन नीना राजन के घर जाती है तो वो बेटी से खेल रहा होता है। राजन तंजिया बातें करता है। नीना कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या। नीना ज़हनी तौर पर बहुत परेशान होती है और ख़ुदकुशी करने का इरादा करती है, मगर दिलीप वक्त पर आकर पिस्तौल छीन कर इसे रोक लेता है। नीना कहती है कि मैं समझी मेरा राजन आ गया। दिलीप कहता है कि कहाँ है वो राजन जिसने इस भोली सूरत का सहारा लेकर मेरी दुनिया लूटी है। दिलीप नीना पर खूब नाराज होता है। वो नीना को मारने की धमकी देता है। नीना कहती है कि इसका मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा। दिलीप नीना के माथे पर पिस्तौल लगा देता है। फिर वो पिस्तौल फेंक कर नीना को अपने सीने से लगाने की कोशिश करता है। नीना इससे अपने आप को छुड़ाकर पिस्तौल उठा लेती है और दिलीप को बहुत बुरा भला कहती है। दिलीप आगे बढ़ता है तो वो गोली चला देती है। दिलीप मर जाता है। नीना पर कत्ल का मुकदमा चलता है। वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है। राजन इसके खिलाफ गवाही देता है और नीना को बेवफा साबित करता है। नीना को काला पानी की सज़ा होती है। राजन घर आता है तो नीना के नाम एक खत इसे मिलता है जिसमें दिलीप ने लिखा था कि नीना सिर्फ और सिर्फ राजन से मोहब्बत करती है और राजन को अपना देवता समझती है। राजन की आंखें खुल जाती हैं और वो शर्मिंदा होकर बेटी को साथ लेकर नीना से मिलने आता है, मगर नीना को कोई एहसास शर्मिंदगी नहीं है। वो काला पानी चली जाती है और राजन पशेमानी की आग में जलता रह जाता है।

कहकशां प्रोग्राम के तहत फिल्म अंदाज की कहानी और उसके नगमे अभी आप सुन रहे थे। इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था जनाब मसूद अल्तमश ने, रावी थे शमीम कुरैशी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्री डिश पर हमारी नशा जारी है। लीजिए सुनिए।

और ये सुनिए नदिया के पार फिल्म का नापा, आवाज़ है चंद्रानी मुखर्जी, जसपाल सिंह और सुशील कुमार की, नगमा निगार मौसीकार रविंद्र जैन।

बालिका वधू फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे। अमित कुमार की आवाज़ में नगमा निगार थे, आनंद बख्शी मौसीकी आर डी बर्मन की थी। और लीजिए अब सुनिए हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में इस प्रोग्राम का अगला नगमा। फिल्म है अखियों के झरोकों से, मौसीकी रविंद्र जैन की।

0: परिवार ने खबर दी है कि भगदड़ का यह वाकया आज सुबह अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर पेश आया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक भगदड़ इस अफवाह के बाद हुई कि गिरे हुए बिजली के खंभे से करंट आ रहा है। वजीर आजम ने मोदी और वजीर दफा राजनाथ सिंह ने लखीसराय में भगदड़ के सबब होने वाले जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। जनाब मोदी ने यकीन दिलाया कि मकामी इंतजामिया मुतासर लोगों की पूरी मदद कर रही है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने महलुकीन के करीबी रिश्तेदारों को 4-4 लाख रुपए की नकद इमदाद देने का ऐलान किया है। इंडोनेशिया में आज सुबह सवेरे 5.9 शिद्दत का जलजला आया। जलजले का मरकज तकरीबन 10 किलोमीटर गहराई में था। अभी चंद रोज पहले ही मशरकी इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत का जलजला आया था। मुल्क की कौमी आफात से निपटने वाली एजेंसी ने कहा है कि हालिया जलजलों से मरने वालों की तादाद बढ़कर 54 हो गई है। हुक्काम जानी और माली नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं। बचाव टीमें सैकड़ों जख्मी अफराद को तिब्बी मदद फराहम कर रही हैं। हुक्काम ने 11 हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों को काम पर लगाया है और ट्रांसपोर्ट के दूसरे जराए का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों में इमदाद पहुंचाई जा सके और लोगों को बाहर निकाला जा सके। जिम्बाब्वे में कश्ती के एक हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 84 हो गई है। पिछले हफ्ते करीबा झील में 153 मुसाफिरों को ले जा रही एक कश्ती गरकाब हो गई थी। इसमें गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। पुलिस ने कहा है कि मरने वालों की तादाद बढ़कर 84 हो गई है क्योंकि मजीद लाशें बरामद की गई हैं। पिछले दिन यह तादाद 72 थी। जिम्बाब्वे की कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली एजेंसी ने कहा है कि 72 लोगों को बचा लिया गया है। इस कश्ती में कुल 153 अफराद सवार थे जबकि इसमें सिर्फ 90 लोगों के सवार होने की गुंजाइश थी। करीबा झील इंसानों के जरिए बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी झील है। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर से ज्यादा जबकि इसकी चौड़ाई तकरीबन 40 किलोमीटर है। अमेरिका के हवाई में लाला नाम का तूफाने बादोबारा आने के बाद मिट्टी के तोदे गिरने और अचानक सैलाब आ जाने के सबब एक शख्स कार हादसे में हलाक हो गया। 100 से ज्यादा इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। अलबत्ता हवाई के गवर्नर जोश ग्रीन ने कहा है कि बड़े पैमाने पर जानी नुकसान नहीं हुआ है। 2 लाख से ज्यादा घरों में बिजली मुनक़ता हो गई। लाला अब कमज़ोर पड़ गया है और वो हवाई के जुनूब में मगरब की जानब बढ़ गया है। FIH हॉकी वर्ल्ड कप में आज शाम नीदरलैंड्स के एम्स्टरवीन में वैगनर हॉकी स्टेडियम में पूल डी के दूसरे मुकाबले में भारतीय मर्दों की टीम का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेंगी। भारत ने टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज इतवार को वेल्स को 1-3 गोल से हरा कर किया था। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने भी अपनी मुहिम की मजबूत शुरुआत की थी। उसने टूर्नामेंट के पहले दिन पाकिस्तान को 1-4 गोल से शिकस्त दी थी। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में MR अर्जुन और हरिहरन पर मुश्तमिल भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। दोनों दूसरे मैच में 6-4 से सबकत बनाए हुए थे तभी उनके आयरलैंड के हरीफ खिलाड़ी स्कॉट गिल्डी और पॉल रिनॉल्ड्स जख्मी होकर खेल से बाहर हो गए जिसके बाद उन्हें फातह करार दे दिया गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने अपनी सदारत के दौरान ब्रिक्स ताउन के लिए आवाम पर मरकूज और इंसानियत को मुकदम रखने वाले नुक्ते नजर का यादा किया है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस में 5.9 शिद्दत का नया जलजला आया है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 54 हो गई है। जिम्बाब्वे में कश्ती हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 84 हो गई है। नीदरलैंड्स के एम्स्टरवीन के मकाम पर FIH हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अपने दूसरे मैच में आज भारतीय मर्दों की टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत के MR अर्जुन और हरिहरन मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडेज पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात। अब
2: यह आकाशवाणी का गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारे प्रसारण डीआरएम पर 909 किलोहर्ट्ज पर, एफएम पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। संध्या के 5 बजे हैं, ये समय है युववाणी का।

नमस्कार युवाणी सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आज हमारी तरफ से। दोस्तों, सावन का महीना बीतते बीतते अब इस मुकाम पर आ पहुंचा है जहां के बस ये कुछ ही दिनों का मेहमान है। सावन का महीना भक्ति और मस्ती के अलावा बहनों के लिए उनके भाई के प्यार का प्रतीक है, जहाँ बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की दुआएं मांगती है, वहाँ भाई अपनी बहन को एक सुरक्षा का वचन देता है, वायदा करता है। अगर इंसान अपने व्यक्तित्व में इस तरह से निखार करे कि जहाँ उसकी मौजूदगी में मौजूद जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, तो असल मायने में ये एक अच्छे समाज का उदाहरण होता है। हम अपने व्यक्तित्व को इस तरह का बनाएं कि प्रत्येक महिला का हम सम्मान करें, और ये सम्मान किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि हमारे जो संस्कार हैं वो इस तरह के होने चाहिए। बहरहाल, आज के कार्यक्रम युवाणी में कुछ बातें और कुछ गाने हम सुनेंगे। कार्यक्रम का आगाज हम इस गाने के साथ करें जिसे आप सुनें। आवाज़ें सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की है। ये गाना हजरत जयपुरी ने लिखा और धुन इस गाने की शंकर जयकिशन ने बनाई।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
8: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
7: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
9: गीत के बाद आपने कुछ संदेश सुने। दोस्तों, बात हम करें गीता और उसमें दिए गए संदेश की। भगवत गीता में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो कर्म योग की है। भगवान श्री कृष्ण का कहना कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और इन कर्तव्य निर्वहन के दौरान उसे कदापि ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका फल उसे क्या मिलेगा। चूंकि कर्तव्य है आपका किसी कार्य को करना, तो जैसे ही आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया उसका फल आपको प्राप्त हो गया। कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। चूंकि कर्मशील व्यक्ति प्रत्येक चीज को प्राप्त कर सकता है, यही संदेश हमें गीता देती है। इसके अलावा भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ये मार्ग भक्ति, पूजा, ध्यान, मंत्र जप और समर्पण आदि के माध्यम से किया जा सकता है।

है। इसमें शब्द एक समर्पण है। हम अगर अपने आप को समर्पित कर दें तो ऐसे में न हमारी कोई इच्छा रहती है, न हमारी कोई आकांक्षा रहती है, तो हमें वो सब प्राप्त हो जाता है जिसके लिए हम बने हैं या जो हमारे लिए वांछित है। गीता हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा सूत्र हमें जो बताता है वो है योग। योग करने वाले का मन शांत और एकाग्र रहता है, और शांत मन से हम सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं। खैर, इन बातों के अलावा अगर हम ऐसे सदग्रंथों के नज़दीक जाते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, तो आप निश्चय मानिए कि जीवन की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं होती जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते।

गीत अभी आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप युवाणी आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। दोस्तों, ईश्वर की बनाई तमाम जो रचनाएं हैं, उन सब रचनाओं में कोई ना कोई प्रतिभा, कोई ना कोई गुण होता है। हम बात जीव जंतुओं से लेकर

मनुष्य तक कर सकते हैं। अब मनुष्य इन जीवों में सबसे अलग इसलिए भी है क्योंकि उसके पास भावना है और बुद्धि है। बुद्धि और भावना के द्वारा वो हर चीज़ को हासिल तो कर सकता है, लेकिन खुद की जो प्रतिभा है उसको पहचानना बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ लोग अपनी प्रतिभा को पहचान कर उस पर मेहनत करते हैं, कईयों को उनके गुरु लोग उनकी प्रतिभा के अनुसार ऐसे सांचे में, ऐसे कार्य में ढाल देते हैं कि वो आगे बढ़ते हैं और प्राप्त करते हैं। वहीं कुछ लोग अपनी प्रतिभा को पहचाने बिना ऐसा काम करते हैं जिसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं। तो ऐसे व्यक्ति काम तो करते हैं लेकिन उस काम का जो परिणाम प्राप्त होना चाहिए वो परिणाम प्राप्त नहीं होता। हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो प्रतिभा है, हमें वो सब दे सकता है जिसकी हम इच्छा रखते हैं। हम करना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन क्या एक जीवन में ये संभव है? आपने अपनी प्रतिभा को जाना नहीं, किसी दूसरे को कार्य करते देख खुद को उस कार्य में धकेल दिया तो आप उस कार्य में सफल कितने हो पाएंगे ये आप स्वयं बेहतर जानते हैं। कुछ लोगों की प्रतिभा छिपी रह जाती है क्योंकि वो उसे जानने का प्रयास ही नहीं करते, और कुछ लोग अपनी प्रतिभा को तो जान लेते हैं लेकिन उस पर मेहनत करना नहीं चाहते। तो अपनी प्रतिभा को पहचानें, उस पर मेहनत करें। हर एक कार्य लगातार अभ्यास मांगता है, तो अभ्यास से जीन चुराएं और जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करें जो आपकी इस प्रतिभा के कारण आपको मिल सकता है। बहरहाल गाना आपको सुनवाएंगे इरशाद कामिल का, संदेश शांडलिये ने संगीत बनाया, उस्ताद राशिद खान ने इस गाने को आवाज़ दी है।

0: फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: दोस्तों, बात करें बदलते समय की। बदलता समय यानी किसी इंसान के जीवन में यूं समझें कि ऐसी परिस्थितियों का बन जाना जहां पे वो व्यक्ति अपने हाथ से अपनी शोहरत, अपनी दौलत यूं फिसलते देखता है। इस फिसलन में वो बहुत सारे ऐसे रिश्तों को, बहुत सारे ऐसे दोस्तों को भी अपने हाथ से फिसलते देखता है। शायर बशीर बद्र लिखते हैं कि है अजीब शहर की जिंदगी, न सफर रहा न कयाम है, कहीं कारोबार सी दोपहर, कहीं बदमिजाज सी शाम है, और यूं ही रोज मिलने की आरजू, बड़े रख रखाव की गुफ्तगू,

ये शराफतें नहीं बेगरस, उसे आपसे कोई काम है। जब तक आपसे किसी को काम है तो वो आपसे बड़े रखरखाव की बात करता है, आपसे बहुत प्यार भरी गुफ्तगू उसकी होती है, लेकिन जैसे ही आपसे काम निकला और वो व्यक्ति आपसे किनारा कर लेता है। ये है बदलता समय। ऐसे समय की पहचान करना बड़ा ज़रूरी है, ऐसे मित्रों को देखना बड़ा ज़रूरी है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पे विश्वास करना छोड़ दें।

करेंगे जिनके पास बहुत सारा धन है या बहुत सारी उनके पास शोहरत है, और ना ऐसे लोगों को अपने से दूर रखें जिनके पास हो सकता है धन कम हो लेकिन जो दिल से आपसे जुड़े हैं। बदलते समय की पहचान करने के लिए कोई पुस्तक नहीं होती, कोई किसी को बता नहीं सकता। ये सब चीज़ें आप अपने अनुभव से सीखते हैं, अपने अनुभव से जानते हैं। सो ऐसे वक्त को पहचाने, क्योंकि बुरा समय आपके जीवन के उन सत्यों से सामना कराता है जिनका आपने अच्छे समय में कभी सोचा भी आपने नहीं था। सो बुरे समय की पहचान करें और ऐसी बुरी परिस्थितियों के अंदर भी आप अपना संयम बनाए रखें और ऐसे लोगों को जाते हुए, दूर जाते हुए देखिए जो आपके साथ मात्र आपकी दौलत या आपकी शोहरत के कारण आपसे मदद थे। दोस्तों, ये कार्यक्रम युवाणी है जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। लीजिए एक गाना सावन का सुनें।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: जी हाँ दोस्तों, बात हम कर रहे थे सावन की। सावन हमें बहुत सारी संदेश देता है, जिनमें कुछ संदेश ऐसे प्यार भरे होते हैं जिन्हें सुनने के लिए 12 महीने तक या माफ करें 11 महीने तक हम इंतज़ार सावन का करते रहते हैं। ऐसे मीठे संदेश क्या हो सकते हैं सावन के, आपको बताएं? यूँ आपको पता भी है, लेकिन कुछ अगर गीत की शक्ल में आपको बताएं तो शायद आप ज्यादा समझेंगे।
5: बस आपके लिए, ताकि

सच में दोस्तों, सावन हमें कुछ न कुछ कहता ही रहता है। यूं दोस्तों, सावन में भांत भांत के फूल खिलते हैं। अब इन फूलों में कौन सा रंग प्यारा है और कौन सा रंग आपको सबसे दुलारा है, ये तो आप जानते हैं। सावन तो फूल खिलाने का मौसम है। कैसे फूल खिलते हैं देखिए आप।

आन मिलो सजना। अभी आपने ये गाना सुना, गाना आनंद बख्शी ने लिखा था, धुन ये खूबसूरत धुन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की थी और आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की। दोस्तों, इस बहार के मौसम में यानी सावन के मौसम में दिल बार बार जिन्हें पुकारता है उनका आना ऐसे मौसम में लाजमी होता है।

अभी आपने शंकर जयकिशन का संगीत सुना। शैलेंद्र का गाना था लता मंगेशकर की आवाज थी राजकुमार फिल्म के लिए। दोस्तों आप सुने आज के दिन की बात, आज के इतिहास की बात। आज यानी 17 अगस्त, आज के दिन 1743 में स्वीडन और रूस के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज ही के दिन 1836 में ब्रिटेन की संसद में जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित पंजीकरण स्वीकार किए गए थे। आज ही के दिन महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को फांसी पर चढ़ाया गया था 1909 में। आज के दिन 1915 में चक्रवाती तूफान से गैल्वेस्टन और टेक्सास में 275 लोगों की मृत्यु हुई थी। और दोस्तों आज के दिन 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने वाशिंगटन में पेटेंट समझौते पर दस्तखत किए थे। और आज के दिन जन्मे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में 1961 में जन्म हुआ हिंदी भाषा की जानी मानी कवयित्री अनामिका का। आज ही के दिन 1916 में साहित्य जगत में उपन्यासकार के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त अमृतलाल नागर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1941 में बिमल जालान भारतीय रिजर्व बैंक के 20वें गवर्नर का जन्म हुआ था। और आज के दिन जिनका निधन हुआ उनमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं पंडित जसराज, जिनका 2020 में निधन हुआ था। आप भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्वविख्यात गायक हैं। आज के दिन फादर कामिल बुल्के का निधन हुआ था 1982 में, जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो ये थे वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। और गाना आपके लिए बड़ा प्यारा सा मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ों में, इस गाने को लिखा आनंद बख्शी ने और धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गाने के साथ आज के इस प्रोग्राम से अब अनुमति दें हमें कि फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की पासे बजी तुम याद आए। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रही थी अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे थे। लीजिए, हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय सुनिए। पहले सुनिए आज के दिन के शेष कार्यक्रमों के बारे में। संध्या 7 बजे चौपाल कार्यक्रम में आज चर्चा होगी बरसात के मौसम में पशुधन की देखभाल, खरीफ की फसलों में खरपतवार नियंत्रण, वर्षा जल का भंडारण, वृक्ष लगाएं पुण्य कमाएं और उपलब्ध होने पर मौसम और बाजार भाव। गीत और भजन आपको सुनवाए जाएंगे। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में 8:15 पर आप सुनेंगे एक ही फिल्म से कार्यक्रम। कुछ फिल्मी गाने रात को हम आपको सुनवाएंगे 10:30 पर। सुगम संगीत में चंद गजलें आपकी नजर की जाएगी रात 9:15 पर। तो ये थी जानकारी आज के दिन के शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल के दिन प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

कल सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। चिंतन का समय रहेगा सुबह 6:45। किसान भाइयों के लिए सुबह खेती हरा वास्ते कार्यक्रम में चर्चा होगी, दीमक से खेत को कैसे बचाएं। मानस दान में भाग संख्या 338 का पाठ आप सुनेंगे। दिन में 9:30 पर कुछ दो गाने आप सुनेंगे फिल्म संगीत प्रोग्राम के तहत आज के फनकार। ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से सवेरे 10 बजे होता है। कल हमारे सुनने वाले 11 बजे अनुरोध गीत कार्यक्रम सुनेंगे। फिल्म संगीत का ये फरमाइशी कार्यक्रम फेसबुक कमेंट्स पर आधारित आपकी फरमाइश का है। एक ही शीर्षक कार्यक्रम में दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे कुछ गाने दुआ शीर्षक पर। खेत खलिहान में 12:50 पर चर्चा होगी सिंचाई की आधुनिक विधियां विषय पर। घर आंगन कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी चर्चा बच्चों का बढ़ता वजन एक गंभीर समस्या, पोषण और स्वास्थ्य का खजाना श्री अन्न, बरसात के मौसम में घरेलू उपचार और कुछ काम की बातें। गाने इस कार्यक्रम में राजस्थानी आप सुनेंगे ही। फिल्मी गाने दिन में 2:30 पर होंगे। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे कल विकास पारीख के साथ। चर्चा होगी युवा अपने अवसरों को पंख दें, बुजुर्गों के सम्मान का संदेश, नशा मुक्ति और स्वास्थ्य और संघर्ष से सफलता। प्यारे गाने इस कार्यक्रम में हमारे युवा दोस्त सुनेंगे। सराय की कार्यक्रम संध्या 6:05 पर होगा। किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम संध्या 7:30 पर होगा। चूंकि कल के दिन 7 बजे से 7:30 पर आकाशवाणी जयपुर से किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनते हैं। चौपाल कार्यक्रम में चर्चा होगी गग्गर बहाव क्षेत्र में सावधानियां, वर्षा काल में बिजली उपकरणों से सावधान, बच्चों को दे अच्छे संस्कार, मौसम और बाजार भाव उपलब्ध होने पर। हम अपने सुनने वालों को बताएं कल रात 9:15 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे हेलो गोरबंद। कार्यक्रम के संयोजक नवीन सिसोदिया और प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम को श्रीपाल शर्मा। श्रोता अपने टेलीफोन हमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं कल दिन में 11 बजे से 11:30 तक। दिन में हमारे नंबर हैं 2209992।

22-0993, सूरतगढ़ का एसटीडी कोड नंबर 01509, और कार्यक्रम होगा रात को 9:15 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा प्यारा कार्यक्रम गीत गंगा। पेश करेंगे ये कार्यक्रम विकास पारिक। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सरायकी भाषा का कार्यक्रम सुनिए, झोंक माही दी।

अभी आप सुन रहे थे सराइकी भाषा का हमारा कार्यक्रम झोंक माहिती। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर प्रादेशिक समाचार राजस्थानी भाषा में होंगे। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 12 में कहा, राजस्थान में वीबीजी रामजी के तहत इस साल 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में 309 निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। केंद्र सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई, अगले 4-5 दिनों में पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में छुटपुट बारिश की संभावना। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों के लिए 3,473 करोड़ रुपए की लागत से 2,89,000 पक्के मकान बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज 12 में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के तहत बनाए जाएंगे।
1: 3,473 करोड़ रुपए की लागत से 2,89,355 आवास आज राजस्थान को समर्पित किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कृषि विभाग के अंतर्गत आरके बी बाई और कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत

0: 140 करोड़ 59 लाख रुपए की भी ये पत्र मैं आपके हाथों में राजस्थान की जनता के लिए सौंप रहा हूं।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि उन्नत योजना के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 340 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र भी सौंपा। श्री चौहान ने यह भी कहा कि राजस्थान में 16 लाख लखपति दीदी बन चुकी है, अब 32 लाख और बनाई जाएंगी। मिलावटी कीटनाशक बनाने वालों पर लगाम लगाने के लिए अगले संसद सत्र में नया कानून लाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि राजस्थान में इस साल वीबीजी रामजी के तहत गांवों में 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
0: अब ये विकसित भारत जी रामजी योजना आई है और उस योजना में राजस्थान के भाई और बहनों, इस साल मार्च तक 7 महीने के लिए हमने 7,582 करोड़ रुपया दिए। 7,582 करोड़ भारत सरकार के और 40% जुड़ेंगे राजस्थान के, तो 12,000 करोड़ रुपया 9 महीने में खर्च होना है गांव में।
1: श्री चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बारां और झालावाड़ जिले को 1,258 करोड़ रुपए के 98 विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं प्रदेश के 5 लाख पशुपालकों को 280 करोड़ रुपए की राशि भी उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। साथ ही सखी योजना के तहत स्कूटी वितरण और बारां में ग्राम श्री राज सखी मार्ट का लोकार्पण किया गया। प्रदेश के 309 निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी आज निकाली गई। इसके साथ ही 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाओं में वर्गवार आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा की मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई। इसमें SC वर्ग को 20, ST को 6 और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 30 वार्ड मिले हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 31, OBC महिलाओं को 10, SC महिलाओं को 7 और ST महिलाओं को 2 वार्ड मिले हैं। अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में से 20 वार्ड अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति और 16 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, डीग, अलवर, नागौर, फलौदी, करौली, भीलवाड़ा और पाली सहित अन्य जिलों में जिला कलेक्टर की मौजूदगी में लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के साथ ही अब संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की चुनावी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना समाज का नैतिक उत्तरदायित्व है। श्री बिरला आज कोटा में राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प संवाद सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को समाज के विकास का मुख्य आधार बताया। श्री बिरला ने कहा कि महिलाएं और बालिकाएं पूरी आज़ादी के साथ आगे बढ़ सकें, इसके लिए सभी को मिलकर सुरक्षित वातावरण तैयार करना होगा।
2: आज हमारे बीच में हजारों महिलाएं महिला सुरक्षा का संकल्प के साथ समाज में अच्छे संस्कार, अच्छे विचार और एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर बढ़ेंगे जहां हमारी संस्कार और संस्कृति हो, जहां महिला सुरक्षित भी हो और महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व भी करें। आज भारत के अंदर महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है और आजादी की पहली लड़ाई के साथ देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद देश के निर्माण के अंदर महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है।
1: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभिभावक और शिक्षक की अनुमति लेकर मीडिया विद्यार्थियों से बात कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्राचार्य की अनुमति के बिना स्कूल में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। विद्यार्थियों की सुरक्षा और निजता को लेकर ये आदेश जारी किया गया है।
3: छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होते हैं उनकी फोटो लेना, कोई भी कार से बाइक लेना, इसके पहले परमिशन जरूरी है। किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी।

0: सरकारी विद्यालय संस्था प्रमुखों से, और इसलिए हमने सबको कहा है कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, उनका अधिकारों को हनन न हो, क्योंकि बाल संरक्षण अधिनियम भी यही कहता है। और इसलिए हमने कहा कोई भी व्यक्ति बिना किसी बात के जाकर के इंटरव्यू लेगा, बच्चों की निजता भंग करेगा, बच्चों से आराम से प्रश्न करेगा, यदि कोई बहुत आवश्यक है तो हमारा जो संस्था प्रधान है उसके लिखित में अनुमति लेगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। वे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोल रही थी। उन्होंने कहा कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए दिशा तय करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में है। उन्होंने भरोसा जताया कि उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद सरकार बैंकिंग क्षेत्र को और गति देने में सक्षम होगी। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की आधिकारिक घोषणा की। उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बीएल संतोष पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पोस्ट में बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशीली और प्रतिबंधित दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि एक गोदाम से करीब 4 लाख से ज़्यादा टैबलेट और नशीले कैप्सूल जब्त किए गए हैं। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के सप्लाई नेटवर्क की जांच की जा रही है।
2: जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत नशा और नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तहत टाउन थाना पुलिस ने नशे की टैबलेट्स की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। एक अवैध गोदाम संचालित की जा रही थी जिसमें करीब 4 लाख से अधिक नशे की गोलियां बरामद की है। इसमें जो मुख्य किंगपिन है मनप्रीत सिंह, उसके साथ साथ उसके जो दो गुर्गे जो उसके लिए काम करते हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। ये जो बरामद की है टैबलेट की खेप, इसका अनुमानित कुल कीमत मार्केट में करीब 17 करोड़ के आसपास है। इतने भी लोग शामिल हैं अनुसंधान में, उनका हम पहुंचेंगे और सबको नामजद करके आगे की अनुसंधान की जाएगी।
1: और अब मौसम। राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की गतिविधियां कमजोर हुई हैं, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन राज्य के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में छुटपुट बौछारें पड़ने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में मॉनसून की रफ्तार धीमी हो गई है, किंतु बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में 19 से 21 अगस्त के दौरान मॉनसूनी गतिविधियों के फिर से जोर पकड़ने के आसार हैं। अलवर, भरतपुर, दौसा और डीग सहित 8 जिलों में कल बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 7 जिलों में अत्यधिक बारिश हुई है, 20 जिलों में सामान्य और 14 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। छोटे बड़े 693 बांधों में से 39 लबालब हैं, वहीं 446 आंशिक रूप से भरे हुए हैं। प्रदेश भर में सावन के पवित्र महीने के तीसरे सोमवार पर आस्थामय माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही नाग पंचमी का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। शिवालयों में भक्ति की भीड़ उमड़ी और जलाभिषेक किया गया, साथ ही भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित किए गए। सवाईमाधोपुर जिले के घुश्मेश्वर महादेव, अर्णेश्वर, अमरेश्वर और सोलेश्वर महादेव सहित सभी छोटे बड़े शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बाड़मेर के चौहटन स्थित कपालेश्वर मंदिर और जसदेर स्थित शिव शक्ति धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। उधर सलुम्बर में आज 3 दिवसीय कांवड़ यात्रा का समापन हुआ। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटिक क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप के बेकाबू होकर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 20 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल रेफर किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने

0: भरी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मैदानी स्तर पर सक्रिय रहने और मिलावटी चीज़ों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने अधिकारियों को बिना पर्ची के मिलने वाली OTC दवाइयों की सैंपलिंग को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी दवाइयों की नियमित जांच कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 12 में कहा, राजस्थान में VBG रामजी के तहत इस साल 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में 309 निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। केंद्र सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई, अगले 4-5 दिनों में पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में छुटपुट बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर बेड़ा। जोधपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस उम्मीद राजकीय स्टेडियम में उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। संसदीय कार्य विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। RAC प्रथम मंडोर रोड ने मार्च पास्ट प्रतियोगिता जीती। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 77 प्रतिभाओं, अधिकारियों, कर्मचारियों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने व्यायाम प्रदर्शन किया और आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत और सिल्वर जुबली समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कानून बंद किला नहीं बल्कि ऐसा खुला मंच होना चाहिए जहां हर नागरिक को न्याय और सुनवाई मिल सके। समारोह में UG, PG और PhD के 176 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 24 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। उन्होंने युवा न्यायविदों से न्याय व्यवस्था को सुलभ और पारदर्शी बनाने का आह्वान किया। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से नियमित विमान सेवाओं की शुरुआत हुई। पहली उड़ान के यात्री चंद्रवीर सिंह को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने टिकट और स्वागत किट देकर रवाना किया। यात्रियों का राजस्थानी परंपरा, पुष्प गुच्छ, बैंड और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों से स्वागत किया गया। श्री शेखावत ने कहा कि 12 वर्षों के प्रयासों से एयरपोर्ट आधुनिकीकरण का काम पूरा हुआ है। उन्होंने बताया कि 2014 की तुलना में यात्रियों और विमान परिचालन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जोधपुर की पारंपरिक मोजड़ी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिल गया है। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन और ग्राम विकास सेवा संस्थान को इसका प्रमाण पत्र सौंपा गया। करीब 200 वर्ष पुराने मोजड़ी उद्योग का घरेलू कारोबार लगभग 100 करोड़ रुपए और निर्यात करीब 10 करोड़ रुपए है। GI टैग से निर्यात और कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। इससे कारीगरों को बेहतर कीमत, फर्जी उत्पादों पर रोक और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण में मदद मिलेगी। ट्रेनों में बेड रोल उपलब्ध कराने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। जोधपुर की लॉन्ड्री में लागू व्यवस्था के तहत धुलाई के बाद AI कैमरे, बेडशीट, पिलो कवर और अन्य लिनन की गुणवत्ता जांचेंगे। दाग या खराब गुणवत्ता वाला लिनन अलग होगा। बेडशीट का डिजिटल उपयोग और धुलाई रिकॉर्ड भी तैयार होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने हाल ही में ट्रेन समय पालन में भारतीय रेलवे के सभी मंडलों में पहला स्थान हासिल किया। मंडल ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 100% और समग्र रूप से 99.07% समय पालन दर्ज किया। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने इसे टीम वर्क, ट्रेन प्रबंधन और परिचालन दक्षता का परिणाम बताया। उपलब्धि में परिचालन, इंजीनियरिंग, विद्युत, सिग्नल, दूरसंचार और यांत्रिक विभागों के समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

0: आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने अचानक होने वाली घटनाओं के दौरान मस्तिष्क के ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया से जुड़े विशेष नेटवर्क और ब्रेन वेव्स की पहचान की है। शोध से पता चला कि मस्तिष्क जरूरी संकेतों को गैर जरूरी सूचनाओं से अलग कर तत्काल प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता है। अध्ययन के निष्कर्ष स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सहायक तकनीकों में भी उपयोगी होंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 9 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित प्रयोगशाला में 6 आधुनिक मशीनों से आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता जांची जाएगी। इनमें एलोपैथिक दवाओं की मिलावट और सीसा, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम जैसी भारी धातुओं की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। शुरुआत में किडनी, लिवर, हड्डियों और पाचन तंत्र से संबंधित दवाओं की जाँच होगी। इससे नकली और मिलावटी दवाओं की पहचान आसान होगी। इसके साथ ही जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 मई कहो राजस्थान माए वीबीजी रामजीरा तहत ई साल 12,000 करोड़ रुपया खर्च करया जावेला। प्रदेश माए 309 निकायां रा वार्डां रा आरक्षण री लॉटरी निकाली ची। केंद्र सरकार विकसित भारत रो लक्ष्य हासिल करण सारू बैंकिंग सुधार माथे बेगी आला दर्जा री समिति बनावेला। और प्रदेश रा घनखर हलका माए चौमासा री बिरखा मंदी पड़ी, आवता 4-5 दिन माए उगनी और उत्तराद हलका माए छिटपुट बिरखारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य माए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रातेत 3,473 करोड़ रुपये रा खर्चों 2,89,000 पक्का मकान बनावन रो ऐलान की नो है। वे आज 12 मई ओ ऐलान की नो
2: 3,473 करोड़ रुपए की लागत से 2,89,355 आवास आज राजस्थान को समर्पित किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कृषि विभाग के अंतर्गत आरकेबी बाई और कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 340 करोड़ 59 लाख रुपए की भी ये पत्र में आपके हाथों में राजस्थान की जनता के लिए सौंप रहा हूं।
1: श्री चौहान कहो कि राजस्थान माए 16 लाख लखपति दीदियां बन चुकी है और 32 लाख और बनाई जावेला। वे कहो कि कीड़ा मारण री मिलावटी दवाइयां बनावन वाला माथे लगाम लगावन सारू संसद रा आवता सत्र माए नुओ बिल लायो जावेला। केंद्रीय कृषि मंत्री कहो कि राजस्थान रा गांव माए ई साल वीबीजी रामजी रातेत 12,000 करोड़ रुपया खर्च करया जावेला।
2: अब ये विकसित भारत जी रामजी योजना आई है और उस योजना में राजस्थान के भाई और बहनों इस साल मार्च तक 7 महीने के लिए हमने 7,582 करोड़ रुपया दिए। 7,582 करोड़ भारत सरकार के और 40% जुड़ेंगे राजस्थान के, तो 12,000 करोड़ रुपया 9 महीने में खर्च होना है गांव में।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज 12 और झालावाड़ जिला ने विकास रा 1,258 करोड़ रुपया खर्च वाला 98 कामारी सौगात दीनी। वह राज्य रा 5,00,000 पशुपालकों रा खाता माए 280 करोड़ रुपया री रकम ही भेजी। इस आगे सखी योजना रा तेत स्कूटी दीरी जी और 12 माए ग्राम श्री राज सखी मार्ट जनता ने सौंपीचियो। प्रदेश रा 309 स्थानीय निकाया माए वार्डा रा आरक्षण री लॉटरी आज निकाली जी। इस आगे 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकावां माए वर्गवार आरक्षण री तस्वीर साफ की है। जयपुर नगर निगम रा 150 वार्डां सारू जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा री मौजूदगी माए लॉटरी निकाली ची। इन माए अनुसूचित जाति तबका सारू 20, अनुसूचित जनजाति तबका सारू 6 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सारू

0: 31 वार्ड आरक्षित करी छिया है। सामान्य वर्ग री महिलावां सारू 31, अन्य पिछड़ा वर्ग री महिलावां सारू 10, अनुसूचित जाति री महिलावां सारू 7 और अनुसूचित जनजाति री महिलावां सारू 2 वार्ड राखी छिया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर, अजमेर, चूरू, बाड़मेर, डीग, अलवर, फलौदी, भीलवाड़ा और पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माए जिला कलेक्टर री मौजूदगी माए लॉटरी निकाली ची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो है कि महिलावां और टाबरियां री हिफाजत तय करनो समाज री नैतिक जिम्मेदारी है। वे आज कोटा माए राखी जिया राज्य स्तर रा महिला सुरक्षा संकल्प संवाद सत्र माए बोल रहा है। श्री बिरला महिलावां ने मजबूत बनावण ने समाज रा विकास री बुनियाद बतायो। लोकसभा अध्यक्ष कहो कि महिलावां और टाबरियां रो पूरी आजादी आगे बढ़वो ते करण सारू सगला ने मिलर सुरक्षित वातावरण तैयार करनू वेला।
1: आज हमारे बीच में हजारों महिलाएं महिला सुरक्षा का संकल्प के साथ समाज में अच्छे संस्कार, अच्छे विचार और एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर बढ़ेंगे जहां हमारी संस्कार और संस्कृति हो, जहां महिला सुरक्षित भी हो और महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व भी करें। आज भारत के अंदर महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है और आजादी की पहली लड़ाई के साथ देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद देश के निर्माण के अंदर महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है।
0: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अखबार, टीवी और रेडियो वाला रे दाखिल वेवण माथे कोई रोक नहीं लगाई ची है। वह कहो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कानून जारी करी जिया हुक्म ने गलत तरीकों बतायो जा रियो है। शिक्षा मंत्री कहो कि विद्यार्थियों रमायता और अध्यापकों की मंजूरी लेर मीडिया विद्यार्थियों सागे बातचीत कर सके है। वे कहो कि शाला प्रधान री मंजूरी बगैर स्कूल माए बाहर रा लोग दाखिल नहीं वे सकेला।
2: छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होते हैं फोटो लेना, कोई भी कार से बाइक लेना, इसके पहले परमिशन जरूरी है। किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय संस्था प्रमुख है उसको। और इसलिए हमने सबको कहा है कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, उनका अधिकारों को हनन न हो, बाल संरक्षण अधिनियम भी यही कहता है। और इसलिए हमने कहा कोई भी व्यक्ति बिना किसी बात जाकर के इंटरव्यू लेगा, बच्चों की निजता भंग करेगा, बच्चों से अनावश्यक प्रश्न करेगा, यदि कोई बहुत आवश्यक है तो हमारा जो संस्था प्रधान है उसके लिखित में अनुमति लेगी।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्र सरकार विकसित भारत बनावण रो लक्ष्य हासिल करण सारू बैंकिंग सुधार माथे विचार बाबत बेगी आला दर्जा री समिति बनावेला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली माए आ जानकारी दीनी। वे सरकारी बैंका रा 2 दिन रा सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र रे मौके बोल रही ही। वित्त मंत्री कहो कि भारत रा बैंक मौजूदा दौर माए मजबूत हालत माए है। राज्य री पहली वाली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भारतीय जनता पार्टी री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई ची है, जबकि राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सतीश पूनिया ने पार्टी रा राष्ट्रीय महासचिव बनाई चिया है। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज पार्टी री नवी राष्ट्रीय टीम रो आधिकारिक ऐलान कीनो। उदयपुर रा सांसद मन्ना लाल रावत ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा रा अध्यक्ष री जिम्मेदारी दी रिची है। इस आगे राजेश मंगल ने राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाई चिया है। पहली वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय महामंत्री री जिम्मेदारी सौंपी ची है, जबकि बी एल संतोष पार्टी रा संगठन महामंत्री बनिया रह वेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी रा नुआ ओहदादारा ने सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए बधाई और शुभकामनावां दीनी है। हनुमानगढ़ में पुलिस नशीली और रोक लगायोड़ी दवाइयां री मोटी खेप बरामद कीनी है। एसपी बी आदित्य बतायो कि एक गोदाम 4,32,000 नशीली गोलियां और कैप्सूल जब्त करी चिया। ये मामला में 3 जना ने गिरफ्तार करी चिया है, जहां पूछताछ रे जरिए आगे री जांच करी जा रही है।
3: जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत नशा और नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तहत टाउन थाना पुलिस ने नशे की टैबलेट्स

0: एक बहुत बड़ी केप पकड़ी है। एक अवैध गोदाम संचालित की जा रही थी जिसमें करीब 4 लाख से अधिक नशे की गोलियां बरामद की है। इसमें जो मुख्य किंगपिन है मनप्रीत सिंह, उसके साथ साथ उसके जो दो गुर्गे जो उसके लिए काम करते हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। ये जो बरामद की है टैबलेट की खेप, इसका अनुमानित कुल कीमत मार्केट में करीब 17 करोड़ के आसपास है। जितने भी लोग शामिल हैं अनुसंधान में उन तक हम पहुंचेंगे और सबको नामजद करके आगे की अनुसंधान की जाएगी।
1: मौसम राज्य में चौमासा री बिरखा फिलहाल कम पड़ की है, हालांकि कठे कठे हल्की मझला दर्जा री बिरखा वह रही है। मौसम विभाग रे मुजब आवता 4-5 दिन प्रदेश रा उगनी और उत्तराद उगनी हल्का में छांटा छिड़कारा आसार है। राज्य रा आतुनी हल्का रा जोधपुर संभाग में चौमासा री बिरखा कम पड़ की है, हालांकि बीकानेर संभाग और शेखावाटी हल्का में 19-21 अगस्त बीच बिरखा माए ओजू तेजी आवण री संभावना है। ये बीच अलवर, भरतपुर, दौसा और डीग समेत 8 जिला माए काल बारिश रो येलो अलर्ट जारी करी चियो है। जल संसाधन विभाग ने मुजब प्रदेश माए हाल ताई 7 जिला माए चोखो में बरसियो है, जबकि 20 जिला माए सामान्य और 14 जिला माए सामान्य कम बिरखा भी है। राज्य रा छोटा मोटा 693 बंधा मायूं 39 पूरा भर गया है, जबकि 446 थोड़ा घना भरिया है। प्रदेश माए सावन महीना रा तीजा सोमवार ने आज आस्था सागे नाग पंचमी रो त्योहार ही मनायो जा रियो है। ई मौके शिवजी रा मिंद्रा माए मोटी तादाद माए भगत पूग्या और भगवान रे जल और बील रा पत्ता चढ़ाया। सवाई माधोपुर जिला रा घुष्मेश्वर महादेव, अरणेश्वर, अमरेश्वर और सोलेश्वर महादेव समेत न्यारा न्यारा शिव मिंद्रा माए जात्रुआ रो तांतो लाग्योड़ो है। बाड़मेर जिला माए चौहटन रा कपालेश्वर मिंदर और जसदेर रा शिव शक्ति धाम मा थई हर हर महादेव रा जयकारा गूंज रिया है। सलूम्बर माए आज 3 दिन री कावड़ यात्रा पूरी हुई। सुखिया सोमवार रे मौके उदयपुर रा गुलाब बाग माए खास मेलो भरियो। ई बीच झुंझुनू जिला रा उदयपुर वाटी हल्का माए जात्रुआ री एक पिकअप बेकाबू फेर पलट जावणु एक जना री मौत वेगी, जबकि 20 जना जख्मी फेंक्या। घना जख्मी लोगों ने झुंझुनू रा BDK अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरु सुन ली रहो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 मई कहो राजस्थान माए VBG रामजी रा तहत ई साल 12,000 करोड़ रुपया खर्च करया चावेला। प्रदेश माए 309 निकायां रा वार्डां रा आरक्षण री लॉटरी निकाली ची। केंद्र सरकार विकसित भारत रो लक्ष्य हासिल करण सारू बैंकिंग सुधार माथे बेगी आला दर्जा री समिति बनावेला। और प्रदेश रा घणखर हल्का माए चौमासा री बिरखा मंदी पड़ी। हिस्सा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार,
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7 बजे हैं, समय है ग्रामीण परिवारों के कार्यक्रम चौपाल का।

ચોપાલ શૂન્યે સગલા શ્રોતામને સુનિલભાઈ ગયો છું મોકલી મોકલી રામ રામ. શ્રોતાઓ કહે કે લાગી લાય આકાશ મેં ઝડઝડ ગિરે અંગાર, લાગી લા આકાશ મેં ઝડઝડ ગિરે અંગાર, સંતને ઊણતા જે જગત મેં બળ મરતો સંસાર, બળ મરતો સંસાર. દેખો શ્રોતાઓ, સંતાંગી બડી મહિમા હૈ और संत के सानिध्य में जो कुछ जावे बे संत किए बिना आप बरगोई कर दिए, निर्मल कर दिए. तो आपने जिया भारतीय संस्कृति है जिया इन अंदर संतां की महिमा है, बेंतरियाँ की है, संयुक्त परिवार की बड़ी महिमा ही बड़ो बखान हो बिंगो. पर आजकल की है जगह अपना संयुक्त परिवार है, एकल परिवार में बदल गया है क्योंकि सबकी सोच ऐसी होगी है. संयुक्त परिवार में क्यों तो कह

दादो दादी बाबू है, माऊ है, और भी जगह रिश्तेदार हा, बांगा टाबर है, ये सारा की एक करनों की रेंता और एक रसोई में बड़ेड़ो भोजन करता। 15-20 जना को परिवार उन तो, और कई कई कुटुंबा तो एडा एडा मोटा के 100 जना को पानती हो रोजान पड़तो। संयुक्त परिवार श्रोताओं की है प्रेम को आधार हो और सगला एक दुख दूसरे के दुख सुख का साथी होता। संयुक्त परिवार अब भी देखने ने मिले है पर इक्का दुक्का है। अब मिनक की जकी प्रवृत्ति है ना श्रोताओं, बाकी है एक ले रहने की होगी। संयुक्त परिवार में सब शू मोटो जको हों तो जिया दादो है बाबू है वो की हो परिवार को मुखी हो, एर सारो जको कुटुंब हो वो भी मुख्य के लारे चाल तो, अरे बिंगो कहना मान तो बिंगी आओ बहादुर कर तो। श्रोताओं संयुक्त परिवार में 7-8 भाई होता है, भाइयांगा परिवार होता, बच्चा होता, ये सारा किया एक दूसरे के लारे सागे हाँ में हाँ मिलानता। एर जको सारो मोटो भाई हों तो वो किए बियो हों तो, बियो यानी सारो मोटो भाई, इनको जो किरदार है संयुक्त परिवार के अंदर बहुत ही जबरदस्त हो। सारी जिम्मेदारी इनका नौती है, बियो भी की है पूरे तन मन शू आपको जो को परिवार है बिंग पर वार देन तो, बिंग सारो परिवार बिंग लारो तो के लियाणु है के करणु है के बीजणु है सारो बार भी है गुपरो, के लेणु है के देणु है अटते ही कह भाई रिश्ता तें खटते करना है, आ बात भी बिंगू पर होती एर बियो भी बिचारो की हो राजी खुशी होती बार न ढोन तो, एर पूरे परिवार की जकी आस ही बिन्न है वो पूरी करण की पूरी इच्छा कर तो। बिये को जको कायदो हो वो पूरा परिवार राख तो, बिंगी जकी बात केड़ी होती ने श्रोताओं बाकी लो पर लकीरी, जबकि परिवार में मान लो 7-8 भाई होता वो परिवार बीतो ही मानीज तो हों तो, गाँव और गुआड़ में बिंगी पूरी के ताक होती। श्रोताओं को कहने को मतलब ओ कौन है कि भाई 7-8 लाठी होती तो बे पूरे गांव ने आगे चलाई रखता या कि सागी मार कूट करता, नहीं ओ कदी को नहीं को मतलब है। इनको मतलब वही है कि भाई बेड़ा हो गए जब रेंता नहीं तो किंगी हिम्मत कौन पड़ती कि भाई सामने देखनगी बिंगो कोई बुरो करनगी। पर आजकल की है संयुक्त परिवार खत्म हो गया और एकले रहनगी आदमी में प्रवृत्ति होगी। अब तो आप जहाँ रिश्तों देखा नहीं तो कह भाई एक ही छोरो छोरो ही है और आगे लारे की न वह के आज की भावना है संयुक्त परिवार ने खत्म करन लाग रही है और खत्म भी हो गया है। तो आपने ज़्यादा ज़्यादा अपने परिवार ने की है जोड़ के रखना चाहिए भाई, का भांडा पड़िया हुआ भी किए खड़क भी जिए कई बार कोई बात भी हो जिए तो की है सहन शक्ति आदमी में होनी चाहिए। अब सोच इसी होगी है कि बस आप ही हुआ दूसरा कोई न वे, आप की डफली रा पर आप जो राग है आ बात चलन लाग रही है। पहला बात आ होती कि सगड़ा भाई बेड़ा बेड़ता आंगन सुर्ग लोक, अब आंगना भिंता खींच गई आवन जावन रोक, बाइडो आवन जावन रोक, बात अपना सत्संगों शुरू करी तो थाना एक सत्संगो बहुत ही प्यारो भजन सुनावा लियो आनंद।

श्रोताओं सुनियो और प्यारो सो लोक भजन, बात करा आपां बरसात के मौसम में जका अपना पशु है बांगी किया देखभाल करा, क्योंकि पशु धन भी आपनों बहुत ही महत्वपूर्ण धन है जो आपनों काम आवे और खेती बाड़ी जका करे मांग तो बहुत ही काम आवे। तो आपने पशुओं की जकी है बरसात के मौसम में बहुत विशेष ध्यान रखनी चाहिए। बरसात का मौसम श्रोताओं बिया तो की है हरियाली लियावे, पशुओं का तरावत भी लियावे और सागर सागर की है ईशुआ अपने नमी हो जाए और जो पानी है वो भी दूषित हो जाए तो भी की है बीमारियों को खतरों बढ़ जाए। तो इन मौसम के अंदर अपना जो पशु है बाकी विशेष ध्यान रखना अपने बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, पहली बात तो है कि पशु के रहने की व्यवस्था है वो किशोक है जी साफ स्थान

कि बारिश के मौसम में प्रजनन संबंधी जका संक्रमण है बा तेजी से फैले। जे कोई मान लो गाय है, भैंस है, गर्भवती है, तो बिने बाकी जका पशु बांशु आप थोड़ा अलग राख सकें, सूखे स्थान पर राख सकें और संक्रमण मुक्त प्रसव स्थान पर प्रसव कराना चाहिए, ताकि जो बच्चो है भी में भी कोई रोग न फैले और जो पशु को अयन है, दूध उत्पादन है, इनकी भी सुरक्षा करनी चाहिए। दूध निकालने से पहला और बाद में सफाई जरूर करनी चाहिए इनकी, और दूध में इशु किया अपना जका थन है बा में संक्रमण को नहीं हुए, तो इन सारू आप लाल दवा जिया हुए पोटेशियम प्रगनेट बीशू आप बिंगू अयन साफ कर सका। और जका एक बात और कह, जका खनिज मिश्रण आवे, नमक आवे, इंगो इस्तेमाल भी आपने करना चाहिए। जको आप बंटो देवा इंग अंदर की 30-50 ग्राम मिनरल मिक्सर आवे जको वो देश का साधारण नमक देश का, तो इशू पशु को जको है पाचन शक्ति बढ़िया बनी रहेगी, अच्छो वो खावेगो तो अच्छो दूध भी देगो। तो आम बातें आपने जका किसान भाई है बाने ज़्यादा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बरसात के मौसम में, ताकि आप जका जका पशु है बा में कोई व्याधि न हुए भी आपने अच्छो उत्पादन देता रहे। बात आप और भी करांगा, पहला सुनाओ प्यारो सो लोकगीत।

श्रोताओं सुने हो प्यारो सो लोकगीत अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में। श्रोताओं आपने एक दो प्रचलित है, कह रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न उपजे मोती मानस चून। तो वो दो सिद्ध करे कि आपने जीवन के अंदर पानी को कितो महत्व है, पानी अनमोल है, इन्हें बचावण आपनों फर्ज है। बात करां भी आपां जो को आपनों मेह को पानी है, बरसात को पानी है, इनको आपां संरक्षण किया करां। श्रोताओं आपनों जो को बारिश को पानी है वो ज़्यादातर की है बेकार उड़ जाए, एरा आप इनको कोई फायदो कौन ले सका। तो को पानी आपने भविष्य खातर बहुत जरूरी है, और जल को संकट है इशू निपट खातर आपने जो को बरसात को पानी है इन्हें बचावण बहुत जरूरी है। इन सारों आप कई असरदार तरीका है वागो प्रयोग कर सकता जो पानी अपने काम आ जाए। पहली बात तो है कि बीगो आपने संरक्षण क्यों जरूरी है, तो इन सारों पहली बात तो आ है कि जिया भूजल को आपनों स्तर है इनमें सुधार होगा, आपनों जो जमीनी पानी है इनको क्या लगातार जो लेवल है वो नीचो जान लाग रही है, क्योंकि किसान भाई की दिन रात जका धरती माता की गोद से पानी खींचन लाग रही है, क्योंकि पानी सिंचाई खातर बहुत जरूरी है, खेती बाड़ी खातर बहुत जरूरी है। और जब किसान ने पानी न मिले तो वो बेचारो के करे भाई धरती के पेट से पानी निकाले, तो लगातार पानी खींचन से जमीन में जो जल को स्तर है वो गिरन लाग रही है। तो इन आप की है जो पानी है आपनो बरसात को पानी वो दोबारा जिया बोरवेल है या और कोई तरीको अपना गए जो आप पुट्ठो जमीन के पेट में गाद्या तो इशू की है आपनों जो पानी को स्तर है वो वापिस ऊंचो आन लाग जाएगो और वो रिचार्ज हो जाएगो। दूसरी इनकी आवश्यकता यही कारण है कि पानी की किल्लत शू आपने रात मिल जाए, गर्मी में या सूखा के दिनों में की है देखो आपने पानी देखने कौन मिले, कई कई बार जहाँ नहर बंदी आ जाए तो पानी की समस्या पैदा हो जाए। तो इन सारू भी आप बहुत जरूरी है कि आप जो बरसात को पानी है इन्हें आप बचावा और बिना दैनिक जरूरत सग सग की है खेती में काम लिया। और इशू की आप जो मर्दा को अपर्दन होने लाग रही है किसान भाइयों बी पर भी रोक लग गए, पानी जब बरसात को बहुत ही स्पीड में चल रहा है तो की है उपजाऊ जो की माटी है बिना आप गैस आगे ले जाए तो बठे की है माटी कटाव हो जाए और बठे जो की है उर्वरा जो की माटी है वह दूर चली जाए और खेत को उत्पादन कम हो जाए। तो जी आप बरसात के पानी ने फालतू उगण से रोकांगा तो आपने जो को माटी को अपर्दन है वो कम होगा और सागे सागे आपनों जल को भी सुरक्षण होगा। बरसात का जल संरक्षण का कई तरीका है, जिया आपने आजकल की है हर भाई गए पक्का मकान हुए छात भी पक्की हुए तो छात पर आप जल को सिंचन कर सका, शहरा में मोटा जठा कस्बा है बठे वो बहुत ही बढ़िया तरीको है। इन पर की है घर की छात है बिना छेत्रियां पक्की कर लेनी चाहिए और साफ सुथरी रखनी चाहिए, और एक पाइप है जो कि आपने की डिग्गी में लगा देनी चाहिए जो बरसात जद भी आवे वो पानी भी डिग्गी में बेड़ो जी और आप बिंगो उपयोग दैनिक काम में ले सका। पानी ने रेत कंकड़ कोयले शू बने एक साधारण फिल्टर शू गुजार गए जो आप साफ करा तो आप वो काम में ले सका। सागे सागे की है जिया भंडारण या रिचार्ज करना भी जरूरी है, इस वास्तों आप स्टोरेज टैंक है जी।

पानी का मोटा मोटा टैंक बना के भी मैं इन कर सकाँ, और बाद में कपड़े धोन गए, सफाई गए या बागवानी में इस्तेमाल कर सकाँ। और जका कुआ है रिचार्ज वेल बे बना के अपना सीधो जमीन के अंदर पानी ने भेड़ो कर सकाँ, या सोखता जका गड्ढा है बांसू भी पानी ने भेड़ो कर सकाँ। कृषि एर ग्रामीण क्षेत्र में जो तरीके की बात करा, तो जहाँ खेत है तो खेत में अपना तलाई बना सका, क्यों खेत में जको निचलो हिस्सो है बठे की है छोटो तालाब बना दिया या गड्ढो बना दिया, तो भी मैं किया सारे खेत को पानी निवाण में आगे भेड़ो जिएगो और बिन बाद में अपना सिंचाई में काम ले सका। या फिर जिया मेड़बंदी करके जिया खेतों के चारा और मोटी मोटी ऊंची ऊंची डोली काट दिया, यानी मट्टी की कंध सी बना दिया, तो की है बरसात को जो पानी है खेत चूँ बाहर खून जाएगो और अपनी जमीन के अंदर समा जाएगो। चेक डैम और बोरी बांध जिया बना के इशू भी आप किएंगो संरक्षण कर सका। छोटा नाला है, बरसाती नदियां हैं, बटच किया छोटा छोटा बांध बना के पानी के अभाव ने अपना दिमो कर सका। सारू

यानी मट्टी की कंध सी बना दिया, तो की है बरसात को जो पानी है खेत चूँ बाहर कौन जाएगो और अपनी जमीन के अंदर समा जाएगो। चेक डैम और बोरी बांध जियाँ बना के इशू भी आप किएंगो संरक्षण कर सका। छोटा नाला है, बरसाती नदियाँ हैं, बटच किया छोटा छोटा बांध बना के पानी के अभाव ने अपा दीमो कर सका। सारों पहले शुरुआत है आके आपने आपके घर शू करने चाहिए, घर पर आसानी से आप शुरुआत किया करा। इन सारू की है छत गए पाइप के नीचे ड्रम या बड़ी टंकी रखा जिसू बरसात को पानी भी में जमा हो जाए। आपका जगह बगीचा है, लोन है, बठे की आप सूखता गड्ढा बना सका ताकि जद भी बरसात हुए तो पानी भी अंदर चलो जावे और बैठे बेड़ हो जाए। घर गए बाहर जगह पक्का आंगन है, बठे भी आप मान लो पानी भेड़ो कर सका। एक आपने कहावत है कि बरसात की हर एक बूंद अनमोल है, इन्हें आपने बचानो चाहिए। तो इस सारू अपा जगह सामुदायिक स्तर पर या घरेलू स्तर पर प्रयास कर सका। तो ये जो आप मान लो तरीका अपनावांगा अपने बरसाती जो को पानी है जो को एड़ो जान लाग रही है आप देखा कि बाढ़ का संकट उत्पन्न हो जाए और जो को पानी है नदियाँ के द्वारा समुद्र में एड़ो चलो जावे तो बिना की हद तक आप तरीका ने अपना के आपके काम में ले सका और सिंचाई जल में प्रयोग कर सका इनको संरक्षण कर सका। बातें आप और भी करांगा, पहला सुनाओ प्यारो सो लोकगीत।

श्रोताओं सुनो और प्यारो सो लोकगीत सीमा मिश्रा की आवाज़ में। अब अपने सावनिंगो सीजन चालन लाग रही है, तो ई मौसम में की है अपने जगह किसान भाइया ने कि खरपतवार है बा बहुत ही तंग करे, क्योंकि ई मौसम में की है कि नमी है और तापमान है बेंग अनुकूल हुए तो खरपतवार ज़्यादा पनपे और तेजी से बढ़े। ईशू के जगह अपने की फसल उत्पादन है ईशू 30-80% तीन फर्क पड़े। बात करा अपने खेतों में अपना भी के तरीके से खरपतवारों को नियंत्रण करा, तो जियाँ पहली विधि है यांत्रिक और भौतिक विधि। इमें कि आप हाथ छू जियाँ निराई गुड़ाई है वो काम करके खरपतवार नियंत्रण कर सका, तो बुआई गए 20-25 दिन बाद जब पहली निराई गुड़ाई जरूर करनी चाहिए और जो जरूरत पड़े तो दूसरी निराई गुड़ाई 40-45 दिन बाद फिर करनी चाहिए। व्हील हो या पेडी वीडर जकावे एक ही है धान के खेत में काम आवे और जका खरपतवार है इन खेत की मिट्टी मिला के ये नष्ट कर दिए। तो जो आपके धान के खेत के अंदर कोई खरपतवार की समस्या है तो आप व्हील हो या पेडी वीडर को इस्तेमाल करके खरपतवार नियंत्रण कर सका। मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, इनमें भी व्हील हो या साइकिल वीडर चला के कम समय में आप ऐसा कम लागत में खरपतवार निकाल सका। आ तो ही अपने हाथ छू निकालने की विधि। और बात करा रासायनिक नियंत्रण की,

तो जका खरपतवार नाशी दवाइयां वे निंदाई नाशक दवाइयां आंगू उपयोग अपा समय रहने ते सही टाइम पर करा और सही खुराक शू करा सही तकनीक को इस्तेमाल करके करा तो अपना जका खरपतवार है भी समूल नष्ट हो सके। इन सारों इंगी दो श्रेणियां हैं किसान भाइयों। पहली है बुआई गए तुरंत बाद यानी उगाव शू पहला और बुआई गए तुरंत बाद। ये जकी दवाइयां हैं फसल बीजात गए जीरो शू ले गए 3 दिन के माह माह काम करें और खरपतवार उगण शू पहलांगो प्रयोग करी जो जे जियाँ पेंडा मैथिलीन 30 सैकड़ा इसी ताकत की आवे आ सोयाबीन है मूंग है उड़द है कपास मक्का अंग अंदर बुआई के तुरंत बाद जी आपको छिड़काव कर दिया यानी मात्रा 1 से 1.25 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से राख गए इनको छिड़काव करा तो क्या 40-45 दिन ते खरपतवार ने उगण कौन दिए। प्रीतिला कलोर जकी नाम की दवाई आवे आ दान के अंदर काम ले 3 से 5 दिन के अंदर इनको प्रयोग करो जावे। दूसरा जका खरपतवार नाशी है ये फसल उगण के बाद प्रयोग किया जावे और जद खरपतवार अपने 2-4 पत्ती का आवे बिन टाइमिंगो इस्तेमाल करना बहुत ही बढ़िया रहे यानी बुआई गए 15-20-25 दिन तीन आप इस्तेमाल कर सका। जहाँ सोयाबीन है मूंग है उड़द है इनमें आप जिमें थापा यार 10 सैकड़ा एस एल ताकत की 400 मिलीलीटर दवाई 1 एकड़ के हिसाब से लेकर छिड़काव कर सका। आज की दवाई है चौड़ी पत्ती आला और संकरी पत्ती आला जका खरपतवार है बन नियंत्रण करे। दान में बात करा तो या चौड़ी पत्ती और सावा मोथा जिया है आंसारू बिस्पायरी बैक सोडियम 10 सैकड़ा एस सी प्ररूप की दवाई आवे आ 80-100 ml दवाई 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाई इस्तेमाल कर सके। मक्का में एट्राजीन की नाम की दवाई आवे 50 सैकड़ा ताकत की WP प्रारूप में या ट्रेबोट्रियान इनको उपयोग कर सके। और दूसरी जकी सस्य क्रियावां है अंग उपयोग करके भी किसान भाई खरपतवार नियंत्रण कर सके। जैविक उपाय भी है जियाँ फसल चक्र है तो फसल चक्र के इस्तेमाल से भी आपने को खरपतवार नियंत्रण हो सके। हर साल एक ही खेत में एक ही फसल ने बीज गए बदल बदल के जो फसल बियावांगा तो खरपतवार का देखो जीवन क्रम की है वो टूट जाए और वांगो निदान हो जाए। दूसरी तरीको है भाई संघन भी जाई करके सही बीज दर को उपयोग करके ताकि फसल की है बिन खरपतवार ने ढक लिए और बिना धूप न मिले जगह न मिले बीज वो किए पनपे कोनी। तीसरा तरीको है मल्चिंग करके जियाँ कतार है तो कतार के बीच में जियाँ कोई पुआल है सूखी घास है या प्लास्टिक की आजकल सीटा भी चाले बिंग उपयोग करके आप खरपतवार नियंत्रण कर सका। तो ये बात ही जैविक विधिया की। बात करा जब आप रासायनिक छिड़काव करा तो आपने के सावधानी रखनी चाहिए। पहली सावधानी यह है कि पर्याप्त नमी होनी चाहिए खेत में अंदर पानी की जकी मात्रा है वह भी पर्याप्त होनी चाहिए और हमेशा ही कट नोजल को इस्तेमाल करना चाहिए और हवा को जो रुख है बिंग हिसाब से अपने दवाई को छिड़काव करना चाहिए। तो आम बातों को किसान भाइयों ने ध्यान रखना चाहिए। बात आप और भी कर सा पहला सुनाओ प्यारो सो लोकगीत।

श्रोताओं सुनो ओ प्यारो सो लोक गीत। बात करां रूख की तो आपने एक कहावत है कि सिर साठे जे रूख रवे तो भी सस्तो जान। ई बात शुओ सिद्ध हुए कि आपने जीवन के अंदर रूख को कितो महत्व है। और सागे सागे एक बात और भी कही जावे कि रूख लगाओ और पुन कमाओ। तो आज की बात है आ सिद्ध करे कि आपने खातर जो रूख है इनको कितो महत्व है और आने वाली जो पीढ़ी है बी खातर इनको कितो महत्व है। क्योंकि जो रूख है पेड़ है वो की है आपनों सच्चो साथी है और सगे आपने जो पर्यावरण है इनको बहुत ही बड़ो रक्षक है। आपनों जका प्राचीन ग्रंथ है श्रोताओं वा में कह गए है कि एक रूख लगानो 10 पुत्रां के समान पुण्य कमाणो है। क्योंकि एक जो बूंटो है पौधो है वो आपके जीवन काल में अनगणित जका जीव है वा नाश्रय देवे शुद्ध हवा देवे जीवन देवे। तो देखो कितनी मोटी बात है। पेड़ लगान छू मिलन वाला पुण्य और लाभ की बात करा तो सारों मोटो लाभ आपा ना है जकी अपनी प्राण वायु है अपन जो सांस लेन लाग रहे हैं दिन रात इंगी जकी अपने लाभदायक हवा है मान लो ऑक्सीजन है जकी अपन की है पेड़ छू मिले। एक जो अच्छे पकड़ो जो पेड़ है वो साल में इतनी ऑक्सीजन दे दे कि कई लोग सांस ले सके जीवन देन खातर वो बहुत ही मोटो दान है। सागे सागे दूसरो पुन वो है कि जका बेजुबान पक्षी है अंग वो आश्रय है जका पेड़ पक्षियां कीट पतंगा और छोटा जानवरों ने घर देवे अंग आश्रय स्थान हुए तो आप भी एक बहुत बड़ी जीव सेवा है। सागे सागे की है जकि आपने आज देखो गर्मी बदन लाग रही है अपा उमस में मरण लाग रहा गर्मी मरण लाग रहा आए तो बाकरा तो इनको कारण है कि जकी गर्मी है ग्लोबल वार्मिंग जकी ने बोले आ दिन रात बढ़न लाग रही है। क्योंकि इंसान की है कारखानाओं जका यातायात का साधन है आंशू हमेशा जहरीली गैस धुआं छोड़न लाग रही है जो अपने पर्यावरण के अंदर जाके जमे और धरती को तापमान बढ़ावे। तो इन तापमान से बचन खातर इन गर्मी से बचन खातर छायादार रूख जका लगाना है वे बहुत जरूरी है। क्योंकि इस जो तापमान नियंत्रण रेवे ऐसा का जका कोई मान लो बाहर जका काम करे है मेहनत मजदूरी करे बन की है जका राह गिरे आ खातर बहुत ही उच्ची अंग स्थान है स्थितलता प्रदान करे तो आ भी बहुत बढ़िया बात है। और सागे सागे की है जकी अपनी पीढ़ियाँ है आ खातर उपहार है। अपन जका दरखत लगावा रूख लगावा फलाला या छायादार एक है अपन स्वच्छ हवा दिवे तो बात स्वच्छ जकी

श्रोताओं सुनियो प्यारो सो लोकगीत। और अब टाइम है बाजार भाव को, तो आपने तई जैसर मंडी शूँ, सूरतगढ़ मंडी शूँ और गंगानगर मंडी शूँ भाव भुगता हुआ है, तो थारे सागर साझा कर लिया। जैसर मंडी की बात करा तो सरसों गाठा भाव उगड़िया 7409 रुपया, कणक अठह रही 2500 रुपया, और गवार गाठा भाव रहा 5740 रुपया 5780 रुपया। सूरतगढ़ मंडी की बात करा तो कणक अठे बिकी 2581 रुपया, सरसों गाठा भाव रहा 6670 रुपया, और गवार गाठा भाव रहा 5758 रुपया। गंगानगर मंडी की बात करा तो सरसों की अठे भाव रहा 5378 रुपया, कणक का भाव रहा 2560 3112 रुपया, ग्वार का भाव रहा 4600 रुपया। तो ये आ किसान भाइयों आज का बाजार भाव। और अब जहाँ चलते चलते तार सा घर में शामा कर लिया, क्योंकि आज को जो प्रोग्राम है वो पूरा होने लाग रही है। तो थारे सुनील भाई ने दियो आज्ञा, राम राम सा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर बोल रहे हैं। रात के 8 बजने वाले हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में साहिर का लिखा ये गाना सुना, धुन खय्याम बनाई फिल्म चंबल की कसम के लिए। श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से में हमारी आज की फिल्म है चंबल की कसम। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थी राजकुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, मौसमी चटर्जी और अन्य। धुन खय्याम ने इस फिल्म के गानों की बनाई, डायरेक्टर राम माहेश्वरी और प्रोड्यूसर वीएल मुरथरन। आइए फिल्म का एक लगाना सुने।

आइए कार्यक्रम का अगला गाना सुने। इस गाने के लिए आवाज़ दी जगजीत कौर ने।

श्रोतों कार्यक्रम सुन रहे हैं आप एक ही फिल्म से आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से। कार्यक्रम में आज की फिल्म है चंबल की कसम। लीजिए इस फिल्म का ये खूबसूरत दो गाना सुनिए साहिर का लिखा हुआ खयाम की मौसीकी में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम के लिए हमारी आज की फिल्म थी चंबल की कसम। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 8:30 होने वाले हैं। स्पोर्ट्स 10 कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज इस कार्यक्रम में बात की जाएगी BWF विश्व चैंपियनशिप की, जो बैडमिंटन की ये विशाल प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो चुकी है और आज पहले ही दिन PV सिंधु, आयुष शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद और उनके साथ साथ MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी ने दूसरे दौर में जगह अपनी पक्की कर ली है अपने मुकाबले जीतते हुए। आज कार्यक्रम में इसके बाद बात होगी क्रिकेट के मैदान की, जहां भारत ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में अपनी पकड़ कुछ और मजबूत कर ली है मैच पर और पहली पारी के बाद भारत ने कुल 178 रन की बढ़त अपने हिस्से में हासिल कर ली है। और कार्यक्रम में बात होगी FIH हॉकी विश्व कप की, जो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन आज का दिन भारत के लिए थोड़ी सी बुरी खबर लेकर के आया, जहां भारत को अपने पूल डी के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड से 2-4 गोलों से हार का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की दुनिया के साथ, जहां BWF विश्व चैंपियनशिप का आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुभारंभ हो गया। आज पहला दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहद खास नजर आया, जहां भारतीय खिलाड़ी घरेलू समर्थकों के बीच अपने प्रदर्शन में एक शानदार निखार दर्ज करते हुए नजर आए। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने महिला सिंगल्स और आयुष शेट्टी ने पुरुष सिंगल्स में अपने अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया। महिला डबल्स में त्रिशा जौली गायत्री गोपीचंद की जोड़ी और अब से कुछ देर पहले सिमरन सिंह और कविप्रिया सेल्वम की जोड़ी ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। इससे पहले दिन की पहली जीत भारत के लिए MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की पुरुष डबल्स जोड़ी लेकर के आई, जिसने दूसरे दौर में जगह बनाई। और इस प्रतियोगिता को कवर कर रहे हमारे संवाददाता भानु इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से सीधा। भानु, पहला दिन भारत के लिए बहुत सारी गुड न्यूज लेकर आया, इतना बड़ा आयोजन और उस पे इतनी सारी जीत, सोने पे सुहागा।
1: जी शक्ति, आपने एकदम सही कहा, भारत के लिए आज का पहला दिन विश्व चैंपियनशिप में बहुत ही बेहतरीन रहा। हमारे प्लेयर्स ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करा। आज के दिन की जो हाईलाइट आयुष शेट्टी की जीत रही, जहां उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 और डिफेंडिंग चैंपियन CUG को 21-14, 13-21 और 21-19 से हरा दिया। वहीं हमारे बाकी खिलाड़ियों के लिए भी जीत उनके लिए बहुत आसान रही, उन्होंने स्ट्रेट गेम्स में सारे अपने गेम्स जीते और आज का दिन जैसा कि आपने कहा बहुत ही अच्छा रहा भारतीय खिलाड़ियों के लिए।
0: जी बिल्कुल, आपने आयुष शेट्टी की जीत का जिक्र किया कि किस तरह विश्व नंबर 1 खिलाड़ी को पहले ही दौर में चित किया इन्होंने और काफ़ी हद तक आगे के दौर के लिए अपनी चुनौतियों को काफ़ी सरल कर दिया है। काफ़ी चुनौतीपूर्ण मुकाबला, सबसे कठिन जो है ड्रॉ आयुष को मिला था। अब PV सिंधु के मुकाबले के बारे में भी अगर भानु आप हमको बताएं, क्योंकि

0: भारत की स्टार खिलाड़ी हैं, जब भी कोर्ट पे उतरती हैं भारतीय खेल प्रेमियों की नज़रें रहती हैं पीवी सिंधु पे कि वो किस तरह से अपने आगे की इस टूर्नामेंट को बिल्ड करते हुए नजर आएंगी।
1: जी बिल्कुल शक्ति, आज स्टेडियम का भी कुछ वैसा ही हाल रहा। स्टेडियम में सब लोग आज सिंधु को देखने आए थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनको एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि वे मैच से कंट्रोल में बाहर थी। उन्होंने पहला गेम 21-7 से जीता और दूसरा गेम उन्होंने 21-11 से जीता। दोनों मैच में वो कंट्रोल में दिखाई दी। उन्होंने अपने बेहतरीन अटैक का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया, उनके स्मैशेस बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज थे और ओवरऑल उनका गेम आज बहुत ही अच्छा रहा।
0: जी बिल्कुल, आयरलैंड की सोफिया नोबल पर जो जीत दर्ज की, पूरा कंट्रोल जिसको कहते हैं कंप्लीट कंट्रोल मैच, जहां आपका हर शॉट शायद वहीं जा रहा था जहां पे सिंधु चाहती थी। उन्होंने मैच के बाद अपने अनुभव भी कुछ इसी तरह साझा किए। डबल्स में भी भारत का दिन आज के लिए काफ़ी लकी रहा। भारत की मिक्स डबल्स की एक जोड़ी और पुरुष डबल्स की एक जोड़ी पहले ही बाई पा के अगले दौर में पहुँच चुकी थी, लेकिन जब तक हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं भारतीय महिला डबल्स की दोनों जोड़ियाँ जिसमें त्रिशा जौली और गायत्री हैं, साथ ही साथ सिमरन की जोड़ी है जो पहुंच चुकी है अगले दौर में, और पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन ने भारत की जीत का खाता खोला था हरिहरन के साथ। डबल्स की परफॉर्मेंस पे कुछ कहना चाहेंगे भानु?
1: जी बिल्कुल, डबल्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही और स्ट्रेट गेम्स में जैसा कि आपने बताया त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने पॉला लोपेज और लूसिया रॉड्रिगेज की जोड़ी को हराया। पहले गेम में वे थोड़ी सी कठिन परिस्थितियों में दिखाई थी, लेकिन उन्होंने पहला गेम सिंगल डिजिट में ही खत्म कर दिया और दूसरा गेम उन्होंने 13 पे खत्म किया। और अगर बात करें हमारे पुरुष युगल जोड़ी की, तो उन्होंने पहला गेम बहुत ही आसानी से 21-16 से जीत लिया था। दूसरे गेम में उन्हें चोट, उनकी जो ओपोनेंट पेयर थी उनको चोट के कारण विड्रॉ करना पड़ा।
0: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत भारतीय खिलाड़ियों के लिए जिस तरह का आज का पहला दिन गुजरा, और ये खिलाड़ी इसी लय को बरकरार रखते हुए आने वाले दिनों में शायद भारत को इस प्रतियोगिता के इतिहास का सबसे बेहतरीन एक अनुभव दे के जाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद भानु। और भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं, जो उन्होंने बताया कि किस तरह से इस स्टेडियम में खेलना उनके लिए एक नया अनुभव रहा। पीवी सिंधु ने कहा कि घरेलू मैदान पे खेलना हमेशा से एक अलग अनुभव जैसा है।
2: Playing first time here, first match here, it was important for me to get used to the court conditions and see how it is and how the shuttle is. So I was actually figuring out it's not like the best element. Obviously, we will play the best badminton, but sometimes, you know, when you actually get on the court, you need to understand the court conditions. So today, I think that was the first thing for me that came into my mind. But I think I've managed it well and the court conditions are pretty good.
0: जी बिल्कुल, अपनी नब्ज़ पे किस तरह संतुलन रखना है यही सिंधु का अनुभव बताता है। और सिंधु ने अपने पहले मुकाबले को लेकर के स्पोर्ट्स कैन की टीम से क्या कहा ये भी सुनते हैं।
2: Yeah, of course, I'm playing with her for the first time, and I think more than anything, it was important for me to just focus on what I do and what I play and how I play. And I think more than anything, I mean, I was excited to get onto the court happening here in India. So it was really good to, you know, get onto the court, and I could see a lot of people cheering and supporting me. I think that gave me a lot of confidence. And I mean, irrespective of whoever the opponent is, it was just that I had to just play my game and give my best.
0: और दिन में भारत के लिए पहली जीत दर्ज करने वाले हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी ने भी अपने अनुभव साझा किए। अर्जुन ने बताया कि किस तरह मैदान में भारतीय प्रशंसकों का प्रोत्साहन देखने को मिला।
3: First round into the world championship, we didn't actually expect so many people come out and support, but as soon as we entered the main arena, we heard a lot of cheering when our names were announced, and that actually gave us an extra boost and extra energy, definitely helped. I mean, conditions, I feel it's at par with the all other tournaments, be it the last year's world championship, I think he had played, I think, in Paris. I mean, we are at par with the level and the conditions that you're provided, but to play at home is obviously, everybody asks the same question, but again, I feel every athlete would give the same answer because it's an added advantage.
0: जी बिल्कुल, एक शानदार एडवांटेज कह सकते हैं। और उनके जोड़ीदार और इस जीत में उनके सहभागी हरिहरन ने क्या कहा है ये भी सुनते हैं।
4: And coach asked me to try with Arjun because our game style was, both game style was like fast. And coach saying was try for 4 tournaments. I said okay, I will try. So we played all 4 tournaments, continue the throw. Now it's world championship year. We searched for Asian games as well. I said thanks to coach first and thanks to my senior also.
0: जी बिल्कुल, एक अच्छा अनुभव अब साथ खेलते हुए इन दोनों खिलाड़ियों को हो चुका है। और इसी तरह का अनुभव गायत्री गोपी चंद और त्रिशा जौली की जोड़ी ने भी साझा किया, जिन्होंने घरेलू मैदान पर इस जीत को बेहद खास बताया।
5: बहुत अच्छा लगा सर, पहला मैच खेल के इंडिया में, तो बहुत स्पेशल फील हो रहा है। आई थिंक द कोर्ट कंडीशंस आर प्रीटी गुड, इट्स अ ह्यूज स्टेडियम। या आई थिंक इट्स अ लिटिल स्लो समटाइम्स फास्ट, बट आई थिंक वी हैव अडैप्टेड वेल, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। इट्स अमेजिंग, आई मीन इट्स अमेजिंग टू प्ले इन इंडिया।

0: whole stadium supporting for you, cheering for you, it feels great.
1: बैडमिंटन के कोर्ट पर इस बेहतरीन दिन के बाद अब बात की जाए क्रिकेट के मैदान की, जहां गोल में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन भारत की पकड़ और मजबूत हो गई है। श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे। अब श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। आइए सुनते हैं आज के दिन के खेल पर ये रिपोर्ट।
2: अपनी पहली पारी में 462 रन बनाने के बाद भारत ने श्रीलंकाई टीम को सिर्फ 284 रन पर समेटकर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली। श्रीलंकाई पारी समाप्त होने के बाद खराब मौसम के चलते आगे का खेल नहीं हो सका। पहली पारी में भारत के लिए पर्डिक्कल ने सर्वाधिक 167 रन बनाए, जबकि ध्रुव जुरेल ने 51 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। मेजबान टीम की तरफ से प्रभात जयसूर्या ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 284 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका को दूसरी गेंद पर निशान फर्नांडो के रूप में शुरुआती झटका लगा और विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। महज 90 के स्कोर तक श्रीलंका ने अपने 5 विकेट खो दिए थे। इसके बाद सोनल दिनुशा ने निरोशन डिकवेला के साथ छठे विकेट के लिए 146 रन की साझेदारी करते हुए पारी को संभाला। निरोशन 80 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि सोनल ने 100 रन का योगदान दिया। भारतीय खेमे से मानव सुथार ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट निकाले। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो दूसरे दिन का जब खेल समाप्त हुआ तो भारत की पकड़ मजबूत थी, लेकिन आज कह सकते हैं कि शिकंजा और कसा है। और इस पूरे मैच पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, आज का जिस तरह का खेल गया है, अब दो दिन का खेल बचा है और रणनीति पे तो बात होगी होगी, लेकिन अब तक कह सकते हैं कि कितनी पकड़ भारत की नजर आ रही है?
3: ये शक्ति अभी श्रीलंका को 178 रन की जो है, भारत को 178 रन की बढ़त हासिल है। और इसी के साथ भारत जो है कल जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरेगी तो कोशिश करेगी कि 170 या 200 रन बनाकर एक जल्दी टारगेट को डिक्लेयर करने के लिए देखेगी, जहां 350 से 400 रन का टारगेट दबाव बनाने के लिए काफ़ी होगा श्रीलंका पर। और भारत इसलिए भी कल जल्दबाजी करता नजर आएगा क्योंकि बारिश का कोई भी भरोसा नहीं है। कितने सत्र खेले जाएंगे, कितने सत्र धुल जाएंगे, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि क्या ये कहना गलत होगा कि आज का दिन भारतीय गेंदबाजों का दिन रहा? जिस तरह से शुरुआत में श्रीलंका की पारी लड़खड़ाई थी, एक वक्त पे लगा कि शायद कहीं मामला 150 को भी ना पार कर पाए।
3: जी बिल्कुल, शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने अपनी पकड़ बिल्कुल मजबूत रखी। 90 रन पर 5 विकेट गिरा दिए थे श्रीलंका के, लेकिन उसके बाद उनकी एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली, जहां सोनल दिनुशा ने बेहतरीन शतक जमाया और उसके अलावा निरोशन डिकवेला जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उन्होंने भी 115 गेंदों पर 80 रनों की शानदार पारी खेली। गेंदबाजी की बात करें तो युवा मानव सुथार ने 4 विकेट लेकर भारत को बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिलाया। उसके अलावा रविंद्र जडेजा ने आज 3 विकेट लेकर अपना 350 विकेट का कीर्तिमान जो है वो हासिल कर लिया, और इसी के साथ वो बाएं हाथ के सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में, और 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं ओवरऑल जिन्होंने 350 विकेट का आंकड़ा जो है छुआ है। ऑलराउंड प्रदर्शन की अगर बात करें तो वो चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए, चौथे ऐसे ऑलराउंडर बन गए जिन्होंने 4000 रन और 350 विकेट लिए हैं अभी तक टेस्ट क्रिकेट में।
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। और वो अफगानिस्तान का मुकाबला जहां मानव सुथार ने अपना डेब्यू किया था और पहला ही मैच 6 विकेट, आज दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं और 4 विकेट, तो काफ़ी संभावनाएं इस खिलाड़ी में हमेशा से नज़र आती हैं और कह सकते हैं कि टेस्ट में एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में खुद को एस्टेब्लिश किया है। और अब आगे भारत, जैसा आपने बताया कि कल नज़र होगी कि किस तरीके से मैच पे अपनी पकड़ मजबूत की जाए, कम से कम समय में जो है अपने एक अच्छा टारगेट स्कोर बोर्ड पर चढ़ाया जाए मेहमान टीम के लिए। और अब और क्या इस मैच से कुछ खास निकलता हुआ नज़र आ रहा है भारत के लिए?
3: अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीतती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में जरूर सबसे थोड़ा ऊपर जाएगी, और साथ ही साथ इसके साथ वो सीरीज़ भी जीतने के लिए देखेंगे क्योंकि अभी वो 5वें स्थान पर हैं। और ये दोनों मुकाबलों में जीत भारत को एक बहुत ही अच्छा बूस्ट प्रदान करेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मद्देनज़र।
1: जी बिल्कुल, जैसा हमने कल भी बताया था कि इसके बाद अब अगली श्रृंखला जो है भारत की वो न्यूजीलैंड से है, जो 19 नवंबर को वेलिंगटन में खेली जानी है। तो टीम चाहेगी कि जितने भी मुकाबले हैं उनको जीता जाए और WTC की फाइनल की दौड़ को और मजबूत तरीके से पकड़ में रखा जाए। और अब बात की जाए FIH हॉकी विश्व कप की, जहां आज का दिन भारत के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा। भारतीय टीम को अपने पूल डी के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड से 2-4 गोल से हार का सामना करना पड़ा। विशेष, जिस तरह की पहले मैच में जीत

0: ही वेल्स पर भारत ने 3-1 से एक बेहतरीन जीत दर्ज की थी, लेकिन आज एक अच्छी शुरुआत 2-1 की, लेकिन कह सकते हैं कि हरमनप्रीत एंड कंपनी थोड़ी सी अनलक्की रही।
1: ये शक्ति बिल्कुल भारत को पिछले मुकाबले से अपना काफ़ी आत्मविश्वास था और मैच की पहली सफलता से ही मतलब इंग्लैंड ने जो है दबाव बनाना भारत पे शुरू कर दिया, जहां निकोलस बंदरूक ने 14वें मिनट में भारत को गोल करके बैकफुट पर ढकेल दिया। इसके बाद मुकाबला जो है 2-1 से आगे भारत ने बढ़त दी, लेकिन चौथे क्वार्टर में इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया।
0: जी बिल्कुल, भारत ने एक बार करारा जवाब दिया जब पहले कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल किया, फिर दिलप्रीत का गोल आया, लेकिन एक वक्त पे लगा कि भारत एक बेहद मजबूत स्थिति में है। लेकिन उसके बाद मैच का वो तीसरा क्वार्टर जहां बैक टू बैक 5 मिनट के अंदर पहले स्टुअर्ट रश्मेयर का गोल आया 40वें मिनट में, और 43वें मिनट में आपने जिस गोल की बात की क्रॉफ्ट हेनरी के, जिसने काफ़ी हद तक भारतीय टीम के मनोबल को तोड़ा और उस बढ़त को जो भारत के हिस्से में थी इंग्लैंड की तरफ लाए, और आखिरी में निकोलस जिन्होंने पहला गोल किया था दूसरा गोल करते हुए इस मैच में भारत के लिए तमाम संभावनाओं को बंद कर दिया। हालांकि इंग्लैंड शीर्ष में पहुंच चुका है ग्रुप में, भारत अपना दूसरा मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से बुधवार को खेलेगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
4: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान ISI समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से IED, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले CCTV कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और ISI समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, IED और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
5: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट

0: मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
0: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है।
1: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
2: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री BL संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण

0: पासपोर्ट सेवा केंद्र पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
1: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वर्किंग एम्प्लॉय उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70 सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। UPI से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में UPI सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
4: केवंझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति

0: अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms. Directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raja Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul Test. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. More from our correspondent.
3: The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions planned around Independence Day. The operation led to the detention of over 200 people across 14 states, including 62 from Uttar Pradesh, 52 from Haryana, 51 from Delhi and 44 from Punjab. Substantial recoveries including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance factory markings, pistols, live cartridges and CCTV cameras used for espionage were made from ISI-funded group. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. SBN has also been playing local conduits to recce police, defense and religious sites and to install CCTV cameras for espionage. More than 80 FIRs and over 200 arrests linked to this network have been made so far. With Aman Yadav, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: The government has approved 31 more applications under Electronics Components Manufacturing Scheme or ECMS with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals will result in a total production of electronics components worth 82,000 crore rupees and are also expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister of Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi.

सुगम संगीत के कार्यक्रम में इस वक्त आप जगजीत सिंह की गाई गजलें सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम की ये अगली गजल सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, यह आकाशवाणी सूरतगढ़ है। 9:30 बजे हैं। पब्लिक स्पीक आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के समय में उपभोक्ताओं के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। बाजार में लगातार नए नए उत्पाद आ रहे हैं और अब ये उत्पाद सिर्फ बाजारों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपभोक्ताओं तक पहुँच रहे हैं। भ्रामक लेबलिंग और गलत जानकारी से बचने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों, भ्रामक प्रचार और हानिकारक उत्पादों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग कई जागरूकता अभियान चलाता है। इनमें जागो ग्राहक जागो एक प्रमुख अभियान है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना 24 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से बचाना है। तो पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता यानी मिसलीडिंग लेबलिंग एंड कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी आपकी जो है फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-1 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करके अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो अनुपम जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल जानना चाहेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, क्या आप हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है?
1: मुकेश जी और सभी श्रोतागण, हम सभी लोग पिछले दशक में जो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस में जो वृद्धि हुई है उससे भली भांति परिचित हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: इस वृद्धि ने जहां एक ओर हमारे जीवन को सुगम बनाया है, आसान बनाया है, वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कई नए चैलेंजेस को खड़ा किया है। उन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए 2019 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। ये 1986 के एक्ट को रिपील करके आया था। इसमें कई विशेषताएं हैं, कई इसमें खूबियां हैं, पर आज मैं चार विशेषताओं को आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूँगा, जिनमें पहला है कि इसमें उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्य है कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके विषय में क्लास एक्शन ले जाए, मतलब हर एक कंज्यूमर को अपनी ग्रीवांसेस से खुद ना जाना पड़े कोर्ट में, कचहरी में, या सिर्फ CCPA उनका स्वयं संज्ञान लेता है और क्लास एक्शन लेता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया। तीसरा इसमें जो विशेषता थी कि जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज, कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसका सेलर, यदि उसके प्रोडक्ट में कोई दोष पाया जाता है तो उसके उसके लिए लाइबल बनाया जाता है। और चौथी जो सबसे अच्छी विशेषता है, ऑनलाइन केस फाइलिंग की, कंज्यूमर कमीशंस में अपने ग्रीवांसेस को ऑनलाइन कहीं भी फाइल कर सकता है।
0: जी, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। कविता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे भ्रामक लेबलिंग से क्या मतलब हो सकता है। आप आम उपभोक्ता

0: इसे रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
1: मितेश जी, ये अब दोबारा पूछ लीजिए. कैन यू शेयर इन इंग्लिश प्लीज.
0: जी, ये जो क्या कहते हैं आपका भ्रामक लेबलिंग, यानी कि जो मिसलीडिंग लेबलिंग है, इसकी मतलब इसको किस तरह से देखते हैं, इसका मतलब क्या है, और उपभोक्ता जो है रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
1: अच्छा, हमारा एक रेगुलेशन है एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स के ऊपर. उसमें हमने अच्छा तरह डिस्क्राइब किया कैसे कैसे एफबीओ क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हैं करके. उसमें हेल्थ क्लेम्स है, न्यूट्रिशन क्लेम्स है, कंडीशनल क्लेम्स है, इक्विवेलेंस क्लेम्स है, मतलब इस तरीके से बहुत प्रोविजन है एफबीओ को क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर लेने का. उसमें हम बता रहे हैं वो ट्रूथफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका साइंटिफिक बैकअप होना चाहिए. क्योंकि एक क्लेम प्रोडक्ट को ऐसे नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट खाने में वो मील का रिप्लेसमेंट होगा, हमारा बैलेंस डाइट को वो फुलफिल करेगा, और मतलब वो क्लेम इस तरीके से नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट एक्सेस खाएगा. तो कुछ चीज हम उसको मिसलीडिंग क्लेम, प्रोहिबिटेड क्लेम करके रखा है. मतलब वो अगर उस प्रोडक्ट से वो बेनिफिट नहीं आ रहे, से इम्यूनिटी बूस्टर और कुछ टॉल क्लेम्स बोलते हैं हम, वो प्रोडक्ट का बिल्कुल फॉल्स क्लेम, उस तरीके से नहीं होना चाहिए. हमारा उसका पेनालिटी प्रोविजन भी है अगर कोई मिसलीडिंग क्लेम ले रहा है इन प्रिंटेड मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड में. हमारा एक पोर्टल है फोर्सकास्ट करके, उधर अगर कोई भी एनी स्टेक होल्डर अगर कहीं भी मिसलीडिंग क्लेम्स है वो लोग उसको डाल सकते हैं. हम सुओ मोटो उसको एग्जामिन कर रहे हैं एंड हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं एफबीओ को उस तरीके से क्लेम्स को बदलने का.
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी. रमा शंकर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी नमस्कार.
0: जी बताएं, क्या सवाल है आपका?
2: हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो भ्रामक लेबल है, जैसे दवाइयों के यूज में आता मगर इसको नशे में भी परिवर्तित कर देते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि ये नशा है या दवाई है?
0: जी कविता मैम, बताएं क्या क्या जवाब देना चाहेंगे इसका?
1: दवाई के लिए मतलब हमारे पास न्यूट्रासूटिकल करके एक रेगुलेशन है, फंक्शनल फूड्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, मेडिकल यूज करके, उसमें हमने कैसे क्लेम होना है करके भी क्लियरली दे रखा है. अगर वो क्लेम कुछ प्रिवेंशन तरह नहीं होना चाहिए, मतलब डिसीज को क्यूर करेगा, डिसीज को दूर रखेगा करके नहीं होना चाहिए उसका. मतलब डिसीज को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट हेल्थ करके कर सकते हैं. से अगर हम कैल्शियम का दवाई ले रहे हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस को मतलब प्रिवेंट रिड्यूस, रिस्क को रिड्यूस करने का सपोर्ट करेगा करके ले सकते हैं. अगर सोडियम का बहुत कम प्रयोग होने में बीपी नहीं आएगा, उस तरीके से हम क्लेम्स ले सकते हैं. वेरस हम के डिसीज को पूरा बंद करेगा करके नहीं हो पाएगा, वो भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए, डॉक्टर रिकमेंडेड है उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए. कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स मतलब फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए हम बता देते हैं, वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना चाहिए करके.
0: जी बिल्कुल. और अनुपम जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका क्या है? पिछले एक साल में सीसीपीए ने कौन सी बड़ी कार्रवाइयां की हैं?
3: सीसीपीए की स्थापना जुलाई 2020 में हुई थी. पिछले 5 वर्षों में इसने करीब 500 से ज़्यादा नोटिसेज इशू किए हैं.
0: बहुत बड़ी कार्रवाई.
3: और ये जो नोटिसेज हैं विशेष रूप से जहाँ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स पाया गया है, उन क्षेत्रों में ये नोटिसेज दिए गए हैं जहाँ कंज्यूमर्स का एज ए क्लास उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी था. कुछ जो बड़ी कार्यवाही हुई है वो है, सबसे बड़ी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हम सब जानते होंगे बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते थे.

0: कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते थे कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता था हमारे इंस्टीट्यूट से 500, 600, 300
1: बैनर लगे होते थे।
0: इनफैक्ट यदि आप सारे को जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एडवर्टाइजमेंट करते थे यदि आप उनके छात्रों की संख्या ऐड कर ले तो यूपीएससी के सिलेक्शन से भी कई बार ज्यादा हो जाती थी। तो इनको करीब 50 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर एक्शन लिया गया जिसमें कई बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं। दूसरा जो बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है पिछले वर्षों में वह है डार्क पैटर्न को लेकर। डार्क पैटर्न ये है कि जब हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो जो चीज़ हम ना करना चाहें, हमें लगता है कि जब हम उस प्लेटफॉर्म से बाहर होते हैं वो चीज़ हमसे अनायास भूलवश हो जाती है
1: जी।
0: तो उनको डार्क पैटर्न कहा जाता है कि इस तरह प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन की जाती है। तो कई जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिसमें जप्टो है, इंडिगो है, बुक माई शो, स्पाइस जेट, इनमें इन डार्क पैटर्न को चिन्हित किया गया, उन पर कार्यवाही की गई है। एक जो और बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है वो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो बैंड प्रोडक्ट्स थे जैसे वॉकी टॉकीज, ड्रोन जैमर्स, एक्सप्लोजिव जो बेचे जा रहे थे जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे नामी प्लेटफॉर्म्स थे, उन सब पर भी कार्यवाही की गई है। तो कुछ बड़ी कार्यवाही है जो सीसीपी ने पिछले वर्षों की है।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं, अमित आंचल। अमित जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार, मेरे ये सवाल था सर कि जैसे भारत में इतना उत्पादन हिसाब से, खपत के हिसाब से, जैसे कि दूध जो है पेय पदार्थ, इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और खपत उससे भी दुगना होता है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो सही है या गलत है? ऐसे इसमें ना बहुत लोगों पर हानिकारक, स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है, इसको कैसा आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अभी एक शोध हुआ था, न्यूज पेपर में प्रकाशित हुआ था
1: जी,
2: इस पर थोड़ा सा आप इसका बता दें
1: जी। कविता मैम, आपसे सवाल है ये।
3: जी बताइए प्लीज इसको।
1: ये दूध, इनका कहना ये है कि दूध की बात ये कर रहे हैं कि उत्पादन जितना है खपत उससे ज्यादा है, तो उत्पादन और खपत का जो ये गड़बड़ी है, किस तरह से ये पूर्ति हो पाती है, ये कहना चाह रहे हैं।
3: अच्छा, दूध के ऊपर मिलावट उसका कैसे करना है?
1: जी
3: करके।
1: जी जी जी, FSSAI का।
3: हाँ जी, देखिए हमारे पास दूध का प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है, वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं FBO, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास भी पूरा टेस्टिंग मैकेनिज्म भी है, हम सर्विलेंस सैंपल उठाते हैं उसमें FBO को पीनलाइज नहीं करते, उसमें कुछ गड़बड़ होते तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं। अगर लीगल सैंपल हम लेते तो उसमें कुछ सबस्टैंडर्ड निकल के आ रहा है, मतलब उसका क्वालिटी पैरामीटर में कॉम्प्रोमाइज है, फिर हम उनको पेनाल्टी देते हैं। अगर कुछ अनसेफ निकल के आ रहा है, मतलब कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ डिटर्जेंट है, कुछ हजार्डस सब्सटेंस, मतलब हमारा शरीर को बिल्कुल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने वाला, उसको हम प्रोसिक्यूशन करेंगे। इस तरीके से हाई रिस्क कमोडिटी बोलते हैं हम, दूध तरह हाई रिस्क कमोडिटी को हम पूरा स्टेट्स को दे रखा है, सैंपल उठाना जरूरी है, हमको रिपोर्ट एनुअली दो बार जमा करना है, फूड बिजनेस ऑपरेटर, पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेसिग्नेटेड ऑफिसर को भी हम टारगेट दे रखे हैं। हम चार बार मिलते हैं सारे फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हेडक्वार्टर में आते हैं रिपोर्ट देने का, उसमें इस तरीके से उन्होंने कैसे सर्विलेंस एक्टिविटी किया, कैसे एडल्ट्रेशन को हॉटस्पॉट किधरे करके कैसे पकड़ा, कितना एनफोर्समेंट सैम्पलिंग किया है करके वो लोग हमको शेयर करना चाहिए। इसके अलावा भी हम अवेयरनेस भी बहुत दे रहे हैं क्योंकि समटाइम्स फार्मर्स को भी नहीं पता होता है किस तरीके से, मतलब बहुत कुछ सोशल मीडिया में भी ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, वो सारा नॉट पॉसिबल है, मतलब दोनों तरीके से भी है, एक तरफ बहुत डरने का जरूरत भी नहीं है। ऑल्सो हमारा दूध बहुत प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया वन ऑफ द टॉपेस्ट, तो ज्यादा मिलावट का भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आधा नेगेटिव न्यूज है, आधा में हम बहुत आगे वॉट एवर वे में हमको प्रिवेंट कर सकते हैं, वी आर डूइंग दैट एट द फुलेस्ट पॉसिबल।
1: जी बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं

0: हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। ई जागृति की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई थी और ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है। तो ई जागृति ने उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने और उसका समाधान पाने की प्रक्रिया को किस तरह से आसान बनाया है?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है
0: जी।
1: और ई जागृति ने कंज्यूमर डिस्प्यूट एड्रेसल सिस्टम में कई महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सुधार किए हैं। अब ई जागृति के माध्यम से कोई भी कंज्यूमर कहीं से भी बिना कंज्यूमर कमीशन ने फिजिकली जाए हुए अपने घर बैठे अपना केस दाखिल कर सकते हैं,
0: बहुत बड़ी सुविधा,
1: उसका पेमेंट कर सकते हैं और हर एक स्टेज पर उनके केस की क्या प्रगति हो रही है, कब वो लिस्ट हो रहा है, कब उस पर ऑर्डर आ रहा है, उसमें समन इशू किए जा रहे हैं, सारी जानकारी उनको घर बैठे मिल सकती है। और बिना कमीशन गए हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंज्यूमर कमीशन में अपना पक्ष भी रख सकते हैं और न्याय भी पा सकते हैं। इस व्यवस्था में जब से हमने इसको जनवरी 2025 से लागू किया है, 5 लाख से ज़्यादा नए हमारे साथ इसमें कंज्यूमर्स जुड़े हैं, इसमें करीब 4,000 से ज़्यादा NRIs हैं। अब इसमें जो VC फैसिलिटी दी गई है उसके माध्यम से विदेशों में भी जो बाहर मतलब NRI जो बाहर से इंडिया आए, सामान खरीदे और बाहर गए, उनका कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो USA, चाइना, दुबई, कई ऐसे देश हैं जो हमारे VC के माध्यम से न्याय प्राप्त कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ई जागृति के माध्यम से जो कंज्यूमर कमीशन्स के ऑर्डर हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं।
0: ये बहुत बड़ी पहल है। और एक और श्रोता हमारे साथ महाराष्ट्र के श्रोता जुड़े हैं, श्रीकांत जाखड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: हेलो, नमस्कार
0: जी। श्रीकांत जी, श्रीकांत जी,
2: सवाल जाखड़े बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से
0: जी।
2: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह खरीदते हैं तो वो फ्रेश है या फिर सेकंड हैंड है
0: जी,
2: तो ऊपर से तो लेबल सेम रहता है, तो इसके इसके समाधान का क्या मतलब तरीका क्या है? मतलब
0: कविता मैम, आपसे सवाल है ये।
3: हाँ जी, क्वेश्चन ये है, मतलब कुछ सामान खरीदने में वो फ्रेश है और ड्यूरेशन को ऊपर हो गया, वही वही उनका सवाल है ना
0: जी, जी,
3: हाँ जी। मतलब एनी प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ हम अथॉरिटी डिटरमाइन नहीं करेंगे, मतलब उसका प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर में और रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में कितना दिन रहेगा, 1 साल और 6 मंथ, वो FBO टेस्ट करके वो प्रोडक्ट का नेचर के हिसाब से वो एक्सपायरी डेट देता है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी देना जरूरी है, मैंडेटरी है, सेम वे डेट ऑफ एक्सपायरी भी देना जरूरत है। वो सेल्फ में मतलब वो रिटेलर भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, हमारा नोटिस पे आ रहा तो उनका मतलब प्रोसिक्यूशन विल बी इन प्लेस। ये कंज्यूमर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम लेबल नहीं देखते जनरली। अगर इंडिया में ये प्रैक्टिस है मतलब हम लेबल में इतना ध्यान नहीं करते, तो हम भी चेक करना पड़ेगा एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है करके। इसीलिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि एक पैकेट प्रीपैकेज्ड फूड का लेबल का वो है कुछ टैम्पर, बिना टैम्परिंग का कंटेंट बदल नहीं सकते, इसीलिए रीपैकिंग ऑल ये सारा पॉसिबल नहीं है, इसका पनिशमेंट भी है
0: जी। अनुपम जी, क्या मंत्रालय की ओर से उपभोक्ताओं के लिए कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है?
1: जितने भी उपभोक्ता हैं उनका यह अधिकार है कि उनकी किसी भी वस्तु से, किसी भी सेवा से जो खरीदते हैं कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का निवारण करवाना
0: जी।
1: इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय विभाग एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि 1915 1915 है, ये टोल फ्री है
0: जी।
1: इसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं

0: यह 17 भाषाओं में उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके साथ ही साथ ये हमारे पोर्टल पर और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। व्हाट्सएप नंबर है 8800191585 8800191915। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक प्री लिटिगेशन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। हम सलाह ये देते हैं कि यदि आपकी कोई शिकायत है तो सबसे पहले आप उस कंपनी से शिकायत करें, यदि वहाँ डिले होता है या जो उसका जो समाधान है आपके अनुरूप नहीं है तब आप NCH में आकर शिकायत कर सकते हैं। और ये व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है। और पिछले एक वर्षों में NCS के माध्यम से करीब 90 करोड़ रुपए का लोगों को रिफंड भी किया गया है
1: जी। और व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल मिला है राजेश नेमा सिंहपुर बेड़ा से। उन्होंने सवाल किया है, नकली घी और नकली पनीर की समस्या, जो मार्केट में इतना नकली पनीर जो है वो उपलब्ध हो रहा है, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? तो कविता जी, आपसे सवाल ये रहेगा।
2: हाँ जी, नकली घी करके बहुत मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम घी में कुछ मिलावट करने के, अगर वनस्पति मिलावट हो रहा है, वनस्पति में जरूर तिल का तेल थोड़ा सा रहना चाहिए क्योंकि उसका फ्लेवर एविडेंट होगा, इसीलिए घी में वनस्पति मिलावट होता तो इजीली पकड़ सकते हैं। फिर हमारे पास एक अच्छा टेस्ट मेथड भी है, अगर कुछ वेजिटेबल फैट घी में ऐड हो रहा है बीटा सिटोसिरल करके, उसका प्रेजेंस के थ्रू हम अडल्ट्रेशन को पकड़ सकते हैं, मतलब घी में मिलावट हुआ करके वो इजीली पता कर सकते हैं हम। और उसके अलावा हम अभी रिसेंटली फैटी एसिड कंपोजिशन बोलते हैं, वो यूनिक होता है, वो भी घी के लिए हमने नोटिफाई किया, वो और अच्छा है, मतलब मिलावट को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं। इसीलिए इतना इजी नहीं है घी में मिलावट करने का। एनालॉग पनीर को मैं बता देता हूँ, पनीर का हमारे पास स्टैंडर्ड है, कैसे इमिटेशन चॉकलेट तरह होता है, मतलब कोकोवा कम होता है उसमें चीनी ज्यादा होता है, इमिटेशन चॉकलेट भी ग्लोबली अवेलेबल है। सेम तरीके से एनालॉग पनीर में भी हमने प्रोविजन दिया है मिल्क फैट के अलावा वेजिटेबल फैट ऐड कर सकते करके। फिर इसमें भी कुछ चर्चा हो रहा है, कैसे पता करेंगे लोगों को, कैसे पता मतलब पनीर, पैक्ड पनीर रिलायबल वेंडर से हम खरीदेंगे तो हमको पता है पनीर है, तो रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वो लोग रिवील करना पड़ेगा हमको ये अनलाग है और पनीर है। इसके ऊपर हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरफ से बेनिफिट है, अगर लोगों लैक्टोस इंटॉलरेंस हम बोलते हैं, मतलब वो लोग मिल्क रिलेटेड स्टफ को नहीं लेते, उन लोगों का अच्छा है एनालॉग। फिर भी बहुत कंप्लेंट्स भी आया हमको, क्योंकि टेस्टिंग मेथोडोलॉजी नहीं है, इसीलिए हम इसको थोड़ा रिविजिट कर रहे हैं इस तरीके से एनालॉग को।
1: अनुपम जी, हम अक्सर उत्पादों और विशेष रूप से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क देखते हैं, ये हॉलमार्क क्या होता है और ये किस बात की पुष्टि करता है?
0: BIS का जो हॉलमार्क है ये सोने की शुद्धता की गारंटी देता है
1: जी।
0: इसमें बेसिकली तीन निशान है, एक है BIS का लोगो जो एक तिकोना सा चिन्ह होता है जो शुद्ध करता बताता है कि इस आभूषण की शुद्धता प्रमाणित है, दूसरा जो होता है वो गोल्ड का कितना कैरेट है ये बताता है, तीसरा एक उसमें 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ये हर एक आभूषण का यूनिक कोड होता है और ये उसकी शुद्धता बताता है। और आप चाहें तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है ये BIS केयर ऐप, जो एक BIS के ऐप में है, उसमें यदि आप डालेंगे तो उसके सारे डिटेल्स ही आपको दे देगा
1: जी।
0: तो जब भी आप सोने की कोई भी चीज़ खरीदें, हम सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे
1: जी,
0: वो BIS का हॉलमार्क जरूर देखें, ये शुद्धता का प्रमाण देता है।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद आपका।
1: जी सवाल पूछिए।
3: जी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम कंपनी में से शिकायत करते हैं, क्या हमें लिखित में क्या बोलते कंप्लेंट करनी पड़ती है या फोन पे जो है जो MSS पे हम क्या बोलते कंप्लेंट करते या हमें लिख के देना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: जी अनुपम जी,
0: जी आप बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है राकेश जी। आपकी कोई भी शिकायत है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन आप 1915 पर फोन करके कर सकते हैं, आपको उसे राइटिंग में देने की कोई जरूरत नहीं है। पर

0: सबसे पहले आप अपनी कंपनी से शिकायत कीजिए, यदि कंपनी में भी आप फ़ोन नंबर है उनके कस्टमर केयर नंबर दिए होते हैं वहाँ कीजिए। वहाँ आप लगता है कि आपकी शिकायत का सही निवारण नहीं हुआ
1: जी
0: तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि प्री लिटिगेशन मतलब कि कोर्ट कचहरी में जाने से पहले की
1: पहले
0: एक व्यवस्था है,
1: जी
0: आप वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं सिर्फ एक फ़ोन पर और अपनी भाषा में हिंदी में आप दर्ज कर सकते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिकायत सुविधा दी गई है। और कविता जी, आपसे जानना चाहेंगे, हर्बल दवा के नाम पर शीशी बेची जा रही हैं जिस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसकी शिकायत कहाँ पे की जाए?
2: इसका हमारा एक कंज्यूमर ग्रीवेंस पोर्टल भी है,
1: जी
2: उसमें अगर इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं आप फोटो के साथ हमको भेज सकते हैं। और मैंने बोला लाइसेंसिंग अप्लाई करने का हमारा फॉसकॉफ पोर्टल भी है,
1: जी
2: उसमें भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ऑल दिस इज मिसलीडिंग मिसब्रांडिंग रिलेटेड, अगर ये क्योंकि एक्सपायरी मैंडेटरी देना चाहिए इस तरीके से, नहीं है तो ये मतलब पनिशेबल अफेंस है। इसको आप ये ग्रीवेंस पोर्टल के थ्रू हमको अप्रोच कर सकते हैं और फोस्कॉस पोर्टल में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आप कर सकते हैं, हेडक्वार्टर को लिख सकते हैं। अगर ये कंप्लेंट मतलब लाइसेंस कुछ स्टेट में दिया है और सेंट्रल में दिया है, वो स्टेट कोड के हिसाब से कंसर्न डेसिग्नेटर ऑफिसर और कंसर्न फूड सेफ्टी कमिश्नर को अप्रोच करके दे सकते हैं आप। हम उसको एग्जामिन करेंगे, मतलब वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को हम लिखेंगे करेक्टिव एक्शन के ऊपर, अगर नहीं ले रहे तो उसके बाद हम फर्दर एक्शन लेंगे।
1: अनुपम जी, पैकेज पर कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कानूनी रूप से जरूरी है? और जैसे एक्सपायरी, बैच नंबर, निर्माता का पता, अगर ये ना हो तो उपभोक्ता क्या करे?
0: पैकेज पर कई बार, एक तो फूड सेफ्टी एक्ट में पैकेज पर कई डिटेल्स फूड रिलेटेड देने की अनिवार्यता है, उसके
1: जी
0: साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पैकेज कमोडिटी रूल्स में भी कई डिक्लेरेशंस देने जरूरी होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है MRP, उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है,
1: जी
0: प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन वो प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है, कहाँ से है, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, नेट क्वांटिटी 1 किलो है, वज़न उसका कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और उसके कस्टमर केयर डिटेल। इनफैक्ट यदि जो उपभोक्ता है कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके पैकेज पर दिए हुए सारे डिटेल्स यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो उनके उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कई जानकारियाँ उनको मिल सकती हैं।
1: और अंत में जानना चाहेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
0: एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला, पैकेज कमोडिटी में दिए गए सारे डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़ता है,
1: जी
0: नंबर 1। नंबर 2, कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका बिल लेता है। तीसरा, यदि उसके कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए शिकायत करता है अपने
1: जी
0: ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू। ये 3 जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है।
1: कविता जी, आपके अनुसार एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है?
2: जी, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होने का लेबलिंग को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर के तरफ से, क्योंकि रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स दे देगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या क्या कंप्लाई करना है वो लोग कंप्लाई करेंगे, कुछ इनएडवर्टेंटली भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड कंज्यूमर। सो कंज्यूमर का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है, लेबल में क्या दिया है। हम बहुत कुछ चीज में सर्विंग साइज मिस कर देते हैं आजकल, हम बताते हैं मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देखना हमारा आदत है, वो छोड़ के कौन सा इंग्रेडिएंट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता है, अगर फैट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है,
1: जी
2: मतलब
1: कविता जी,
2: ये सारा
1: जी
2: कॉमन मैन को समझ आना चाहिए।
1: बिल्कुल
2: सर्विंग साइज, एक पैकेट में चिप्स में 4 सर्विंग है तो हम पूरा पैकेट नहीं लेना चाहिए, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हेल्थ के हिसाब से। अगर कुछ कंप्लेन भी उधर हम मतलब कुछ इश्यूज है, कुछ टॉल क्लेम्स है, कंज्यूमर कैसे
1: जी
2: अप्रोच
1: कविता
2: करना
1: जी,
2: वो भी जानने
1: समय
2: चाहिए।
1: समय अब समाप्त हो रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, आपसे विदा लिया जाए। तो हमारे साथ आज जो भी श्रोता जुड़े, और उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी

0: खेल जगत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे दो भेंट वार्ताएं। उससे पहले हम चर्चा करेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के शानदार प्रदर्शन पे। राष्ट्रमंडल खेल विश्व के प्रमुख बहु खेल आयोजनों में से एक है, जहां राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, मेहनत और खेल भावना का प्रदर्शन करते हैं। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ। इन खेलों में 74 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत ने इन खेलों में एक बार फिर अपनी खेल प्रतिभा का शानदार परिचय दिया। भारतीय दल में 124 खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें 78 पुरुष और 46 महिला खिलाड़ी थी। सीमित खेलों के कार्यक्रम के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक अपने नाम किए। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। भारतीय खिलाड़ियों के लिए भारतोलन और एथलेटिक्स विशेष रूप से सफल रहे। भारतोलन में मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर लगातार तीसरे राष्ट्रमंडल खेलों में खिताब हासिल किया। एथलेटिक्स में भी भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। गुलवीर सिंह ने पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। मुरली श्री शंकर ने लंबी कूद में रजत पदक हासिल किया। पैरा एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और भारत के लिए स्वर्ण तथा कांस्य पदक जीते। मुक्केबाजी और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। महिला मुक्केबाजों और पुरुष मुक्केबाजों ने पदक जीतकर भारत की पदक संख्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जूडो में भी भारत ने स्वर्ण और रजत पदक हासिल किए। ये प्रदर्शन बताता है कि भारत में पारंपरिक खेलों के साथ साथ अन्य खेलों में भी प्रतिभाएं तेजी से उभर रही हैं। इस बार के राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण रहे क्योंकि खेलों के कार्यक्रम में पहले की तुलना में काफी बदलाव किया गया था। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती और टेबल टेनिस जैसे खेल इस संस्करण में शामिल नहीं थे। इसके बावजूद भारत ने 39 पदक जीतकर अपनी मजबूत खेल क्षमता का परिचय दिया। भारतीय खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। खिलाड़ियों की सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन, प्रशिक्षण और परिवार तथा प्रशिक्षकों का सहयोग रहा। इन उपलब्धियों से देश में खेलों के प्रति रुचि और बढ़ने की उम्मीद है। विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों और पैरा खिलाड़ियों की सफलता भारत के लिए गर्व का विषय है। ये साबित करता है कि उचित अवसर, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिलने पर हर खिलाड़ी देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर सकता है। इसी भावना को जाहिर करते हुए आज की पहली भेंट वार्ता हम आपको सुनवाते हैं कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक विजेता अरुंधति चौधरी से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी कोटा का अंशदान है।
1: श्रोताओं नमस्कार। कोटा की ही एक हमारी एक बालिका ने एक राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोटा क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सिंग के फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाली अरुंधति चौधरी की। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि अरुंधति चौधरी हमारे साथ हैं और आकाशवाणी के श्रोताओं से बात कर रही हैं। अरुंधति, बहुत स्वागत है आपका।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सबसे पहली बात तो ये आपसे पूछना कि कैसा लग रहा है, ये तो एक अलग बात होगी क्योंकि आपके चेहरे से झलक रही है खुशी। इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोटा का और पूरे देश का नाम रोशन किया है आपने, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको।

0: और अगर अब बात की जाए आपकी इस उपलब्धि के बारे में, तो एक बार हमारे श्रोताओं को बताएं आपकी आपकी उपलब्धि बॉक्सिंग के क्षेत्र में है, किस भार वर्ग में आपने मेडल जीता है और किस तरह से आपने मेडल जीता, ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है 70 कैटेगरी में, और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए ये मेडल लिया है। और अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े कॉम्पिटिशन में मेडल ले पाई हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है ये, और जैसा कि लगातार हम आपके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, इसके पहले भी आप आकाशवाणी आई हैं, आपने इंटरव्यू दिया था, तो अब दोबारा आप आकाशवाणी से बात कर रही हैं, तो जब आप उस समय आकाशवाणी आई थी तो क्या आपको लगा था कि भाई मैं आगे इस मुकाम पर जरूर पहुंचूंगी?
1: नहीं, मैं जब से बॉक्सिंग स्टार्ट करी तब से टारगेट तो फिक्स है कि कहाँ तक पहुँचना है।
0: बिल्कुल।
1: और जब मैं आई थी तब भी मुझे भरोसा था कि मैं ओलंपिक्स तक तो ज़रूर जाऊंगी,
0: जी
1: और कॉमनवेल्थ गेम्स तो हालांकि एक स्टेप है, आगे और भी कॉम्पिटिशन्स है जिसमें अच्छा परफॉर्म
0: जी
1: करना
0: वाह,
1: है।
0: बहुत अच्छा। आपकी इस यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं कि आपने बॉक्सिंग कब से शुरू की, किस तरह से आपने ये खेल खेला और बॉक्सिंग ही आपने क्यों चुना? कई जगह हमने पढ़ा है कि आपके एक गुस्सेल स्वभाव था इसलिए आपने बॉक्सिंग चुना, लेकिन अभी आपके साथ बैठे हैं तो आपकी जो मुस्कान देख के लग नहीं रहा कि आपको कभी गुस्सा भी आता होगा, तो थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि कैसे आपने शुरू की बॉक्सिंग, क्या आपकी यात्रा रही, किससे आपको प्रेरणा मिली, इस बारे में थोड़ा बताएं।
1: हाँ, लड़ाकू तो थी मैं शुरू से, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा ही था तो, बट वही है कि तराशा मुझे मेरे फादर ने, और उन्होंने मेरे गुस्से और मेरे जो ये लड़ाकू नेचर है इसको एक अच्छी जगह पे इम्प्लीमेंट किया, और हमने बॉक्सिंग इसीलिए चूज़ किया। और इसमें आने के बाद काफ़ी अप डाउन तो रहे बैक टू बैक, मतलब कहीं इंजरीज ऐसी हुई जिसके बीच में ऐसा मन भी किया कि अब क्या हो पाएगा, इंजरी हो गई इतनी बड़ी बड़ी, बट फिर भी कंटिन्यू रखा है और अभी तो अच्छा हो ही गया
0: ये
1: है।
0: बहुत अच्छा हुआ है। और शुरुआत से हम बात करें तो आपने किस उम्र से शुरू की बॉक्सिंग करना?
1: मैंने 2016 में स्टार्ट करी थी बॉक्सिंग जब मैं 14 साढ़े 14 साल की थी।
0: जी,
1: जी
0: और कौन आपके प्रेरणा के स्रोत रहे, आपके गुरु कौन रहे और किसने आपको प्रेरित किया स्पेशली बॉक्सिंग के फील्ड में ही आने के लिए?
1: बॉक्सिंग के फील्ड में आने के लिए तो मुझे प्रेरित सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने ही किया, क्योंकि मैंने उनको खुद स्ट्रगल करते हुए और सेक्रीफाइस करते हुए देखा है, और मुझे लगता है कि जिनको मैं आंखों से देख रही हूँ इतने दुख में भी लड़ते हुए, मैं उन्हीं को ही अपनी इंस्पिरेशन बना सकती हूँ। और मेरे जो कोच हैं वो अशोक गौतम सर हैं, जो नयापुरा में महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं।
0: जी, अगर शुरुआत की बात की जाए तो जब आपने बॉक्सिंग शुरू की उसके बाद कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया, किस तरह से आपने उन इवेंट्स को जीता, कौन कौन से कॉमनवेल्थ से पहले कौन कौन से मेडल आपको मिले हैं?
1: कॉमनवेल्थ के अभी थोड़े टाइम पहले ही 2-3 महीने पहले अप्रैल में मैंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, उसके पहले 2025 में मैंने नवंबर में वर्ल्ड कप जीता है, और यूथ वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल है, एशियन चैंपियनशिप में यूथ में ब्रोंज है, 7 बार बैक टू बैक इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल में गोल्ड है, और 7 बार नेशनल में गोल्ड है, 3 बार खेलो इंडिया में गोल्ड है।
0: अच्छा, आपके जो परिवारजन हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही जब आपने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता?
1: सबकी आंखें भरी हुई थी खुशियों से,
0: जी
1: क्योंकि इतने ज़्यादा खुश थे कि परिवार से पहली बच्ची और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके गोल्ड मेडल लेकर आई है, और वो भी कोटा जैसी जगह जहाँ पे अभी भी फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो बहुत खुश थे सब लोग और बहुत प्राउड है सब लोगों को।
0: और आपके परिवार में आपके अलावा और भी कोई हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं?
1: अभी तक तो कोई नहीं था, लेकिन अभी मेरी छोटी बहन ने स्टार्ट किया है, मेरे मामा की बेटी ने, तो मैं यही करूंगी कि आगे वो भी बहुत अच्छा करे।
0: जी बिल्कुल, आपको देख के लगातार प्रेरणा मिल रही होगी
1: हाँ
0: आपके।
1: जी,
0: और आपके जो मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में?
1: वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब बाहर का तो कोई नहीं है स्पोर्ट्स फील्ड से मेरे ऐसे फ्रेंड, बट बॉक्सिंग मतलब जो मैं जहाँ से स्कूलिंग करी है वहाँ के फ्रेंड्स थे, तो वो लोग बोलते हैं कि अरुंधति हमें यकीन नहीं हो रहा, जिस बच्ची के साथ हम बैठ के पढ़ाई करते थे आज वो एक स्टार बन गई है, तो बहुत खुशी मिलती है मतलब उन लोगों से बात करके ऐसे।
0: जी, तो आपने जब राष्ट्रमंडल खेलों में जब आप शामिल हुई और आपका जो पहला मैच था तो उस समय आपको कैसा रहा, क्या मैच रहा, और जब आपने लगातार बॉक्सिंग के जो मैच खेले तब वो कहीं लगा ऐसा कि हाँ वो टफ कंपटीशन है, मैं किस क्या आपकी रणनीति क्या रही गोल्ड मेडल जीतने की?
1: टफ मैच तो काफी थे सर, क्योंकि कॉमनवेल्थ कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत ज्यादा
0: बहुत
1: अच्छी
0: बड़ी
1: अच्छी कंट्रीज आती है वहां पर, और मेरे 3 मुकाबले हुए, पहला नीदरलैंड से, दूसरा वेल्स से और तीसरा इंग्लैंड से, तो शुरू के 2 मैच मेरे लिए ज़्यादा टफ थे, क्योंकि वो दोनों का गेम थोड़ा मेरे गेम से अलग था और बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला उनका गेम था, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, मैं बोलूँगी 100 से भी ज़्यादा जोर लगाया मैंने, और उन्हीं दोनों को मैं थोड़ा टफ बताऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना पड़ा उनमें। बाकी जो फाइनल मैच था इंग्लैंड के साथ वो काफ़ी टेक्निकल बॉक्सर थी और मेरा गेम भी टेक्निकल है, तो मुझे उनके साथ खेल के काफी अच्छा लगा और वन साइडेड स्कोर आया।
0: जी बिल्कुल। अच्छा, आपने खेल जब आपका फाइनल मैच था तो आपको पता था कि भाई मेरा सिल्वर तो पक्का हो चुका है, अब गोल्ड के लिए मुझे ये मैच खेलना है, तो आप नर्वस तो रही होंगी उस गेम से पहले, किस तरह से आपने उस चीजों को काबू पाया और खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया?
1: नर्वस तो नहीं थी सर, बस ये था कि आज बस 9 मिनट खुल के खेलना है, एक तरफा खेलना है, और 9 मिनट

0: बाद मुझे सब कुछ अचीव हो जाएगा, वो सब कुछ जो मैं इतने टाइम से जिसका मैं सपना देख रही थी। तो मैंने अपना पूरा जोर लगाया नॉमिनेट में और अच्छा रिजल्ट आया फिर।
1: जी, फाइनल में आपने किस तरह से पराजित किया आपके प्रतिद्वंदी को, क्या कितने अंकों से, क्या राउंड रहे, इस बारे में थोड़ा बताएं।
0: राउंड एक तरफा थे सर, तीनों राउंड 5-0 थे। और वो खुद बहुत अच्छी बॉक्सर है, पिछले साल के वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनका ब्रोंज है और वो फोर्थ नंबर रैंक्ड हैं बॉक्सर ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो मुझे अच्छा लगा, हालांकि उनके ऊपर भी प्रेशर था क्योंकि मेरी वर्ल्ड रैंक 2 है और एक वर्ल्ड रैंक 2 और वर्ल्ड रैंक 4 के बीच में ये मुकाबला था। उन्होंने भी काफी जोर लगाया अपना, पर शायद उस दिन उनका दिन नहीं था तो रिजल्ट मेरे
1: फिर
0: फेवर
1: उस
0: में
1: दिन तो
0: आया।
1: पूरा दिन आपका था और अब लगातार यही हमें उम्मीद कर रहे हैं, हर दिन आपका है।
0: जी
1: अगर बात की जाए आपकी दिनचर्या की, तो दिनचर्या आपकी कैसे रही?
0: सर, दिनचर्या तो हम मतलब स्पोर्ट्स पर्सन की यही है कि सुबह शाम उनको ट्रेनिंग करनी रहती है, बाकी उनका रिकवरी फेज रहता है। और अगर कभी कभी लगता है कि अभी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत है तो दिन में 3 बार ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, सुबह,
1: जी
0: दोपहर में और शाम को, और बाकी रिकवरी पीरियड है पूरा।
1: जी अच्छा, हमारे जो खासकर लड़कियां हैं, हमारे क्षेत्र की लड़कियां हैं, हमारे देश की लड़कियां हैं, उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और अपने सामने आने वाली हर तरह की बाधा को लड़कियां किस तरह पार करें, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बस पहली बात तो उन्हें यही कहूंगी कि अगर वो सपने देखती हैं तो उन्हें सच करने की हिम्मत रखें, अपने लिए स्टैंड जरूर लें, क्योंकि जो इंसान अपने लिए स्टैंड ले सकता है वो सब कुछ अचीव कर सकता है। तो पहला स्टेप तो स्टैंड लेना ही है और खुद पे भरोसा जरूर रखिए। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है फैमिली को मनाना, ये सब करना, बट ये एक समय की फिर कहानी रह जाती है। मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था, पर जब कोशिश करी और आज पूरी फैमिली सपोर्ट में है, पूरा कोटा सपोर्ट में, और तो और जो मेरा स्वागत हुआ है राजस्थान में, वो भी देख रही हूँ मैं कि कैसे राजस्थान में गेम्स को इम्पोर्टेंस मिल रही है। और जिस स्टेट के लिए ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर लड़कियों पे बहुत बंदिश है, आज वो स्टेट मेरा इस तरीके से स्वागत कर रहा है। तो मैं भी एक नॉर्मल थी कि मुझे कोई अलाउ नहीं कर रहा था, कोई मेरे खेलने से खुश नहीं था, पर आज सब लोग मिलकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। तो ये
1: बिल्कुल,
0: चेंजेस आ सकते हैं अगर आप अपने आप पर भरोसा रखें तो।
1: बहुत बहुत अच्छी बात की है आपने कि आपको खुद पे सबसे पहले भरोसा रखना होगा। अगर बात करें बॉक्सिंग खेल की, तो देखा जाता है कि हरियाणा और इन राज्यों का बॉक्सिंग में काफ़ी एक मुकाम हासिल किया है इन राज्यों ने, और राजस्थान से जब बॉक्सिंग में, खासकर एक हमारी बालिका जब बॉक्सिंग में आगे बढ़ती है, तो एक बहुत ही अच्छी खुशी की बात होती है। क्या आपको किसी ने ऐसा कहा कि भाई राजस्थान में होके हम बॉक्सिंग खेल खेलेंगे, इसका कुछ मतलब स्कोप क्या है, इस बारे में कभी आपको लगा कुछ?
0: हाँ सर, मतलब फैमिली से तो सुना ही था, बाकी बाहर जब जाती थी तो हरियाणा का दबदबा ज्यादा रहता था। मैं देखती थी कि कैसे हरियाणा के बच्चों से बहुत डर रहे हैं कि हमारी हरियाणा से फाइट ना आ जाने तो हम हार जाएंगे ऐसा, पर राजस्थान से किसी को डर ही नहीं था। फिर धीरे धीरे जब मेरे बैक टू बैक मेडल आए, मैं सबको हराती गई, तो फिर हो गया कि राजस्थान की एक लड़की तो बहुत खराब है, ये बार बार आके मार देती है। तो ये धीरे धीरे चेंज होगी सर, जरूर चेंज होगी कि आज राजस्थान में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अब धीरे धीरे अच्छी हो रही है। और मैं खुद से भी जितना होगा उतनी कोशिश करूंगी कि हमारे स्टेट से भी स्पोर्ट्स में बहुत सारे बच्चे आगे निकले और बहुत अच्छे अचीवमेंट लेकर आए।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। अब आगे आपने क्या सोचा है? हालांकि हमें पूरा यकीन है अब अगला ओलंपिक मेडल कोटा को ही मिलेगा, वो भी गोल्ड मेडल मिलेगा। आपकी क्या तैयारी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी आगे, और ओलंपिक कब खेलना है, किस तरह से आप उसके लिए प्रिपेयर हैं?
0: अगला तो अभी सर बहुत ज़्यादा इस साल कॉम्पिटिशन थे बैक टू बैक, तो अभी हफ्ता भर तो काफ़ी अच्छा रिकवरी लेना है घर पे। उसके बाद वापस मैं अपना नेशनल कैंप ज्वाइन करूंगी और नवंबर में हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसकी तैयारी करूंगी। और मेन टारगेट तो 2028 का ओलंपिक्स है, बाकी उससे पहले काफ़ी अभी छोटे छोटे ऐसे कॉम्पिटिशन है जो खेल के मुझे अपने आप को तैयार करना है, तो उनके लिए मैं तैयारी करूंगी।
1: जी, कोटा के क्षेत्र की जनता, जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं उनके लिए ये कहूंगी कि निरंतर मेहनत करें, हार जीत कुछ मैटर नहीं करती है, हार से तो आपको ज्यादा सीखने को ही मिलेगा। तो बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए और खूब हार्डवर्क करिए, क्योंकि हार्डवर्क करने पर ही रिजल्ट मिलता है।
1: जी अरुंधति, आपने गोल्ड मेडल जीता, देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, और उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि अब आगे जो भी आपके कंपटीशन होंगे, वर्ल्ड कप जैसे आपने बताया, ओलंपिक आपने बताया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी और फिर एक गोल्ड मेडल के साथ आप हमारे कोटा में होंगी।
0: जी जी जरूर, बिल्कुल होगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके इन बात करना।
1: आकाशवाणी कोटा को अपना समय आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक विजेता अरुंधति चौधरी से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी कोटा का अंशदान था। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं पैराशूटर राहुल शर्मा से जितेंद्र वर्मा की गई बातचीत।
3: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर विभिन्न खिलाड़ियों से जो कि अपना एथलेटिक्स में या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर अपना एक मुकाम हासिल करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं।

0: इसी क्रम में आज हमारे साथ राहुल शर्मा जी हैं। आप शूटिंग चैंपियन हैं और पिस्टल शूटिंग आप करते हैं, आप पैरा एथलीट हैं। तो सबसे पहले तो हम जो हमारे पैरा एथलीट राहुल शर्मा जी स्टूडियो में आए हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद
0: राहुल जी। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप पिस्टल शूटिंग का गेम खेलते हैं और आप एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो ये पिस्टल शूटिंग में जाने का आपको कब और कैसे लगा कि हमें पिस्टल शूटिंग में जाना चाहिए, शूटिंग में अपना करियर बनाना चाहिए?
1: सर, मैं 2023 में एक आर्टिकल पढ़ रहा था सर, उससे मुझे पता चला कि गेमों में भी करियर बनाया जा सकता है। तो सर मैंने वहीं से शुरुआत की, तो मैंने शूटिंग के बारे में जानना चाहा कि भाई शूटिंग में कैसे जाया जाए। तो सर मुझे पता चला कि वहाँ जाकर पता चला कि पैरा और स्पोर्ट्स अलग से होते हैं, कि पैरा जो खिलाड़ी होते हैं उनके गेम अलग से आयोजित किए जाते हैं।
0: जी।
1: सर वहाँ जाके पता चला कि सर मुझे लेफ्ट और राइट हैंड पिस्टल अलग अलग होती है, क्योंकि सर मैं लेफ्टी हूँ। तो सर मुझे इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जो मोस्टली जो एथलीट्स हैं वो राइट हैंड से ही यूज़ करते हैं। तो सर उसमें सर मेरे जो कोच हैं श्री सचिन सिंह शेखावत जी, सर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में सर लेफ्ट हैंड राइट हैंड पिस्टल से सर लेफ्ट हैंड से शूटिंग करवाई
0: जी,
1: जो कि सर एक बहुत ही टिपिकल टास्क है। उससे सर मैंने स्टेट और जोनल क्वालिफाई किया था राइट हैंड की पिस्टल को लेफ्ट हैंड से पकड़कर। तो उसके बाद धीरे धीरे सर ये जर्नी स्टार्ट हुई, मैं नेशनल खेला, उसमें मैं सिर्फ क्वालिफाई हो पाया, मेडल नहीं ले पाया। 2024 सर मेरा पूरा मतलब खाली चला गया, कोई मैंने काफ़ी मेहनत की लेकिन मैं फोर्थ रैंक। अभी सर 2025 में सर मेरा पहला नेशनल मेडल लगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मेरा सर ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीता। उसके बाद सर स्टेट में मेडल लिए, फिर जोनल में मेडल लिए, फिर सर नेशनल में मेरे इस बार 5 मेडल थे।
0: ओके।
1: सर उसी कड़ी में जो फर्स्ट और सेकंड ट्रायल हमारे हुए महू आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट महू के अंदर,
0: जी,
1: इसमें सर ऑल इंडिया में मेरी सर 3rd रैंक थी। उसके बाद सर हमारा सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स शूटिंग चैंपियनशिप में सर्बिया के अंदर,
0: जी,
1: जिसमें सर मैंने 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, 10 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट, 10 मीटर एंड 25 मीटर पिस्टल इवेंट, जिसमें सर मेरी तीनों में ही सर बहुत बढ़िया रैंक रही। जिसमें सर 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड में मैंने सर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता।
0: वेरी गुड।
1: एंड सर 25 मीटर में सर मैं 7th प्लेस पर रहा ऑल ओवर वर्ल्ड। एंड सर 10 मीटर एयर पिस्टल में मैंने सर टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
0: जी। तो राहुल जी, सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। पिस्टल शूटिंग जैसा कि एक बहुत कंसंट्रेशन वाला गेम होता है, तो कोई भी शूटिंग का गेम हो वो बहुत कंसंट्रेशन का होता है, तो ये कंसंट्रेशन लाने के लिए आप क्या किस तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं, क्या करते हैं?
1: जी सर, इसके लिए सर मैं मेडिटेशन सर अपने आप को शांत रखता हूँ कि मैं नेगेटिविटी से दूर रहूँ। फोकस के लिए सर सबसे पहली चीज़ होती है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहें, आप हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैच खेलें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि शूटिंग फोकस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अपने दिमाग में ना आने दें। हम जब पिस्टल उठा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि शॉट कहीं ख़राब ना हो जाए या वो हो जाए, तो हम उसको अवॉइड करते हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रखते हैं कि हमें हमारा जो प्रोसेस है उसको अच्छे से फॉलो करना है, परिणाम बाद में देखा जाए।
0: जी राहुल जी, यहाँ पर आप पैरा गेम्स आप खेलते हैं, जो ट्रेडिशनली जो नॉर्मल गेम्स होते हैं और पैरा गेम्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से अंतर इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं?
1: जी सर, नॉर्मल खिलाड़ी सर सामान्य, उनके सर सभी अंग जो है सामान्य है, उनसे सर उनको किसी भी प्रकार की सर चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो पैरा खिलाड़ी हैं, जैसे सर मेरा, मैं दाएं हाथ से सर मैं मतलब दिव्यांग है सर, मैं इसको दिव्यांग नहीं, मैं अपने अस्त्र मानता हूँ।
0: जी,
1: तो ये हैं जैसे कई खिलाड़ी हैं जो व्हीलचेयर पर हैं, सर हमें, क्योंकि हमें वही करना है जो नॉर्मल खिलाड़ी कर रहे हैं, तो हमें सर उसके लिए एक अलग से कुछ इक्विपमेंट्स का सहारा लेना होता है, कुछ अलग से टेक्निक्स यूज करनी होती हैं कि जिससे हम नॉर्मल खिलाड़ी जितना परफॉर्म कर पाए।
0: जी सर। अच्छा, ये आपका, अगर हम वर्ल्ड शूटिंग या वर्ल्ड कप शूटिंग वर्ल्ड कप की अगर बात करें, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
1: सर ये मेरा पहला वर्ल्ड कप था।

0: और सर मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग भी रहा, क्योंकि हम यहाँ से निकले तो हमारी सर इस्तांबुल एयरपोर्ट पर टर्की में 5 घंटे का लेओवर था, और हमारी कनेक्टिव फ़्लाइट थी, यहाँ से हमारा टर्किश एयरलाइंस से था, वहाँ से हमारा एयर सर्बिया से था।
1: जी
0: हम जब फ़्लाइट में इस्तांबुल से एयर सर्बिया में हम चढ़े तो हमें पता चला कि हमारे वेपन फ़्लाइट में नहीं चढ़े हैं, और हमारे वेपन इस्तांबुल एयरपोर्ट पर ही रह गए,
1: जी
0: जो कि हमें 2 दिन बाद सर्बिया में मिले। तो
1: जी
0: उसके लिए सर हमारे दिमाग में बस यही रहा कि अरे यार वेपन तो आए नहीं, हम आ गए, तो बिना हथियारों के से कैसे जंग लड़ी जाएगी।
1: जी जी जी
0: तो वही चीज़ दिमाग में रही, लेकिन सर फिर मैंने हमारे कोच से बात हुई तो सर ने बोला कि आप ड्राई प्रैक्टिस करो, और सर हमारे एक बहुत ही मतलब दूरदृष्टि के धनी हैं, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा ग्रिप मेरे साथ में भेजी थी, यदि कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए तो आप किसी और का वेपन लेके भी शूटिंग कर सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं जी
0: सर ये एक अच्छा मोमेंट रहा, सर ने बोला कि आप ड्राई प्रैक्टिस कीजिए, और ड्राई प्रैक्टिस कीजिए और वेपन आएगा वो देखेंगे, नहीं आएगा तो कुछ व्यवस्था की जाएगी। तो थोड़ा
1: जी
0: सा सर स्थिति ऐसी बन गई थी दिमाग में कि यार क्या होगा क्या होगा।
1: तो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आपने
0: जी
1: वर्ल्ड
0: सर,
1: रिकॉर्ड भी
0: जी सर,
1: स्थापित किया।
0: हम प्री ट्रेनिंग नहीं कर पाए सर, उसकी वजह से वेपन नहीं थे, हमने डायरेक्ट सर मैच ही किया।
1: जी फ्यूचर की क्या प्लानिंग्स हैं आपके?
0: फ्यूचर की सर सपना तो सर LA 2028 ही है, और लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028, एंड अभी जो हाल ही है जो मेरा नज़दीकी गेम है सर, वो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप साउथ कोरिया के अंदर सर इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
1: जी राहुल जी, एक पैरा एथलीट होते हुए आपने जो अचीवमेंट्स लिए हैं, निश्चय ही ये सभी जितने भी खेलने वाले खिलाड़ी हैं, चाहे वो पैरा एथलीट्स हों या नॉर्मल एथलीट्स हों, उन सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी आपका है कि आपने 2023 से शुरुआत की थी शूटिंग की और 2026 में आप वर्ल्ड चैम्पियन बन करके आए हैं। तो निश्चय ही ये बहुत ही गर्व की बात है, और ये संपूर्ण खिलाड़ी जितने भी हैं जो खेल रहे हैं, जो खेल में अपने करियर को आगे बनाना चाहते हैं, उनके लिए निश्चय ही प्रेरणादायी रहेगा। ट्रेनिंग्स का क्या रहता है आपका? किस तरीके से आप ट्रेनिंग करते हैं? ट्रेनिंग के क्या सेशंस होते हैं? कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं? और प्रैक्टिस ये, क्योंकि शूटिंग एक एक्सपेंसिव गेम माना जाता है, तो किस प्रकार से मैनेज कर पाते हैं?
0: जी सर, गेम बहुत ही महंगा है ये कहा जा सकता है सर। इसमें मेरे पिताजी ने सर हमारा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मेरी इस मेहनत पर अंधा विश्वास किया है। वो कहते हैं कि यदि आप अपना करियर बना सकते हो तो पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे लगाए जा सकते हैं, तो आप सिर्फ मेहनत कीजिए, हम खड़े हैं आपके पीछे।
1: जी
0: और सर मेरे कोच का भी सर इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो कि सर मुझे निशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, और सर मैं मोस्टली वेपन सर उन्हीं के यूज़ करता हूँ, वो भी निशुल्क। तो सर इसमें सबसे बड़ा योगदान सर मेरे कोच और मेरे पिताजी का है।
1: जी चलिए राहुल जी, बहुत ही सही बात आपने कही कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके सपोर्टिव हैं, जो आपके कोच हैं, वो अगर सपोर्टिव होंगे तो निश्चय ही आपके गेम में निखार आता रहेगा। और क्या आप अपने साथ में जो भी सीखने वाले और खिलाड़ी हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं, आप कैसे उनको सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं?
0: जी सर, मैंने मेरे अनुभवों से सर, जो मैंने जितनी मेहनत की है, मैं इस मेहनत से इतना सीखा है समय से, मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो और खिलाड़ियों के लिए भी, या हर व्यक्ति के लिए जो मेरे से जुड़ा हुआ है, उसके साथ मेरे अनुभव उनके भविष्य निर्माण में कहीं ना कहीं कारगर साबित हो, तो सर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। इसके लिए सर मैं निरंतर प्रयास करता हूँ कि मैं किसी की व्यक्ति की किसी भी प्रकार से मदद कर पाऊँ।
1: राहुल जी, आपका शूटिंग में जाना और आपका जो आप इससे पहले पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, तो उसमें और इसमें सामंजस्य बिठाने के लिए किस तरीके से आप करते हैं? अपनी एजुकेशन की बात अगर करें या कोई और काम आप करते हैं तो उसके लिए।
0: जी सर, मैं इससे पहले गवर्नमेंट जॉब की सर प्रिपरेशन कर रहा था, उसके साथ मैंने सर अचानक से शूटिंग में स्विच किया। मेरा मामला ये मेरा ये रहा कि मन कि कुछ नया ट्राई किया जाए, और खेल की हमेशा से थी कि खेल खेलें खेल खेलें, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था किस खेल में जाएं। तो ये सर ईश्वरीय प्रेरणा रही कि हम शूटिंग में आए, और सर यही हमारी जर्नी है।
1: जी राहुल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। किस प्रकार से आपने अपने संघर्षों के साथ में वर्ल्ड कप में आप खेले हैं, आपने जीते हैं, आप रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं,

0: जो खिलाड़ी इस समय तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: उनके लिए सर यही है कि अपने जो विपरीत समय है या आप जहाँ पे अपना मैच खराब हो जाता है या कुछ भी होता है, तो निराश ना हो, क्योंकि हम हर पल या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी नहीं है। अपने जो विफलताएं उनसे सीखने की कोशिश करें, डीमोटिवेट ना हो कभी भी, क्योंकि मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती। सफलता समय मांगती है, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है।
0: जी राहुल जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपनी जर्नी के बारे में, अपने स्पोर्ट जर्नी के बारे में जो जानकारियाँ दी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और विषय पर बातचीत के साथ। तब तक आपसे इजाजत चाहते हैं, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पैराशूटर राहुल शर्मा से जितेंद्र वर्मा की प्रेरणादायक बातचीत। इसी के साथ आज का खेल जगत कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 10:30 हुआ चाहते हैं। आइए सुने।

सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है, वो बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। और मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है।

साहिर की कलम से निकला ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना, मुकेश और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण का, माफ करें, शकील बदायनी का लिखा गाना सुने। नौशाद की मौसीकी में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को आवाज़ दी है। बात फैज़ की कि इस कदर प्यार से ए जाने जहाँ रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ, यूं गुमा होता है गरजे है अभी सुबह फिराक, और ढल गया हिजर का दिन आ भी गई वसल की रात।

लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए शैलेंद्र का लिखा ये खूबसूरत गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में कि हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए और चरागों की तरह आंख जले जब शाम हो जाए और मैं खुद भी एहतियातन

गाना अभी आपने शैलेंद्र का सुना, धुन शंकर जयकिशन ने बनाई। आइए इन्हीं संगीतकार के निर्देशन में

मुकेश का गाया गाना सुने, हसरत ने गीत को लिखा कि गुलाबों की तरह दिल अपना शबनम में भिगोते हैं, गुलाबों की तरह दिल अपना शबनम में भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं। और किसी ने जिस तरह अपने सितारों को सजाया है गज़ल के रेशमी धागों में, यूं मोती पिरोते हैं।

दोस्तों, अभी आपने हसरत जयपुरी का लिखा ये प्यारा सा गीत सुना। जब भी प्यार भरे कुछ मुलायम गीतों की बात होती है तो शैलेंद्र का नाम हमारे जहन में हमेशा रहता है। गाना सुनिए उन्हीं का, धुन शंकर जय किशन की, लता मुकेश की आवाजें हैं कि सुन ली जो खुदा ने वो दुआ तुम तो नहीं हो, वो दरवाजे पे दस्तक की सदा तुम तो नहीं हो, और सिमटी हुई शर्माई हुई रात की रानी, सोई हुई कलियों की हया तुम तो नहीं हो।

लीजिए आज की इस प्रोग्राम के आखिर में सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और चित्रगुप्त का संगीत से सजाया ये गाना लता मुकेश की आवाज़ों में, बात इतनी के साथ कि बहार चश्म तेरे हुस्न की बहार से लूँ, बहार चश्म तेरे हुस्न की बहार से लूँ और शमीम लूँ तेरी जुल्फ इमुश्क बार से लूँ, और नहीं है काम किसी गैर से मुझे हरगिज, जो कुछ भी लूँ तो ये लालच है अपने यार से लूँ।

इसी गीत के साथ आज के इस प्रोग्राम से अब हमें इजाज़त दें, इतनी बात के साथ कि उसकी यादों से महकने लगता है सारा बदन, उसकी यादों से महकने लगता है सारा बदन, प्यार की खुशबू को सीने में छुपा सकते नहीं। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी सूरतगढ़ है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क

0: ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नबीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जयपांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बी एल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नबीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉ हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000।
2: यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इन्फॉर्म्ड दैट द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्ट्रॉयड द ISI बैक टेरर ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे। He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate linked to grenade

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत गढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:52 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शिवरात्रि, जय हिंद।